सुप्रभात आकाशवाणी रांची का ये वेद भारती केंद्र है एफएम 103 मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948, वैशाख 19, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के मई माह की 9वीं तिथि। सुबह के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपने प्रातःकालीन प्रसारण के साथ।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर पर समाचार होंगे।
1: मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय

0: जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमरीका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडवे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है फल वृक्षों की सिंचाई। वाचिका है अनीता तीर की।
2: किसानों के पास कई फलदार पौधे जैसे आम, लीची, अमरूद, पपीता, शरीफा, केला आदि हैं। बहुत से किसान अब व्यावसायिक स्तर पर फलदार वृक्षों की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब भी किसानों में फलदार पौधे को लेकर बहुत अधिक जागरूकता नहीं है। जिस तरह से हम सब्जी इत्यादि की फसलों में अधिक उत्पादन और उत्पादकता के लिए निरंतर देख रेख करते हैं, उसी तरह से फलदार पौधों की खेती से भी अच्छे प्रबंधन द्वारा ज्यादा से ज्यादा आय अर्जित की जा सकती है। आम एक सदाबहार वृक्ष है, इसकी अच्छी उत्पादकता के लिए निरंतर देख रेख की आवश्यकता होती है। इसमें समय समय पर खाद और उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग नियंत्रण करना अच्छी उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आम के 15 से 20 वर्ष के पूर्ण विकसित वृक्ष को 80 से 100 केजी कंपोस्ट, 3 से 4 केजी करंज की खल्ली, 2.5 केजी यूरिया और 2.25 से 2 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होती है। इन उर्वरकों में यूरिया और पोटास की आधी और फास्फोरस की पूरी मात्रा फल तुड़ाई के तुरंत बाद देना चाहिए और शेष जो मात्रा बचती है उसे बाद में यानी अक्टूबर नवंबर माह में देना चाहिए। पौधों के तनों से 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर चारों तरफ 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली बना लेनी है उर्वरक देने के लिए, और खाद और उर्वरक का व्यवहार इसी में करना है। इस नाली में मिट्टी में खाद और उर्वरक डालने के समय कोशिश करनी चाहिए कि पर्याप्त नमी हो। सामान्य परिस्थितियों में आम की फसल से अच्छी गुणवत्ता के लिए 2 से 3 सीजन

0: सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें पहली सिंचाई फलन के पश्चात जब फल सरसों के दाने के आकार के हों और दूसरी सिंचाई जब पौधे कांच की गोली के आकार के हों, माने फल जब कांच की गोली के आकार के हो जाते उस समय, और पहली सिंचाई जब सरसों के दाने की आकार की हो तो, और तीसरी सिंचाई फल तोड़ने से लगभग 15 से 20 दिनों के पहले देनी चाहिए। आम के फलदार बाग को रोग से बचाने के लिए सूखी और रोगग्रस्त जो शाखाएं हैं उसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। बाग को साफ रखना चाहिए और खरपतवार के नियंत्रण के लिए समय समय पर प्रबंधन करना चाहिए। आम की फसल को मधुआ कीट और पाउडरी मिल्ड्यू से बहुत अधिक नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए छिड़काव करना पड़ता है। पहला छिड़काव मंजर निकालने के समय, दूसरा छिड़काव जब फल सरसों के दानों के जैसे हों, और तीसरा छिड़काव जब आपके फल मटर के दाने के बराबर हो। छिड़काव हेतु बेबिस्टिन इसकी मात्रा होगी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, और इमिडा क्लोरपिड इसकी मात्रा होगी 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में। इन दोनों का प्रयोग करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मंजर में फूल आते समय छिड़काव ना करें। आम की फसल में फल झड़न एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी नमी और किसी कारण से फल झड़ने की समस्या आती है। अतः फल सरसों और जब मटर के दाने के आकार के हो तो कोशिश करें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। यदि मिट्टी में नमी हो और इसके बावजूद भी फल झड़ रहे हैं तो आप उस समय छिड़काव कर सकते हैं। मंजर आने से 3 माह पहले सिंचाई नहीं करनी है और अंतर सस्यन फसलें भी नहीं लगाना है। मंजर आने के 30 दिन पहले जिंक सल्फेट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पहला छिड़काव 15 दिन के पर और दूसरा 15 दिन के बाद करना है। इससे मंजर और फूल दोनों अच्छे होते हैं। फूल आते समय कीटनाशी का व्यवहार नहीं करना है, और फूल लगने के 1 सप्ताह के बाद प्लानोफिक्स 2 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से फल झड़न की समस्या से आप अपने आम के पेड़ को बचा सकते हैं।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में आज का विषय था फल वृक्षों की सिंचाई। वाचिका थी अनिता तिर्की। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन।

0: भावनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती हैं, लेकिन वे सदा प्रदर्शित हों ऐसा नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व तो भावनाओं से ही जुड़ा रहता है। जीवन के प्रारंभ से ही ये किसी न किसी रूप में सामने आती रहती हैं। भावनाहीन या असंवेदनशील व्यक्ति का होना असंभव सा है, भले ही उसके परिवेश में उसकी भावनाओं को निरर्थक या तुच्छ मानकर एक किनारे कर दिया गया हो। स्नेह, प्रेम, क्रोध, घृणा, करुणा और हीनता जैसी कितनी ही भावनाएं हमारे व्यक्तित्व की प्रगति या अधोगति के लिए उत्तरदायी होती हैं। हीन भावना से जो पीड़ित होता है आमतौर पर उसे इसका आभास नहीं होता है और दूसरे भी उसकी इस समस्या से अनभिज्ञ रहते हैं। हीन भावना प्रायः बाल्यावस्था से ही आकार लेने लगती है। यदि इसका समय से निवारण ना हो तो कष्टकर व्याधि का रूप ग्रहण कर सकती है। यद्यपि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन प्रारंभ से ही यदि कोई प्रतिकूल व्यवहार, पक्षपातपूर्ण रवैया या असंपन्नता का सामना करता आया हो तो धीरे धीरे उसमें हीन भावना पैदा होना स्वाभाविक है। मनुष्य कई बार अपनी कमियों को पूरा करने के लिए वांछित या अवांछित किसी भी मार्ग पर चल पड़ता है। वो अपने से उत्तम लोगों पर अनर्गल आरोप लगाने में जुट जाता है। इससे दूसरे तो प्रभावित होते ही हैं, वो स्वयं भी गिरता चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हीन भावना से ग्रस्त लोग स्वयं की अल्पताओं को दूर करने के लिए श्रेष्ठता का ढोंग करने लगते हैं। ये उनका स्वभाव बन जाता है। वे बेवजह अपने से श्रेष्ठ लोगों का हर प्रकार से उत्पीड़न करने लगते हैं, परंतु कितने ही कृत्रिम आवरणों से हीन भावना नहीं छिपती। उनका व्यक्तित्व, चाल चलन, बोल चाल कहीं ना कहीं उनकी असलियत को झलका ही देती है। ऐसे लोगों को उत्तम दिखने का प्रयास छोड़ अध्यात्म, ध्यान एवं समाज सेवा में लगना चाहिए। इस प्रकार वे स्वयं ही श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
1: आप सुन रहे थे चिंतन संकलन विवाचन दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आई सुनिए भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना, आरंभ देशवंदना से। आई सुनिए प्रदीप की रचना लता मंगेशकर के स्वर में।

इसी के साथ ही अब आज की आराधना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनें श्री रामचरितमानस कांड।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहसों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए जानें शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, हिंदी में समाचार 7:00।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 7:05 पर भेंट वार्ता होगी। कब्ज कारण और उपचार, भेंट वार्ताकार डॉक्टर राम विनोद पाठक, भेंटकर्ता संजय कुमार लाल।

सुबह सुरीली 7:15 पर 7:45 पर कानून की बात भेंटवार्ता अभियुक्तों के अधिकार भेंटवार्ताकार श्री निर्मल कुमार भारती अंडर सेक्रेटरी झालसा। भेंट करता है संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की है। आठ बजे का समय है समाचार प्रभात का 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज प्रादेशिक समाचार 8:30 पर लोक रंग लोक गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर कुरमाली लोकगीत किस्टो महतो और साथियों से

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप सुनेंगे सरोद पर राग विलास खानी तोड़ी, आला पर जोड़ के बाद दो गतें, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में। कलाकार पंडित मनोज कुमार केडिया, तबले पर साथ दिया है सृजित चटर्जी ने। दस बजे आप सुनेंगे कल्याणी प्रोग्राम, चर्चा होगी पोषण और स्वास्थ्य, भेंटवार्ता साइबर धोखाधड़ी से बचाओ, भेंटवार्ताकार श्री भास्वत प्रकाश, भेंटकर्ता संजय कुमार लाल, प्रस्तुति संजय कुमार लाल की। अभी आप शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत और उसके बाद हिंदी में।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केन्द्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिण च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य पञ्चदश वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्रीरंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया सम्पादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविध साहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपं ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्य राष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीटर भी 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। भेंट वार्ता है कब्ज कारण और उपचार। भेंट वार्ताकार डॉक्टर राम विनोद पाठक। भेंट करता है संजय कुमार लाल।
2: मित्रों जोहार नमस्कार। मित्रों आजकल की जीवन शैली से जुड़ी हुई एक बीमारी है कब्ज की। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हमारा खान पान सही नहीं है और जब खाते हैं तो

0: खाते ही रह जाते हैं। और फिर वही बात कि आज हमारा पेट भारी लग रहा है, हम कब्ज के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये कब्ज होने का मुख्य कारण क्या है, लक्षण क्या दिखाई पड़ जाते हैं आपको, और ये कब्ज ना हो अपने खान पान में हम सुधार करें, जीवन शैली को व्यवस्थित करें, और कौन कौन सी सावधानियां रखें कि ये बीमारी हम तक आए नहीं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर राम विनोद पाठक। पाठक सर स्वागत है।
1: धन्यवाद धन्यवाद सर जी।
0: पाठक सर, कब्ज एक आम बीमारी है और कब्ज यदि हो जाता है तो घर पर ही बहुत सारी चीज़ें आपकी रसोई में उपलब्ध है, उससे भी आप तत्काल राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कारण है कब्ज होने का?
1: कब्ज होने का एक कारण नहीं है, यह विषय अपने आप में बड़ा व्यापक विषय है। कब्ज का सरल सीधा अर्थ है कि अंतड़ियों की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से ना हो रही हो, और बाधित क्रियाएं जब हो जाती हैं तो विकृति आती है, जिसमें वायु विकृति के कारण भी ऐसा होता है। और कारण में और कुछ नहीं, जिसे जीर्ण ज्वर, बहुत दिनों से जिसको बुखार हो रहा है कब्ज उसको हो जाएगा। जीर्ण ज्वर, जॉन्डिस, या फिर दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में बहुत दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहना, गर्भवती महिलाएं का विशेष बिस्तर पर ही रहना, ये सारी परिस्थितियां भी कब्ज के कारक हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इंसान जो अनावश्यक असामयिक जो भोजन ले लिया करते हैं वो मुख्य कारण भी समझा जाए इसके लिए जिम्मेवार है।
0: मतलब अनाप शनाप खाद्य पदार्थ हम खाते रह जाते
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: और खाया तो खाते ही रह गए।
1: खाते ही रह गए, सही
0: जी
1: बात है, उसकी कोई सीमा नहीं।
0: जी,
1: जी
0: कब्ज के लक्षण क्या दिखाई पड़ जाते हैं, बड़े हम परेशान हो जाते हैं, पेट में फूलन।
1: जी
0: जी
1: लक्षण जो है खास करके पेट फूलना, अफारा होना, अनियमित शौच होना, एक बार में खुलकर दस्त न आना और खाने की इच्छा न होना, ये सारी परिस्थितियां नजर आती हैं। मंदाग्नि होना, ये सब कब्ज का ही कारण है।
0: डॉक्टर राम विनोद पाठक साहब, कब्ज का उपचार किस प्रकार किया जाए? जो आपके घर के अंदर रसोई में बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है
1: जी
0: जिससे आप तत्काल रूप से राहत पा सकते हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि जड़ से भी आप कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं।
1: जी हाँ, बहुत बहुत है। तो ये पूर्णतः सजगता की बात है। अगर हम सजग रहें तो कोई अनहित करने वाला आपके न घर में प्रवेश करेगा न आपके तन में प्रवेश करेगा। तो तन में प्रवेश करने का है, सजग आप रह रहे हैं इसका मतलब है कि बहुत सारे रोगों से आप दूर रहेंगे। कब्ज से जो विनाशकारी स्थिति पैदा होती है शरीर में, जो जिसे भगंदर वगैरह या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जो हार्ट डिजीज है या फिर ये मधुमेह की बीमारियां, ये सारी बीमारियां ऐसी घातक, जो क्या कहा जाए इनको, शूट पॉइजन की तरह कहा जाए या स्लिप सेल इनको कहा जाए तो नहीं, कोई अन्योक्ति नहीं होगी। तो इन सभी स्थितियों से बचने का बस केवल और केवल ये प्रयास करें कि हम कैसे स्वस्थ रहों। तो सबसे पहले और कुछ नहीं, कहा गया है फल में काजू किशमिश का विशेष नाम होता है, ये लगभग लगभग प्रायः किचन में उपलब्ध है, सामान्य वर्ग के किचन में। वो प्रतिदिन अगर 10 दाना काजू और 5 दाना मुनक्का, जिसको किशमिश का सूखा हुआ रूप, पुराना रूप कहा जाता है मुनक्का, वो अगर नियमित जल के साथ लिया जाए तो मेरा दावा है कि कभी भी मलबंधन नहीं होगा। मल बंधेगा तभी तो कब्ज होगा, मलबंधन होगा ही नहीं तो कब्ज होगा नहीं, कब्ज नहीं होगा तो पेट खुश तो सब खुश वाली स्थिति आएगी। और सामान्य वर्ग से भी अगर निम्न स्तर पर भी सोचा जाए, एक साधारण गरीब के पास भी जो असहाय है, लेकिन उसके यहाँ भी निश्चित है कि टमाटर की उपलब्धता होती है। किसान ऐसे वर्ग हैं जहाँ निश्चित है बहुत सारी परिस्थितियों में टमाटर की उपलब्धता होती है, और वो प्रतिदिन अगर 1 पाव, मतलब 250 ग्राम टमाटर कच्चे खाया जाए तो बहुत ही अच्छा है और लाभप्रद होगा, क्योंकि उसके रस में आंतों में जमी हुई मल की स्थिति जो है उनको कुतर कर, गला कर, निकाल कर, काट कर फेंक देने की क्षमता है टमाटर के रस में। टमाटर खाने से अच्छा समझते हैं या नहीं खाना चाहते हैं तो टमाटर का रस निकाल लें, वो रस ही 100 ग्राम पी जाए, 100 ग्राम की मात्रा अधिक नहीं, 250 ग्राम फल और नहीं तो फिर 100 ग्राम उसका रस, तो निश्चित है कब्ज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक दिन में नहीं, नियमितता बनाए रखें 3 महीना अधिक से अधिक, तो मेरा दावा है कि कब्ज रोग मुक्त शरीर हो जाएगा। वैसे तो और भी अलग है, जैसे चिकित्सार्थ अगर देखा जाए तो शास्त्रोक्त विधि में तो है त्रिफला की आवश्यकता होती है, त्रिफला आंवला हरे बहरा, इसकी विशेष उपस्थिति प्रतिदिन अगर रखी जाए भोजन से पहले या भोजन के बाद में भी, कभी भी अगर खाली पेट लें तो और अच्छा, रात्रि में सोने वक्त लें तो और अच्छा, बहुत अच्छा। अगर फिर भी कब्ज वैसा महसूस होता है तो पंचसकार चूर्ण अगर लिया जाए, अगर हो सकता है लवण भास्कर चूर्ण के साथ में, तो मल का निसारण बड़ी सरलता से होने वाली बात है। तो ये दो चीज़ तो बहुत घर का है, और तीसरा में तो प्राकृतिक चिकित्सा के तहत अगर आएँ तो शरीर पर ही भरोसा रखें कि मल अगर बंधा है, कब्ज है, तो नीचे से नाभि से नीचे से हाथ रख कर
0: जी।
1: नाभि से नीचे हाथ रख कर और ऊपर की ओर दाई ओर ले जाकर और ऊपर से हृदय के पास से दबा कर और उसको बाई ओर से लाकर नीचे रखा जाए, ये सराउंडिंग अगर कसरत किया जाए ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट प्रतिदिन, तो मल रुकेगा भी नहीं, मलबंधन होगा नहीं
0: जी। कब्ज की शिकायत बनी नहीं रहे
1: जी,
0: किन किन बातों का ख्याल रखा जाए अपने दैनिक जीवन में, अपनी जीवन शैली को कैसे सुधारा जाए?
1: सबसे पहले कहा गया है प्रातः दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होनी चाहिए, लेकिन आज की बिगड़ी मानसिकता है कि 8 बजे 9 बजे से पहले बिस्तर छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो अपने ससामयिक दिनचर्या पर भरोसा किया जाए, समय से पहले हम सोएं, समय से पहले जागें। जागने का और सोने का एक निश्चित समय का निर्धारण होना आवश्यक है जीवन में, और उठने का मतलब बिस्तर छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 3:30-4 बजे तक नहीं तो 5 बजे तक भी तो बिस्तर छोड़ दें, 5 बजे तक हर हाल में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की वो आखिरी बेला है, समय काल है, उस समय तक भी नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर तो क्या कहना है, रोगग्रस्त हो शरीर होना है। उठने के बाद सबसे पहले पास में ही पानी रखा होना चाहिए रात्रि का, बासी कहा गया है, मनीषियों का चिंतन है कि बासी पानी जो पिए नित उठ हर्रे खाए, और मोटा दातुन जो करे ताघर बैद न जाए, ये विधान है, ये मनीषियों का चिंतन है कि अगर प्रतिदिन बासी पानी लिया जाए, एक सांस में जितना हो सके, एक ग्लास डेढ़ ग्लास जितना भी, कितने तो हैं कि एक लोटा भी एक सांस में ले लेते हैं, अगर उतना भी ले सकते हैं तो ठीक है, एक गिलास जरूर लिया जाए, और लेने के बाद निश्चितः टहलना चाहिए, कम से कम 500 कदम 1000 कदम जितना हो सके उतना जरूर टहला जाए, निश्चित मल का वेग आएगा, मल का निसारण होगा, आसानी से होगा, ये आवश्यक है। रात्रि अधिक से अधिक 8:30-9 बजे तक अधिक से अधिक सो जाना चाहिए, नहीं तो प्रयास चेष्टा ऐसी होनी चाहिए कि सूर्यास्त के बाद बस बिस्तर देखना आवश्यक है, दिन भर का थका मांदा इंसान सवेरे बिस्तर पर जाना चाहिए।
0: और जो हम अनाप शनाप खाना खा लेते हैं
1: जी,
0: तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, तो इन सब से भी बचने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे तले हुए में मांस इत्यादि, मांस मछली ये सब, या उड़द की बरियाँ, विशेष उड़द ये जो है मांसाहार श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए मतलब प्रयास करना चाहिए इन सबों से दूरी बनाएं ताकि कब्ज न हो, ये आवश्यक है
0: जी। तो मित्रों, अपने खान पान का यदि हम ख्याल रखते हैं और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं, प्रातः काल यदि हम उठ जाते हैं और अपने जीवन को सुधार लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी बीमारी आप तक नहीं आएगी, कब्ज जैसी बीमारी आप तक नहीं पहुंचेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो मित्रों आज की बात यहीं तक। डॉक्टर राम विनोद पाठक साहब वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य आज आप इस कार्यक्रम में हैं। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार,
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, कब्ज कारण और उपचार। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर राम विनोद पाठक, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुबह सुरीली। सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म केदारनाथ से ये गीत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: और अब यही सुनते हैं आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, संगीत रवि का, शब्द है सहर लुधवानवी के। और फिल्म का नाम है गुमराह।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: अरे भाई, सुनते हैं येसुदास की आवाज। फिल्म का नाम है चित्तचोर।

प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है सरगम।

इसी के साथ ही अब आज का सुबह सुरीली प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आई सुनिए प्रोग्राम कानून की बात। भेंट वार्ता है अभियुक्तों के अधिकार। भेंट वार्ता कर श्री निर्मल कुमार भारती, अंडर सेक्रेटरी झालसा। भेंट करता है संजीव कुमार लाल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता संजीव कुमार लाल। आइए सुनते हैं।

0: मित्रों नमस्कार, जोहार। भारत में सभी लोगों को कानूनी रूप से समान अधिकार दिया हुआ है और अपने अधिकारों का वो निर्वहन करता है। कोई भी व्यक्ति को यदि किसी तरह का आरोप लगता है, आपराधिक आरोप लगता है, लड़ाई झगड़ा, हत्या, बलात्कार, डकैती या अन्य तरह का जो आपराधिक घटनाएं घटित होती है, वो किसी व्यक्ति पर उसका आरोप लग जाता है, तो वो उस आरोप को कैसे डिनाई करे, कैसे वो साबित करे कि हम निर्दोष हैं। हर व्यक्ति का अधिकार है और जो आरोपी व्यक्ति है उसका भी अधिकार है, वो कोर्ट के सामने अपने आप को बताए कि हमने यह घटना को अंजाम नहीं दिया है और हम इस चीज़ के आरोपी नहीं हैं, तो उसके भी अपने अधिकार हैं। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि आरोपी व्यक्ति या अभियुक्त के कौन कौन से अधिकार है, उस अधिकार को वो कैसे डिनाई करें और अपनी बात कैसे रखे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज कानून की बात कार्यक्रम में आमंत्रित हैं झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री निर्मल कुमार भारती जी। भारती जी स्वागत है।
1: नमस्कार
0: भारती जी। कोई व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, आरोप मर दिया जाता है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, मर्डर, रेप, डकैती या अन्य तरह की कोई भी आपराधिक घटना का आरोप उस पर मर दिया जाता है और वो व्यक्ति फिर परेशान ना हो, उसके भी अधिकार है, वो अपने आप को साबित करे कि हम इस आरोप हम पे नहीं लगाया गया है और हम बिल्कुल निर्दोष हैं। तो इसकी जो अवधारणा है अभियुक्त की, वो किस प्रकार आप इसको परिभाषित करते हैं?
1: देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक एवं विधि के द्वारा शासित राष्ट्र के अंतर्गत न्याय व्यवस्था के मुख्य उद्देश्यों में अपराधियों को सिर्फ दंडित करने का ही प्रावधान नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के, चाहे फिर वो अपराधी ही क्यों न हो, चाहे वह आरोपी ही क्यों न हो, उसके मौलिक अधिकारों का रक्षा करना भी संविधान और सरकार का दायित्व है। यही वजह है कि एक सामान्य नागरिक को जिस तरह से कि मौलिक अधिकार मिला हुआ है, कानून से के समक्ष समानता का अधिकार मिला हुआ है और विधि के नज़र में सभी लोग बराबर हैं, वो किसी आरोपी व्यक्ति पर भी लागू होता है। भारतीय संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता, पहले CRPC था, BNSS है, साक्ष्य अधिनियम और अलग तरह के सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालयों के जो निर्णय हैं, ये अभियुक्त व्यक्तियों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं।
0: जी,
1: इन अधिकारों में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अभियुक्त होता कौन है।
0: जी,
1: अभियुक्त का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया हो, लेकिन महज आरोप लगा देने से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं मान लिया जा सकता है, तब तक जब तक कि कानून की सर्वोच्च अदालत से वह दोषी सिद्ध न हो गया हो। इसको हम लोग कहते हैं राइट टू बी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, यानी कि निर्दोष माने जाने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो उसका पहला अधिकार तो यही है कि उसे दोषी नहीं माना जाएगा कानून की नज़र में, बल्कि उसे निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह अंतिम तौर पर अंतिम न्यायालय से दंडित न कर दिया जाए।
0: जी,
1: व्यक्ति का दूसरा अधिकार है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी बना दिया गया, किसी अपराध में आरोपित कर दिया गया और उसको पुलिस अरेस्ट करने जाती है, तो उसे यह अधिकार है कि उसे पता चले कि उसे पुलिस के द्वारा किस अपराध के लिए क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये दूसरा अधिकार है। तीसरा अधिकार है कि उसे वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि अगर उसे आरोपी बनाया गया है तो उसे उसके एडवोकेट से, उसके लॉयर से बातचीत करने, परामर्श लेने का अधिकार हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कानून थोड़ी सी उलझी हुई स्थिति में रहती है, सामान्य लोग जो है उसके प्रावधानों को नहीं जानते हैं, इसीलिए कानून के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत व्यक्ति को अपने पसंद के परामर्श, पसंद के अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। और यहीं पर है फ्री लीगल एड का भी व्यवस्था, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।
0: जी,
1: चौथा अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है, उसको शारीरिक रूप से या किसी अन्य तौर पर क्षति पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है और इसे BNSS और CRPC में भी इसकी व्यवस्था है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के साथ सामने उपस्थित कराया जाए। अगर जिस व्यक्ति को अधिकार किया, जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, अरेस्ट किया गया है, अगर उसका केस जिस जिले में है या जिस कोर्ट में है वहाँ तक जाने में अगर 24 घंटा से ज़्यादा का समय लगता है तो फिर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए भी ले जाने की व्यवस्था है। अगला अधिकार है उसका मौन रहने का अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उससे उगलवाया ना जाए। ऐसा नहीं है कि उसे शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करके उससे उसके विरुद्ध जो है गवाह तैयार किया जाए या उसके विरुद्ध जो है किसी तरह का साक्ष्य निर्मित किया जाए, यानी कि मौन रहने का अधिकार भी एक गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है, एक अभियुक्त का अधिकार है कि उसे डरा धमका कर मार पीट कर उससे कुछ नहीं बोलवाया जाए, यानी कि अगर व्यक्ति कुछ नहीं बताना चाहता है पुलिस को अपने पूछताछ में तो उसे मौन रहने का अधिकार है, यह भी एक तरह का अधिकार है। दूसरा क्या है कि आत्म दोषारोपण से सुरक्षा, यानी कि किसी व्यक्ति को इस बात के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वह उसी अपने ही विरुद्ध जो है मटेरियल पुलिस को या प्रोसिक्यूशन को दे, तो यह भी एक तरह का अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण कि निष्पक्ष एवं शीघ्र सुनवाई का अधिकार, ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया और उसके बाद वो लंबे समय तक जेल में रहता चला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसे निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हुसनारा खातून बनाम बिहार सरकार के मामले में इसे विस्तृत रूप से व्याख्या भी किया है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वह जल्दी जल्दी हो और समय पर पूरी हो जानी चाहिए। अभी जो नया आपराधिक कानून देश में लागू किया गया 2024 में, उसमें इस बात का प्रावधान दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट को एक निश्चित तय सीमा में ट्रायल को कंक्लूड करना है, पुलिस को एक निश्चित तय सीमा में अनुसंधान को पूरा करना है। आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि महिलाओं के विरुद्ध जो यौन हिंसा के जो मामले होते हैं, रेप वगैरह के जो मामले होते हैं, इसमें 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट जमा करना है। इसको लेकर जो है अब पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी सजग हो गई है। तो इस तरह के से शीघ्र सुनवाई के अधिकार से लोगों को जल्दी न्याय मिल जाता है। तीसरा है कि यातना एवं अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, पुलिस किसी को मारपीट नहीं कर सकती है और अगर पुलिस किसी अभियुक्त के साथ मारपीट करती है तो जब उस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है तो मेडिकल जांच करा के ही ले जाया जाता है। मजिस्ट्रेट उस मेडिकल जांच के आधार पर यह निश्चित करते हैं कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर कोई जख्म है, कोई चोट है, तो उससे पूछ सकती है और कार्रवाई कर सकती है। अगला अधिकार है जमानत पाने का अधिकार। हर व्यक्ति का एक अधिकार है कि वह जो है अपने केस में, अपने विरुद्ध चलाए गए आपराधिक मामले में जमानत पर बाहर आ सके। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है कि न्यायालय में मामला लंबा चल सकता है लेकिन उतने लंबे समय तक किसी को निरुद्ध करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रायल के लास्ट में उसे निर्दोष पाया जाए और उसे छोड़ दिया जाए, तो उतने दिन तक उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो निरुद्ध नहीं की जा सकती है। इसलिए जमानत पाने के अधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा है
0: जी।
1: और जैसा कि मैंने पहले कहा कि निःशुल्क विधिक सेवा पाने का अधिकार, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है
0: जी। कोई व्यक्ति किसी भी तरह का उसे आरोपित साबित कर दिया जाता है, अभियुक्त को भी अपना अधिकार है, कोई अभियुक्त किसी भी कारण से उस पर किसी भी आपराधिक घटना का अभियुक्त करार दिया जाता है, तो वो न्यायालय में कैसे अपनी बात रखे, निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करे, वो कहाँ संपर्क करे?
1: देखिए, निःशुल्क विधिक सेवा पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए के अंतर्गत निशुल्क विधिक सेवा का अधिकार जो है ये प्रावधान किया गया है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के धारा 12 के अंतर्गत जो निरुद्ध व्यक्ति हैं, जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, उसे उसके कास्ट, वर्ग सबसे इतर मानते हुए, लिंग से इतर मानते हुए निःशुल्क विधिक सेवा देने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई आदमी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है या पुलिस कस्टडी में जैसे ही गया वैसे ही उसके लिए जो है निःशुल्क विधिक सेवा का व्यवस्था है। अब आपका प्रश्न है कि ये इस निःशुल्क विधिक सेवा के लिए वह कहाँ
0: जी कहाँ संपर्क करें, कैसे वो निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करें?
1: प्रत्येक पुलिस स्टेशन में लीगल सेल होते हैं DLSA के, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, प्रत्येक जेल में हमारा लीगल सेल होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वहाँ पर सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर विजिट करती है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस बात को निश्चित करती है कि कोई भी निरुद्ध व्यक्ति जो है वह वकील उसे नहीं मिले, ये नौबत ना आवे। इसके लिए जो है अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो वह अपना आवेदन DLSA के माध्यम से भी दे सकती है, जेलर के माध्यम से DLSA को आवेदन भेजा जा सकता है। प्रत्येक जेल में, अगर झारखंड की बात करें तो प्रत्येक जेल में पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, प्रत्येक जेल में पैनल एडवोकेट, लीगल एड डिफेंस काउंसिल की लगभग सप्ताह में 4-5 दिन विजिट होती है और वे कैदियों से मिलते हैं। DLSA सेक्रेटरी जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन रैंक के अफसर होते हैं, वे सप्ताह या 15 दिन में निश्चित रूप से जेल विजिट करते हैं। यहाँ तक कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रत्येक जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज महीने में एक बार जेल विजिट करते हैं और वो यह निश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जेल में अनरिप्रेजेंटेड ना हो
0: जी।
1: और अगर ऐसा लगता है कि कोई किसी व्यक्ति के पास वकील नहीं है तो DLSA के पैनल से उसे अधिवक्ता दिया जाता है ताकि वह अपना केस मुफ्त में लड़ सके
0: जी। और इन सभी बातों को ख्याल रखा जाता है कि त्वरित गति से उन्हें न्याय मिले।
1: बिल्कुल।
0: और नए जो नियम बना है, कानून बना है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको न्याय सुलभ हो और त्वरित गति से उसे न्याय प्राप्त हो जाए। निर्मल जी, यहाँ एक बात मेरे जहन में आती है, बेवजह किसी को अभियुक्त करार दिया जाता है, बेचारा निर्दोष है लेकिन फिर भी उसका नाम उस घटना में शामिल कर दिया जाता है, तो फिर वो क्या करे?
1: देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वह इनोसेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को अभियुक्त तो बनाया जा सकता है, गलत तरीके से अभियुक्त उसे पुलिस बना दिया या कोई व्यक्ति बनवा दिया, लेकिन उसे न्याय के नज़र में, न्यायालय के नज़र में तब तक अभियुक्त, तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वो अंतिम रूप से उसे दोषी न करार दिया गया हो। और अगर इस बीच उसे लगता है कि उसे अपने केस की पैरवी करने में दिक्कत हो रही है तो जैसा कि मैंने कहा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के धारा
0: निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है,
1: तभी प्राप्त कर सकता है
0: जी। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को समान अधिकार दिया हुआ है। किसी व्यक्ति को लगता है कि हमें अपना संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, अपने कानूनी अधिकार का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति अभियुक्त करार दिया जा रहा है किसी भी घटना के संदर्भ में, तो वो अपनी बात रख सकता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में भी वो संपर्क कर सकता है, निःशुल्क कानूनी सहायता भी उसे दी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निर्मल कुमार भारती जी, बड़ी अच्छी आपने बात की कि अभियुक्त के कौन कौन से अधिकार हैं और वो उस अधिकार को किस प्रकार प्राप्त करें और साथ साथ निःशुल्क विधिक सहायता अभियुक्त किस प्रकार प्राप्त करें। आप इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मित्रों, ये कार्यक्रम यहीं तक, अगले सप्ताह एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।

0: अभियुक्तों के अधिकार। अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटवार्ताकार थे श्री निर्मल कुमार भारती, अंडर सेक्रेटरी चालसा, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। कानून की बात प्रक्रिया में अब समाप्त होता है। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देशभर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
8: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model, example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केन्द्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाये, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: CM. Uncertainty continues in Tamil Nadu government formation, cites The Hindu. The Indian Express quotes Rajnath Singh describing Operation Sindoor as short duration, deep penetration and high impact operation under the headline Operation Sindoor showcased our capabilities ethos. China admits backing Pakistan during conflict with India, writes The Pioneer. SC raps Punjab police for letting off drug sharks, cites The Tribune. US awaits Iran response to peace proposal as Gulf fighting flares up, reports the Indian Express. The Asian Age, in an exclusive title for both US and Iran, peace the only choice, writes that the reality of the war is that the two major combatants need peace and it is up to the US to rein in Israel and its action in Lebanon. The only hope is negotiations will begin in earnest during another 30-day ceasefire as envisaged in the latest peace plan. And finally, Google explores major AI infra investments in India, notes Financial Express. Elaborating, tech giant Google is exploring investment opportunities in India across AI as well as of servers and drones. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to attend the swearing-in ceremony. Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Radha Subramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarter-finals for the first time. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गिरिडीह पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर या 200 रुपए सब्सिडी देने का किया अनुरोध। रांची जिला प्रशासन आज करेगा निजी स्कूलों के साथ बड़ी बैठक। आरटीई नियमों के पालन पर प्राचार्यों को दिए जाएंगे सख्त निर्देश। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज के लिए जारी किया ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड ओलंपिक संघ के बीच हुई अहम बैठक। 2036 ओलंपिक के लिए राज्य में बनेगा विशेष रोड मैप। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि जिस तरह बंगाल की जनता ने टीएमसी के कुशासन को नकारा है, उसी तरह झारखंड की जनता भी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं।
3: अभिकर्ता का चयन हुआ, इनके जो विभागीय मंत्री थे बिना वांछित पेपर के वो अपने चहेतों को काम दिया, वो ठेकेदारी बांट दिए और ये पैसों का बंदरबांट हुआ उस सरकार, और आज उसी का नतीजा झारखंड की आम जनता झेल रही है। और भ्रष्टाचार के वजह से आज नल जल योजना, जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना, आज आम लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, आज आम लोग परेशान है।
2: राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कांग्रेस के प्रमुख चुनावी वादे को लागू करने का अनुरोध किया है। मंत्री ने राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने या 200 रुपए की सीधी सब्सिडी देने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन सरकार ने जनता से यह वादा किया था, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है।
4: गैस 400 रुपए में हम देंगे, हम अपने वित्तीय संसाधनों को भी देखेंगे। अब इसमें कोई मुख्यमंत्री जी से खीस की बात नहीं है, नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन हम अपने इश्यूज की चर्चा करते रहेंगे। इसमें सरकार और मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई नाराजगी की बात नहीं होनी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने 400 रुपए पर गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, आप इस पर करिए, मैसेज तो जनता के बीच जाना चाहिए।
2: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जारी विवाद के बीच

0: राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भाषा संबंधी विसंगतियों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार को शामिल किया गया है। रांची जिला प्रशासन ने जिले के सभी निजी स्कूलों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उपायुक्त की अध्यक्षता में यह बैठक आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड से जुड़े सभी निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में आरटीई के तहत बच्चों के नामांकन और नियमों के पालन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रांची नगर निगम ने पूरे शहर में सोलर लाइटें लगाकर सड़कों और पार्कों को रोशन करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य शहर को ग्रीन सिटी बनाना और बिजली बिल कम करना है। मेयर रोशनी खलको ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे रांची न केवल आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिजली की बचत आज के दिन में बहुत जरूर, जिस तरह से बिजली की खपत हो रही है निरंतर गांव से लेकर के शहर में भी, ऐसे में सोलर पैनल के माध्यम से सभी सरकारी भवन, इनफैक्ट नगर निगम की जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है इस पे भी हम लोगों ने नगर आयुक्त के साथ मिलकर के आदेश दिया है इसके कि जल्द से जल्द नगर निगम की बिल्डिंग पर भी सोलर पैनल लगा दे।
0: राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी अरविंद सिंह को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने इस मामले में एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के नीमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में कल देर शाम एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हैं। उपायुक्त राम निवास यादव ने स्वयं घटनास्थल और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उपायुक्त ने लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा है।
2: ड्राइवर ने ट्रक को अनियंत्रित होके पूरी मार्केट में उसने घुसाया है, बहुत लोगों को टक्कर मारी है। यहाँ जो अभी इंजर्ड है और धनबाद में भी जो हमारा SRP हॉस्पिटल है, JP हॉस्पिटल है, PMCH है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी वहाँ पे पहुँचता है उसको सही समय इलाज करा जाए।
0: रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में बांग्ला सांस्कृतिक मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में बांग्ला संस्कृति के अमूल्य योगदान की सराहना की। रांची सदर अस्पताल में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान थैलेसीमिया मरीजों के जज्बे और उनके जीवन के संघर्षों को सम्मानित किया गया। विशेषज्ञों ने सुरक्षित रक्तदान और इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया ताकि भविष्य में इसे रोका जा सके।
3: गजल मशीन हमारे यहाँ हर जगह है, सदर अस्पताल में भी कंफर्मेटरी जांच होता है, रांची में विशेष व्यवस्था है और रांची में पेशेंट्स भी काफ़ी हैं, क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा पेशेंट्स निकलते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग सबके लिए ब्लड की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं।
0: राज्य में 14 मई तक रुक रुक कर बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने विशेष रूप से आज के लिए रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड को खेल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्य में खेल विकास की नई रूपरेखा साझा की। बैठक का मुख्य फोकस 2036 ओलंपिक रहा। चीन में चल रहे एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय टीम ने लेबनान को 4-0 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुरुआती हार के बाद टीम ने यह शानदार वापसी की है। झारखंड के लिए यह गौरव का पल है क्योंकि इस टीम में राज्य की 4 स्टार खिलाड़ी हैं। एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमणि कुमारी, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा इसमें शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शुभेंदु बंगाल के अधिकारी। प्रभात खबर के शब्द हैं, जेट एट मामले में 5 मंत्रियों की कमेटी तय करेगी जिलों के लिए भाषा। हिंदुस्तान वेतन घोटाला मामले में लिखता है, बोकारो से कई दस्तावेज लेकर लौटी जांच टीम। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, गिरिडीह में लोगों को रौंदते हुए बाजार में घुसा ट्रक, 5 लोगों की मौत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। गिरिडीह पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर या 200 रुपए सब्सिडी देने का किया अनुरोध। रांची जिला प्रशासन आज करेगा निजी स्कूलों के साथ बड़ी बैठक। आरटीई नियमों के पालन पर प्राचार्यों को दिए जाएंगे सख्त निर्देश। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज के लिए जारी किया ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड ओलंपिक संघ के बीच हुई अहम बैठक, 2036 ओलंपिक के लिए राज्य में बनेगा विशेष रोड मैप। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी रांची है। लोक रंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुर्बानी लोकगीत। कलाकार हैं किस्तो महतो और साथी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत किस्टो महतो और सादियों से। इसी के साथ ही आवाज का लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम रसरंजन, पहले संदेश।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोता मित्रों, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों से। शब्द हैं गुलजार के, संगीत RD बर्मन का, फिल्म का नाम है आंधी।

फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते। शब्द है गुलशन बावरा के, संगीत आर डी बर्मन का, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब ये सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई।

फिल्म का नाम है प्यासा सावन, आवाज लता मंगेशकर की, बोल लिखे हैं संतोष आरंदे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और इसी के साथ ही अब आज का रसरंजन प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है सरोद पर राग बिलास खानी तोड़ी, आला पर जोड़ के बाद दो गतें, मध्य लय की गत जप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध है। कलाकार है पंडित मनोज कुमार केटिया। तबले पर साथ दिया है सुरजीत चटर्जी ने।

0: पहले संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मनोज कुमार केडिया से सरोद पर राग बिलास खानी थोड़ी। आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत थी, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निपटती। तबले पर संगत कर रहे थे श्रीजीत चैटर्जी।

आकाशवाणी का ही राज्य केंद्र है। श्रोताओं, 10 बजने को है, वक्त है कार्यक्रम कल्याणी का। आज इसमें चर्चा होगी पोषण और स्वास्थ्य पर। भेंटवार्ता आप सुनेंगे साइबर धोखाधड़ी से बचाओ। भेंटवार्ताकार होंगे श्री भास्वत प्रकाश, उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल, और कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

0: कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे जिंदगी से, हमारे परिवार से और समाज से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातों की जानकारी और चर्चा आपके साथ करते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे पर आपसे चर्चा करते हैं और विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। मित्रों, पोषण बच्चों को स्वस्थ, खुश, उत्पादक किशोरों और वयस्कों को विकसित होने में सक्षम बनाने का एक आधार है। स्वस्थ आहार सिर्फ जीवित रहने और बढ़ने के बीच की खाई को ही नहीं पाटता, बल्कि इसका प्रभाव बच्चे के जीवन में लंबे समय के लिए पड़ता है। तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, पोषण और स्वास्थ्य। दोस्तों, मानव जीवन का आधार स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य एक आधार है सही पोषण। यदि हमारा आहार संतुलित और पौष्टिक हो तो हम न केवल रोगों से दूर रहते हैं बल्कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आज के आधुनिक जीवन में जहाँ भागदौड़, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है, वहीं संतुलित पोषण का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं पोषण क्या है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे शरीर भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करता है। इन तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल शामिल है। ये सभी तत्व हमारे शरीर के विकास, ऊर्जा प्रदान करने और रोगों से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, संतुलित आहार का महत्व क्या है? संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो। वह शरीर को ऊर्जा देता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मानसिक विकास में सहायता प्रदान करता है। यदि हम संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो हमारे कुपोषण, मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं पोषक तत्वों की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि चावल, रोटी वगैरह वगैरह। प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत में सहायक प्रदान करता है। प्रोटीन में आ जाता है जैसे कि दाल, दूध, अंडा। वसा ऊर्जा का एक स्रोत है और शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। तो वसा का कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि घी, तेल, चीज आदि। विटामिन और खनिज। विटामिन रोगों से बचाव और शरीर को सही कार्य करने के लिए आवश्यक है, जैसे कि फल, सब्जियां, हरी सब्जियां और रसदार फलें। जल शरीर को हाइड्रेट रखने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों, अच्छा पोषण हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। संतुलित आहार लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम अधिक सक्रिय रहते हैं। बच्चों के लिए पोषण विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि वह उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी उचित पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज भी हमारे देश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। कई बच्चों और महिलाएं उचित भोजन नहीं मिलने के कारण कमजोर और बीमार होते हैं। कुपोषण के कारण शरीर का विकास रुक जाता है और रोग का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जंक फूड और अधिक तेल वाले भोजनों से बचना चाहिए। नियमित समय पर वजन करना चाहिए और जितना अधिक हो सके पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जैसे कि दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी आवश्यक हम लोग को पीना चाहिए। रोजाना व्यायाम और योग करना भी एक अनिवार्य है। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। सही पोषण न केवल हमारे शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। इसलिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, साइबर धोखाधड़ी यानी कि इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली एक आपराधिक गतिविधि है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फंसाकर अपनी निजी जानकारी जैसे कि ओटीपी, पासवर्ड, बैंक विवरण चुराना और आर्थिक लाभ जैसे कि पैसा कमाना है। यह फ्रॉड ईमेल, फर्जी वेबसाइटों या फिर सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है। तो मित्रों, आइए हम विस्तार पूर्वक सुनते हैं जो कि अधिवक्ता है और इस खास विषय पर गहरी जानकारी रखते हैं, और इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल के इस डिजिटल दुनिया में बहुत सारी तरक्की हो रही है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ बहुत सारे घटनाएं भी घटित हो जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, साइबर अपराध की घटनाएं आजकल बहुत बढ़ रही है और इससे सभी लोग अछूते नहीं हैं। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी लोक लुभावन ऑफर के कारण आप साइबर अपराध की घटना के चक्कर में आप आ जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं घटित हो जा रही हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी साइबर अपराध के मकड़ जाल में फंस जा रहे हैं। ये साइबर अपराध की घटनाएं इतनी क्यों हो जा रही है, और जो ये साइबर अपराध को घटने को अंजाम देते हैं वो एक बहुत ही शातिर व्यक्ति होता है और तरह तरह के बातें कर कर आपको उसमें फंसाने की कोशिश करता है और आपके बैंक से पैसे की निकासी हो जाती है, तब आपको एहसास होता है कि हमारे साथ ठगी की गई है। तो ये साइबर अपराध की घटनाएं इतनी क्यों हो जा रही है, किस तरह से साइबर अपराधी इस घटना को अंजाम देते हैं और इससे संबंधित कौन कौन सी विधिक व्यवस्थाएं हैं और अपना बचाव हम कैसे करें, जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका उपाय है। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं भास्वत प्रकाश। आप एडवोकेट हैं। भास्वत जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार सर।
1: भास्वत जी, ये साइबर अपराध की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये आखिर ये घटनाएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है इसका?
2: नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि एक भारत देश में इतने बड़े परिवार को मैं बता सकूं अपने अनुभव से कि कैसे ये एक उभरती हुए जो हमारे समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एवं समकालीन विषय जो है, भारत में उभरते साइबर अपराध तथा उनसे संबंधित विधि व्यवस्था के ऊपर विचार अपना मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो जैसे सर आपने पूछा कि ये क्राइम क्या है, साइबर अपराध क्या चीज़ होते हैं, तो जैसे आज हम ये डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे सूचना एवं टेक्नोलॉजी का युग है, वर्तमान युग में जहाँ डिजिटल तकनीक हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, शासन, व्यापार, शिक्षा एवं व्यक्तिगत संचार का आधार बन चुकी है, वहीं साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय न होकर एक गंभीर विधिक एवं सामाजिक मुद्दा बन गया है। इसको अगर हम संक्षेप में समझना चाहें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल भुगतान प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमारे जीवन को अत्यंत सरल बनाया तो है, लेकिन वहीं पे उसका एक अत्यंतिक विकास के साथ साथ विनाश का भी रूप ले रहा है। प्रारंभ में साइबर अपराध को उस किसी भी अवैध कृत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जाता है। भारत में डिजिटल क्रांति जैसे डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और UPI प्रणाली के प्रसार के साथ साथ साइबर अपराधों में भी तीव्र वृद्धि हुई है। जैसे यहाँ पे बेसिकली बात अगर हम लोग करें तो जैसे कि कोई भी अपराध होता है वहाँ पे अपराधी आपके समक्ष होते हैं, परंतु यहाँ पे ऐसे क्राइम को, ऐसे अपराध को, गतिविधि को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट और डिजिटल उपकरण ही काफ़ी होती है। यहाँ पे अपराधी भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होते बल्कि आभासीय माध्यम से अपराध करते हैं।
1: ये साइबर अपराधी किस प्रकार लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और कैसे उनके पैसे को वो निकाल पाते हैं, क्या क्या लोक लुभावने बातें करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं और किस तरह लोग इनके बातों में आ जाते हैं?
2: जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हम लोग को सबसे पहले ये जानने की ज़रूरी है कि जो ये अपराध होते हैं इसमें अपराधी क्या क्या पैतरा, क्या क्या उपदंड अपनाते हैं ऐसे अंजाम को देने में। तो देखिए सर, पूर्व में, और सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो है साइबर अपराध मुक्त, हैकिंग और अनधिकृत प्रवेश पर सीमित थे, परंतु वर्तमान समय में इसका स्वरूप अधिक जटिल और संगठित हो चुका है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग इसे अंजाम देते हैं। सबसे सामान्य और तेजी से बढ़ने वाले अपराध है फिशिंग एवं सोशल इंजीनियरिंग शामिल है, जिसमें अपराधी स्वयं को बैंक एम्प्लॉय, सरकारी संस्था या फिर विश्वसनीय संगठन के रूप में प्रस्तुत कर व्यक्ति को गोपनीय जानकारी जैसे कि OTP, बैंक डिटेल्स, ऐसे चीजें उनसे मांगते हैं। इसी प्रकार अलग अलग तरीके हथकंडे वो लोग अपनाते हैं, जिसमें कि रैमसमवेयर हमले गंभीर खतरे के रूप में उभरे हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के डेटा को लॉक कर दिया जाता है और उसे वापस प्राप्त करने के लिए एक मोटी रकम उनसे पैसे मांगे जाते हैं। आजकल आप ये भी समझ रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, लोग सेक्सटॉर्शन हो रहे हैं, ऐसे चीज़ें आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं,
1: ये डिजिटल होते हैं जी। ये डिजिटल अरेस्ट किस प्रकार लोगों को कर देते हैं और इस पे कैसे लोग फंस जाते हैं?
2: जी सर, तो सर जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होगा, डिजिटल अरेस्ट हो गए, डीप फेक हो गए। तो सर डिजिटल अरेस्ट में वो लोग अपने आप को कंज्यूमर कोर्ट के जजेस बताते हैं, हाई कोर्ट के जजेस बताते हैं, पुलिस के वरीय ऑफिसर बताते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कस्टम ऑफिसर के रूप में अपने आप को बताते हैं और वो लोग आपको एक भय में ले आते हैं कि आपका एक पार्सल पकड़ाया है, आपके ऊपर एक केस हुए हैं जो कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार से सत्य नहीं होते हैं। तो और उस विषय पे वो लोग आपको घंटों नहीं महीनों, ऐसे केसेस आ रहे हैं आज के ज़माने में हमारे से, हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग महीनों महीनों उनको अरेस्ट रखे रह रहे, डिजिटली लॉक हो जा रहे, वो कोई काम नहीं कर पा रहे अपने, और उनसे 10 करोड़, 15 करोड़, इस तरीके के एक बहुत लंबे से पैसे का डिमांड किया जाता है
1: जी। इसी तरह से सेक्स एक्सटॉर्शन भी होता है, आपसे वीडियो कॉल किया जाता है और फिर अश्लील सामग्री आप तक भेजी जाती है और उसमें भी आप फंस जाते हैं, उसके चक्कर में आप आ जाते हैं। भाषा तरह की घटनाएं जब घटित हो जाती हैं, आपको लगता है कि हम साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं और हमने अपने को उसमें फंसा लिया, OTP मांग लिया जाता है और पैसे आपके बैंक से निकल जाते हैं, तब आपको एहसास होता है। इस तरह की घटनाएं आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, सेक्सटॉर्शन हो या और भी तरह तरह की बातें, बैंक के अधिकारी बनकर आपसे बात करते हैं, पुलिस के अधिकारी बनकर बात करते हैं, अन्य तरह से चाहते हैं कि आपसे वो बात करें, जबकि इस तरह की कोई भी सरकारी महकमा आपको फ़ोन नहीं करता है। तो इस तरह की घटनाएं जब घटित हो जाती है तो फिर विक्टिम क्या करें?
2: जी सर, तो जैसे कि इसमें पहले जाने से पहले मैं आपको बस एक पीछे लेके जाना चाहूँगा। जैसे आपने सेक्सटॉर्शन के बारे जो बात किया, इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे झारखंड में जामताड़ा जिले की। तो जामताड़ा जिले इस चीज़ में बहुत आगे है और इस वजह से उनका जो डेली इनकम है एक लाखों में इनकम होती है और वो लोग के पास इन सभी चीज़ों का फ़ोन नंबर, डिटेल, सारा चीज़ रहता है और वो लोग आपके ऊपर एक वॉच स्पाई करते हैं। तो इसके ऊपर तो हम थोड़ा सा बस आपको बताना चाहे ताकि लोगों के माध्यम यहाँ से जा सके। फिर जैसे सर अभी आप बताए अपराध हो जा रहे, तो अब इससे कैसे लड़ा जाए, एक विक्टिम जो है वो कैसे अपने आप को बचाए? तो सर सबसे पहली बात है कि इसमें सिर्फ पर्सनल अपना व्यक्तिगत लॉस नहीं होता, इसमें आर्थिक नुकसान होते हैं, प्रतिष्ठान क्षति भी होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भी खतरा होता है और सामाजिक अस्थिरता भी फैलती है। परंतु हमें ये जानना चाहिए कि ऐसे चीज़ों को काउंटर करने के लिए और इन चीज़ों से लड़ने के लिए हमारे सरकार समय समय पे अलग अलग कानून लाते रहते हैं।
1: नहीं तो इसमें क्या करें, जो व्यक्ति विक्टिम हो गया, इसका शिकार हो गया, तो वो किस प्रकार अपना बचाव करे और किस प्रकार संबंधित थाने में संपर्क करे? बहुत सारे इसके लिए टोल फ्री नंबर भी होते हैं, तो कहाँ संपर्क करे और अपना बचाव वो कैसे करे?
2: जी, सबसे पहले आप के साथ ऐसी घटना जब होती है आपको कोई अन्य थाना नहीं जाना है, आपको एक साइबर सेल हर जिले में बना होता है, वहाँ पे आपको जाके अपना रजिस्टर करना पड़ता है कंप्लेन। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप घर बैठे 1930 जो कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उसमें भी आप अपने कंप्लेन, अपने परेशानी को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक फॉर्मल कंप्लेन आपका रजिस्टर होगा, उसके बाद वो लोग जिस भी सिस्टम या बैंक से आपका क्राइम हुआ है, सिस्टम से क्राइम हुआ, उसको वो लोग आपको सीज करेंगे और आगे की कार्रवाई वो लोग अपने प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ अलग कानून है, जैसे कि IT Act हम लोग जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि 2000 साल में आई थी, BNS भारतीय न्याय संहिता इसे हम कहते हैं, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2023 में आई थी।
1: तो कानून किस प्रकार बचाव करती है आपका?
2: कानून आपको एक मौका दिया जाता है कि आप बताइए आपके साथ क्या क्राइम हुआ है, उसके बाद उन चीजों को पहचान किया जाता है कि क्या ये डिजिटल है, क्या आपके कोई जानकार इसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनका कोई किसी तरह का इंटरेस्ट था। वो लोग डेटा को संरक्षण करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं, सारे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं जो भी आप बताना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर डेटा उल्लंघन अगर जो हुआ है उसको दंड, अगर आप कोई पैसे अगर लिया गया है, क्योंकि पैसा भी होता है, प्रॉपर्टी भी होता है, बहुत कुछ इसमें होता है। तो जैसे कि अगर आपके पैसे लिया गया है तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है उस अकाउंट को एट द अर्लीस्ट उसको फ्रीज कर दिया जाता है, आपके अकाउंट को भी फ्रीज किया जाता है, उनके अकाउंट को भी। साथ ही साथ अगर कोई वीडियो जैसे आपका बना के अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, अलग सोशल मीडिया में अगर इसे सर्कुलेट किया जा रहा है तो उसके ऊपर सेंसर कर दिया जाता है, उनको जितने भी नेटवर्क चीज़ें हैं उन चीज़ों से उसे आउट कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है
1: जी।
2: क्योंकि सबसे पहले आपकी छवि को बचाया जाता है
1: जी।
2: अगर ऐसे चीज़ों में
1: भाष्वर जी इस तरह की घटना घटित नहीं हो, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि प्रायः देखा जाता है समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं और भी जानकारियां मिलती है कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की घटना के शिकार हो जाते हैं, तो जागरूक होने की आवश्यकता है, सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कोई फ़ोन करता है आपको, इस तरह की बातें करता है, तो उसके भ्रमजाल में हमें नहीं आना है। तो किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप कि इस तरह की जो फोन्स कॉल आते हैं उससे आप बचाव करें, किस तरह की जानकारियां शेयर करने की बात की जाती है, OTP मांग किया जाता है, तो इस तरह की बात कोई भी बैंक या कोई भी सरकारी कार्यालय से इस तरह के फोन्स नहीं आते हैं, आपको तुरंत सजग हो जाने की आवश्यकता है।
2: जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा चीज़ बताया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं आज के समय पे जो साइबर सेल्स में CBI के पास जो इस तरीके केसेस आ रहे साइबर क्राइम से रिलेटेड, उसमें यही देखा जाता है कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पदों में जो बैठे हैं, जैसे कि DIG हो गए साहब, हो गए एक अध्यापक, हो गए कहीं
1: इवन
2: बैंक ऑफिस, तो यहाँ पे जैसे कि

0: है कि आपको आइडेंटिफाई करना, आपको कभी भी किसी से भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, एसएमएस कोई आया तो वो नहीं शेयर करना है, किसी तरीके का अनजान लिंक में शेयर ने आपको कोई अपना नहीं करना। समय समय पे आपको अपना पासवर्ड जो है चेंज करते रहना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे आजकल समाधान हो गए हर चीज़ों में, उसका आपको करते रहना है। इवन आपको अगर सिस्टम है, फ़ोन है, कोई भी चीज़ आपके पास उपकरण जो भी है, उसको आपको हर समय सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना है। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्या होता है, और आपको हर समय अपने बैंक में जाके अपने डिटेल्स को अपडेट करना पड़ता है, और ये देखना चाहिए कि क्या उसमें किसी ने धोखाधड़ी से अपना नाम उसमें अंतर्गत न कर दिया हो। इन चीज़ों के माध्यम से आप ये अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है प्राइवेसी। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, अपने बैंक डिटेल से हो गए या अपने निजी जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, इन चीज़ों को कभी आप पब्लिक करने से बचे। भले आपका प्राइवेसी सबसे पैरामाउंट माना जाता है, सबसे उच्च माना जाता है, इसी को लेके कुछ जजमेंट्स भी है जहाँ पे प्राइवेसी को देख के।
1: इसमें यदि आप जागरूक होते हैं और इस तरह के कोई भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, ओटीपी मांगा जाता है, बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना कोई चाहता है, या आपको कोई डराता है, धमकाता है फ़ोन के माध्यम से, तो आप इस चक्कर में नहीं आए, इसके बातों में नहीं आए, और इस तरह की जब घटनाएं घटित हो जाती है तो तुरंत आप नज़दीकी थाना में आप संपर्क करें। टोल फ्री नंबर है
0: 1930,
1: टोल फ्री नंबर है 1930, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, और अवांछित कॉल को हमें अटेंड नहीं करना है।
0: और सबसे बड़ी बात है, इसमें एजेंसियों से ज़्यादा आपको अपने आप को खुद बचाना है, क्योंकि एजेंसियों के पास भी कुछ ज्यूरिडिक्शंस होते हैं कि वो लोग हर चीज़ में आपकी सहायता नहीं कर सकते।
1: बड़ी अच्छी आज बातचीत हुई साइबर अपराध पर और उससे कौन कौन सी संबंधित विधिक व्यवस्थाएं हैं। श्री भास्वत प्रकाश जी, आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से।
2: दोस्तों, सही जानकारी और सतर्कता से ही और अपनी सूझबूझ से ही हम साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो इसी विषय पर हम सुन रहे थे श्री प्रकाश जी को और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। दोस्तों, अब समय हो चला है एक प्यारा सा गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी हमने सुना एक प्यारा सा गीत, फिल्म था हम किसी से कम नहीं, और इस गीत को गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार जी ने। तो दोस्तों, आइए एक और खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं। विषय है बेटी से बढ़ता घर का मान। दोस्तों, पुराने समय में समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। शिक्षा, खेल, विज्ञान, राजनीति, सेना, चिकित्सा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। एक बेटी परिवार को प्रेम और संस्कारों की डोर में बांधकर रखती है। वह अपने माता पिता की सेवा करती है और कठिन समय में उनका सहारा बनती है। तो दोस्तों, बेटी के हंसने से घर में खुशियां की गूंज सुनाई देती है। उसकी मासूम बातें और चंचल स्वभाव पूरे परिवार का मन मोह लेते हैं। वह अपने व्यवहार से परिवार के हर सदस्य को जोड़कर रखती है। जब बेटी घर में रहती है तो त्योहारों और पारिवारिक अवसरों की रौनक और भी बढ़ जाती है। बेटी का स्नेह घर के वातावरण को मधुर और आनंदमय बना देता है। दोस्तों, आज की बेटियां केवल घर तक ही सीमित नहीं है, वो अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर रही है। कई बेटियां अपने माता पिता की आर्थिक सहायता भी करती हैं और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती है। बेटियां अपने माता पिता की भावनाओं को अच्छी तरह समझती हैं। वृद्धावस्था में भी माता पिता की सेवा और देखभाल में भी पीछे नहीं रहती। समाज के विकास में बेटियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित बेटी दो परिवारों को शिक्षित और संस्कारिक बनाती है। यदि बेटियों को समान अवसर दिया जाए तो वो समाज और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है। आज सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच एक बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, समाज में अभी भी कई स्थानों पर बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह सोच बदलनी चाहिए। बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं है। उन्हें भी शिक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। जब परिवार और समाज बेटियों को सम्मान देंगे, तभी देश वास्तविक रूप से प्रगति कर सकेगा। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि बेटी परिवार की सबसे सुंदर धरोहर होती है। बेटी से घर में प्रेम, शांति और खुशियों का वातावरण बना रहता है। वह परिवार को एकजुट रखने वाली शक्ति होती है। इसलिए हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए और उनके सपनों को उड़ान देने में सहयोग करना चाहिए। सचमुच बेटी से ही घर का मन बढ़ता है और जीवन में खुशियों का उजाला फैलता है। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह फिर से इसी समय, इसी कार्यक्रम और इसी दिन मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त युवराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

कल्याणी, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे और कार्यक्रम की प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की, सूत्रधार युवराज। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, जहां रांची कार्यक्रम हम सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 और 12 सेकेंड हो चुके हैं। आपको इंतजार होगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। जोहार रांची कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जोहार, और उम्मीद है आप सभी श्रोता हमारे अच्छे होंगे और पूरे एक घंटे आज आपके साथ हमारी होगी बहुत अच्छी अच्छी बातें, साथ ही अच्छे गीत भी हम सुनेंगे। तो चलिए अच्छी बातों की बात चली है तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। संघर्ष की चाबी से ही किस्मत के ताले खुलते हैं, संघर्ष की चाबी से ही किस्मत के ताले खुलते हैं, मेहनत की राह पर चलकर ही असल किरदार निखरते हैं, डरना नहीं रात के अंधेरों से, डरना नहीं रात के अंधेरों से, यही तो सुनहरे सपने पलते हैं, रुकते नहीं जो मुश्किलों में उनके सपने मुकम्मल बनते हैं। और वैसे भी कहा गया है ना श्रोताओं की हर परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ता है जीवन में, रास्ते चाहे कैसे भी हो, सफ़र चाहे कैसा भी हो, कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम साथ मिलकर या अपने पे भरोसा रखकर उस समस्या का सामना करते हैं तो यकीन मानिए सफ़र बेहद खूबसूरत हो जाएगा।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम आप सभी देख रहे हैं कि हर दिन प्रायः बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिन कैसे रहेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बातें आपसे कर लेते हैं। रांची समेत आसपास के जिलों में मौसम अपने पुराने अंदाज में लौट आया है। राज्य में अगले सप्ताह भी मौसम में उतार चढ़ाव रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के ऊपर और आसपास के राज्यों में कई सिस्टम लगातार बन रहे हैं, इससे राज्य में 20 तक तापमान में ज्यादा वृद्धि होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब यह है कि गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी से आ रही दक्षिण पूर्व की हवा के कारण मई में गर्मी बढ़ने के साथ ही देश के पूर्वी भाग में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं। देश के पश्चिमी से लेकर पूर्वी भाग तक यह ट्रफ कायम है, इससे मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रांची समेत राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और रांची में मात्र 2 मिलीमीटर बारिश हुई। और आज के तापमान की बात कर ले तो अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में आज भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश की संभावना है। यानी मौसम बेहद खूबसूरत सा है, प्यारा सा है, तो इस मौसम का आनंद आप उठाइए और फिलहाल इस गीत का आनंद भी उठाइए।

श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम भी यूं ही चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और बात कर लेते हैं आज के खास दिन की, तो आज है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। वैसे तो इनका जन्म 7 मई 1961 को हुआ था, लेकिन बांग्ला तिथि के अनुसार वैशाख माह की 25वीं तिथि को यह मनाया जाता है और वो आज है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के एक महान कवि, दार्शनिक, संगीतकार और शिक्षाविद थे। जैसा कि पता है हम सबको कि इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, और उनके बारे में थोड़ी सी ज़रूरी बातें हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। उन्हें यह सम्मान उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला था। साथ ही गुरुदेव भारत का राष्ट्रगान जनमन गण के रचयिता भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला भी लिखा है। गुरुदेव न केवल कवि थे, बल्कि उन्होंने उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, निबंध भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में काबुलीवाला, गोरा, नौकाडूबी, चौखेर वाली और डाकघर शामिल है। उन्होंने शिक्षा के प्रति एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाया और 1901 में बंगाल में शांति निकेतन में एक ओपन एयर स्कूल शुरू किया, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। वे राष्ट्रवाद से ऊपर मानवता को रखते थे और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। उन्होंने न केवल साहित्य बल्कि संगीत, रविंद्र संगीत और पेंटिंग के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान दिया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 7 अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली, और उनके विचार और रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हें हम नमन करते हैं।

श्रोताओं, बात के आज के दिन की हो रही हो तो आज बहुत ही खास दिन भी है, और आज है राजपूत वंश के महान राजा महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जीवंत कंवर, यानी जिन्हें हम जयवंता बाई के नाम से भी जानते थे, उनके माता पिता थे। बचपन में इन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने, जब उनकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से हमेशा मना कर दिया और स्वतंत्रता का मार्ग चुना। 18 जून 1576 को अकबर के साथ प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने अद्वितीय वीरता दिखाई। उन्होंने महल का सुख त्याग कर कई वर्षों तक अरावली की पहाड़ियों में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। वीरता और शक्ति में अत्यंत बलवान थे वो। उनके भाले का वजन करीब 81 किलो था, और वो जो कवच अपनी छाती पर पहनते थे उसका वजन 72 किलो बताया जाता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश के एक महान राजा थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। महान योद्धा महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को 54 में हुआ था, लेकिन वो भारतीय इतिहास में अमर हो गए। और महाराणा प्रताप के साथ जुड़ी जो सबसे ज़रूरी बात है, जो हम हमेशा याद करते हैं, वो है उनका प्यारा घोड़ा चेतक, जो अंतिम समय तक उनके साथ रहा। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं।

बात कर रहे हैं हम आज के दिन की, तो आज बहुत सारे महान लोगों का जन्मदिन है और ऐसे ही एक महान विभूति हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी जयंती भी आज है। उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। यह उनकी आज उनकी 160वीं जयंती है। गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती आज पूरे भारत में मनाई जाएगी। भारत में उनका बहुत ही योगदान रहा है। 1905 में उन्होंने पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उनका विचार था कि वो संवैधानिक साधनों के माध्यम से सामाजिक सुधार पर जोर दे पाए। गोखले जी ने महिलाओं की शिक्षा और समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके विचारों और देश के प्रति योगदान को याद करते हुए आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

श्रोताओं, बात के आज के दिन की हो रही हो तो इतिहास पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। आज ही के दिन 2005 में मॉस्को में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी सेना पर विजय की 60वीं वर्षगांठ के जलसों में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। आज ही के दिन 2010 में भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए वर्ष 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। एक नज़र डाल लेते हैं आज जन्म लेने वाले व्यक्तियों पे। आज ही के दिन स्नेहमयी चौधरी, प्रसिद्ध हिंदी कवित्री का जन्म 1935 में हुआ था। साथ ही 1836 में 9 मई को फर्डिनांड मेनोयोर, प्रसिद्ध फ्रांसीसी नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, उनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। एक नज़र डाल लेते हैं आज के उन विभूतियों पर जिनका आज निधन हुआ है। एन जनार्दन रेड्डी भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 2014 में आज के दिन उनका निधन हुआ। कलमशी जेठा भाई सुमैया भारतीय शिक्षाविद थे, जिनका निधन भी आज ही के दिन 1999 में हुआ। भवानी दयाल सन्यासी राष्ट्रवादी हिंदी सेवी और आर्य समाजी थे, जिनका निधन 9 मई 1959 को हुआ। तेनजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट हिमालय पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति का निधन भी आज ही के दिन 1886 में हुआ था। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निधन भी 9 मई 1995 को हुआ था। साथ ही आज ही के दिन प्रसिद्ध गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का भी निधन 1998 में हुआ था। हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज पार्श्व गायक और अभिनेता थे तलत महमूद, जिन्हें उनकी शहद से भीगी और धीमी आवाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1940 और 50 के दशक में रोमांस और गजलों के बादशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई। साथ ही लगभग 13 फिल्मों में अभिनय भी किया। तलत महमूद का जन्म लखनऊ में हुआ था और संगीत का माहौल घर में ही था। शुरुआत में तपन कुमार के ये नाम से गाने गाते थे। उन्होंने 12 भाषाओं में लगभग 750 गाने गाए, जिनमें 1950 के दशक में अधिकांश रोमांटिक गीत शामिल है। उनके प्रमुख गानों में ए मेरे दिल कहीं और चल, शामे गम की कसम और जलते हैं, जिसके लिए बेहद लोकप्रिय हैं, जिन्हें आज भी हम गुनगुनाते हैं। तो आइए उनकी आवाज़ में ये खूबसूरत सी गजल सुनते हैं।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं जोहार रांची कार्यक्रम अपनी दोस्त सुनीता के साथ। और चलिए कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे दें। अगर आपने कहीं जाने का प्लान किया है और ट्रेन की टिकटें ली हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से नवंबर तक 27 ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। चक्रधरपुर मंडल, बिलासपुर मंडल और मूरी स्टेशन पर विकास कार्यों को लेकर मेगा और पावर ब्लॉक लिया गया है, जिससे 27 ट्रेनें 9 मई से लेकर नवंबर तक विभिन्न तिथियों में रद्द रहेगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मूरी स्टेशन पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक पावर ब्लॉक लिया गया है। इसके कारण रांची रेल मंडल से परिचालित होने वाली 7 ट्रेनें शुक्रवार से प्रभावित रहेंगी। ये ट्रेनें 9 मई तक प्रभावित रहेंगी। इसमें हटिया आदित्यपुर हटिया एक्सप्रेस, हटिया खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस, रांची खड़गपुर रांची एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील मेमू ट्रेन, हटिया साकी हटिया मेमू ट्रेन हटिया साकी मेमू 9 मई तक रद्द रहेगी। रेलवे की ओर से बताया गया है कि इसके अलावा वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू भी शुक्रवार को आंशिक रूप से रद्द रही। 9 मई को यह ट्रेन गोमो हटिया गोमो के बीच रद्द रहेगी। उधर तेज हवा के बीच रांची मोरी डाउन रेल खंड पर दोपहर में पेड़ गिरने से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रांची से रवाना ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा है और शाम 6 बजे के बाद जो यात्रा थी वो सुगम हुई है। साथ ही बिलासपुर मंडल में विकास कार्य से कुछ ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी।

पुणे हटिया एक्सप्रेस 10 से 14 जून, हटिया पुणे एक्सप्रेस 12 से 15 जून, गया लोकमान तिलक रांची से 10 जून, लोकमान तिलक गया से 12 जून, जसीडीह एक्सप्रेस भाया रांची से 12 जून। इस तरह से बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि रद्द रहेगी। चक्रधरपुर मंडल में भी विकास कार्य के कारण कई ट्रेनें विभिन्न तिथियों पर रद्द रहेंगी। तो अगर आपने यात्रा का प्लान इन ट्रेनों से बनाया है तो एक बार फिर से तैयारी कर ले और दूसरे रूट से जाने की कोशिश करें और अपने रास्ते को एंजॉय करें, अपने सफ़र को एंजॉय करें और इन जानकारियों को ध्यान में रखकर टिकट ज़रूर ले। और चलने की बात हो रही हो तो चल, बहुत ही खूबसूरत से ये गीत हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं।

से कुमाऊं के रास्ते लिपुलेख होते हुए प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा का कार्यक्रम और शुल्क का विवरण जारी कर दिया गया है। इस बार इस यात्रा में कुल तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। 30 जून से प्रारंभ होने वाली ये यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी, जिसमें 10 दल शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रा के पंजीकरण के लिए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं, तो आप जाना चाहते हैं तो जल्दी से अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। साथ ही एक और अच्छी खबर हम आपको बताएं कि अब जो स्वदेशी ग्लाइड प्रणाली तारा जो है, जिसका परीक्षण भारत ने ओडिशा के तट से दूर विकसित एक नई ग्लाइड हथियार प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इससे सेना की ताकत और बढ़ेगी और दुश्मन के लिए यह काल साबित होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार टैक्टिकल एंड एडवांस रेंज ऑर्गमेंटेशन प्रणाली का परीक्षण गुरुवार को किया गया। मंत्रालय ने बताया कि TARA भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो बिना निर्देशित युद्धक हथियारों को सटीक निर्देशित हथियारों में परिवर्तन कर देगी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने इसे बनाया है और यह दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। तो भारत नित्य नए प्रगति की ओर अग्रसर है और भारत क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है और हमें अपने देश पर गर्व है।

श्रोताओं, बातें करते करते वक्त कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। बहुत थोड़ा सा समय है जब हम थोड़ी सी बातें आपसे कर सकते हैं। मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है, हर दिन बारिश पानी तूफान आ रहे हैं, लेकिन गर्मी भी बीच में हो रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है। तो ऐसे में अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए पानी का सेवन जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर कीजिए। साथ ही इस वक्त तेल मसाला वाली चीज़ों को खाने से बचिए और बहुत ज़्यादा एसी में रहिए मत, क्योंकि एसी से रह के तुरंत अगर अभी आप निकलेंगे तो स्ट्रोक्स का खतरा भी रहता है। मौसम बदल रहा है और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि 20 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा। तो मौसम अच्छा है, तो इस मौसम में अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अपना काम अच्छे से करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और इस कार्यक्रम से आज के लिए सुनीता को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके ही पसंद के कुछ प्यारे से खूबसूरत से गीत। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम हम सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

शिवसेना। आपकी पसंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सबसे पहले गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सनी का, जिसे गाया लता मंगेशकर।

नहीं पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी थाना रोड बक्सर से, उमानंद केशरी, धनानंद केशरी, विनोद केशरी, साथ ही आप हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से आप हैं प्रवीण डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, डब कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से आप हैं वशीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म सनी का ये खूबसूरत सा गीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी रांची से आप सभी सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम, और आइए अगला गीत हम सुनते हैं फिल्म गुलामी से लता मंगेशकर की आवाज में। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं ग्राम बग बुढ़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोणिका प्रोणामिका, उत्कर्ष नेताम, साथ ही आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू।

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बाजार से। इस गीत को गाया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतक बीरक, मीका बीरक। आप हैं गोला बाजार बक्सर से, शदानंद आर्या, अभय नंदारिया, परमानंद आर्या, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित।

श्रोताओं, आपकी पसंद में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें आप अपने प्यारे प्यारे खत और खतों के ज़रिए आप जो गाना सुनना चाहते हैं वो हमें ज़रूर लिखिए। खत लिखने के लिए आपको हमारा पता मालूम है, लेकिन फिर भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रांची, पिन संख्या है 834001। तो हमें आपके खातों का इंतज़ार रहेगा और आपके पसंद के गीतों का भी। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म शारदा का ये खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं बड़ा बाम्बो सुपाई साई से, देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन। चकरधरपुर ग्राम गिरिया लोहार से आप हैं कोमल, बेसरा, बासंती, अनु, बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा। साथ ही आप हैं कोटवा नारायण, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। आइए आपकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म शारदा का ये खूबसूरत सा गीत।

तो श्रोताओं, हमें आपके खतों का इंतजार रहेगा और आज इस कार्यक्रम से बस सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। वक्त है महिलाओं को संबोधित हमारे दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। आज इसमें चर्चा होगी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुआयामी व्यक्तित्व। साथ ही गीतों भरी कहानी आप सुनेंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की और कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं राखी।

बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। इस साहित्यमय संगीतमय सफर में आज आपकी हम सफर हूं मैं राखी। विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और भोर के अंधेरे में ही गीत गाता है। तितली महीनों की गिनती नहीं करती बल्कि क्षणों की गिनती करती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। जी हाँ बहनों, जीवन को दिशा देने वाली ये सुंदर बातें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाई हमें। आज उनकी जयंती है। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, चित्रकार, संगीतकार, दार्शनिक और शिक्षाविद थे वो। उनकी गीतांजलि एक अमर कृति है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहनों, उनके प्रमुख उपन्यासों में गोरा भी बहुत ही प्रसिद्ध रहा और घरे बायरे ये भी उनकी अमर कृतियों में शुमार है। वो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं, साथ ही आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहनों, वो महान दार्शनिक, समाज सुधारक और जन चेतना जगाने वाले नायक भी हैं। हम अपने गृहलक्ष्मी परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं। और बहनों, हम आपको बता दें कि आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी है। इसका आयोजन मुख्यतः मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर में किया जाता है। यह वर्ष में दो बार मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है बहनों वो ये है कि हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उसके आवास की रक्षा करने के में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये पक्षी हमारे मेहमान हैं बहनों और इन्हें सरहदें कभी नहीं रोक सकती।

0: अंशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहनों, विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और अब वक्त है गीतों भरी कहानी का। जी हाँ, देर नहीं करेंगे और आज आपको सुनवाएंगे कहानी, शीर्षक है एक नया सफर, आलेख और वाचन राखी शर्मा का। जी हाँ, जो अभी आपसे मुखातिब है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आईने के सामने खड़ी लावण्या खुद को महीनों बाद निहार रही है। नहीं, इसे निहारना नहीं कहेंगे, बस अपाद मस्तक टटोल रही है स्वयं को स्वयं की ही नजरों से। ये आदमकद आईना वर्षों से साक्षी है उसके जीवन के बदलते प्रतिबिंब का। बोलता तो हरदम सच्ची है बेचारा, पर व्यर्थ के आरोप लगा दिए जाते हैं उस पर कभी कभी। अब इस उम्र में आईने का आकर्षण कहाँ रह जाता है भला? ये बाल सामने ही से सफेद क्यों दिखने लगते हैं? अभी 15 दिन पहले ही तो कलर किया था। उम्र के साल दर साल कैसे कभी चेहरे की लकीरों के रूप में तो कभी बालों की सफेदी बनकर अपनी मुहर लगा ही देते हैं। व्यस्तता के दौर में यौवन कैसे फिसलता चला जाता है और दरवाजे की देहरी पर खड़े होकर पर्दे के पीछे से मुस्कुराकर झांकते हुए हाथ हिलाकर विदा लेने की तैयारी कर लेता है, कहां पता चलता है। हाँ, चेहरा तो वही है, बस कुछ सूनेपन की सलवटें तो कुछ जिम्मेदारियों की दरारें। कभी आंसुओं से डबडबाई तो कभी मुस्कुराहटों के साथ सिकुड़कर छोटी पड़ी हुई आंखें। पर जो भी हो, अपना चेहरा, अपना व्यक्तित्व प्रिय है लावण्या को। लावण्या भले ही ना अपना लावण्य बचा सकी हो, पर आत्मविश्वास से सधे कंधे और सीधी गर्दन उसके गरिमामय व्यक्तित्व को और भी ज्यादा गरिमामय बना देती हैं। अस्तित्व ऐसा जिसका एहसास हर पल होता है उसे। एक ऐसी गंभीरता जिसे देखकर लोगों की नजर में सम्मान आता है, शायद इसलिए भी कि लावण्या स्वयं का सम्मान करना जानती है। पिता जब थे तो उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई, सर उठाकर जीना सिखाया। पिता के चले जाने के बाद भाई ने हर कदम पर उसके कदमों को आगे रखा, हमेशा ये कहा कि तुम्हारा हुनर ही मुसीबत के समय तुम्हें उबारेगा, मार्शल आर्ट, योग, ड्राइविंग सब कुछ सीखो। एक सशक्त स्त्री जिसे बिना किसी सहारे के भी चलना आता हो, जो अपने जीवन का संचालन स्वयं कर सकती हो, ऐसी स्त्री बनो। लावण्या उम्र के साथ निरंतर आगे बढ़ती रही, निखारा है खुद को उसने, पीछे नहीं थकेला कभी। यूं भी ये स्वयं के लिए जी गई जिंदगी कहाँ है? दूसरी स्त्रियों के जीवन में रंग भरने के लिए समर्पित किए गए जीवन के कुछ वर्ष हैं ये। लावण्या ने अपने हाथों को गौर से देखा, हरी हरी मोटी नसें उभर कर सामने आ गई हैं। हाँ, ये वही हाथ हैं जिसने कई नाजुक उंगलियों को थामे रखा है। अभी 10 साल पहले की ही तो बात है, लगता है जैसे अभी अभी गुजरा हो सब कुछ। अचानक हुए हादसे में पति की मौत, जीवन के सारे रंग मानो उड़ से गए। जीवन का पहिया जैसे उनकी सांसों के साथ ही थम गया हो। पिता ने हमेशा उसकी शिक्षा को महत्व दिया था, भाई ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, सब कुछ वैसा ही था। सीखी हुई विद्या और प्राप्त किया हुआ ज्ञान जीवन के अंतिम क्षणों तक भी काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कहते थे भाई। कभी ये नहीं सोचना कि इन चीजों का औचित्य क्या है, क्यों सीखी जाए ये विद्या। अब समझ में आता है इन बातों का सार, उनकी बातों का। पति जब तक रहे तब तक अच्छे से जिंदगी गुजरी, अच्छा खाना पहनना घूमना फिरना सब बात के लिए कुछ भी नहीं सोचा, न पति ने न उसने। लगता था जैसे जिंदगी हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहेगी, बस आज में जीना और खुश रहना, यही जानते थे दोनों। आड़े वक्त के लिए न कभी कुछ बचत की, न ही कोई योजना बनाई भविष्य की। आखिरकार आज लावण्या का जीवन शून्य पर आकर ठहर गया। याद आती है पूरी यात्रा उसे, कितने साल लग गए जीवन को पटरी में लाने में, न पिता का हाथ न पति का साथ, जिंदगी ने जैसे अपनी दिशा ही खो दी। लेकिन लावण्या ने कभी भी अपना हौसला टूटने नहीं दिया, अपनी हिम्मत नहीं खोई।

अचानक एक दिन एक छोटी सी घटना ने लावण्या को एक नई दृष्टि दे दी। सड़क के किनारे खड़ी थी वो ऑटो रिक्शा के इंतजार में, तभी एक ऑटो रिक्शा सामने आकर रुका। ड्राइविंग सीट पर एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ बैठी थी। नीले कपड़े, कंधे पर नीला सूती दुपट्टा। पीछे की सीट पर दो महिलाएं भी बैठी थीं। कुछ मनचले दबी जुबान में कुछ फप्तियां कसकर निकल गए। कुछ और लोग भी थे जो अजीब सा मुंह बनाकर देख रहे थे, मानो कोई अजूबा देख लिया हो। वैसे भी इस छोटे से शहर में किसी महिला का ऑटो रिक्शा चलाना अजूबे जैसी बात ही थी, और आंखों को जो देखने की आदत न हो वो दिख जाए तो हैरत होना भी स्वाभाविक ही था। ये प्रतिक्रिया भी उस मानसिकता से ही प्रेरित है। ये बात वो ऑटो ड्राइवर महिला शायद भली भांति समझती है, इसलिए उसके चेहरे पर बेफिक्री का भाव दिख रहा था। उसने अपने दुपट्टे से सीट पूछते हुए कहा, मैडम आइए, आपको जहां जाना है हम पहुंचा देंगे। मेन रोड चलेंगे? लावण्या ने पूछा। हाँ जी, उधर ही तो जा रहे हैं। चुपचाप ऑटो पर बैठ गई लावण्या। आज एक अजीब सा उत्साह महसूस हुआ उसे अचानक। उसने ऑटो चालक महिला का नाम पूछा। पिंकी नाम था उसका, और नंबर लेकर घर आ गई। पूरी रात नींद नहीं आई उसे। सुबह पिंकी से लंबी बात की। मैडम जी, ये ऑटो मेरे पति चलाते थे, हम शौक से चलाने सीख लिए थे। आज उनके जाने के बाद यही हुनर मेरा पेट चला रहा है, बच्चा भी पाल रहे हैं हम। अब हम खुद से अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग संभाल लिए हैं। तो यही जानते हैं हम मैडम जी कि हर लड़की को इज्जत की रोटी कमाना आना चाहिए। दुनिया तो बस ताना देती है, रोटी नहीं देती।

इस साधारण सी महिला ने लावण्या को जीवन का एक उद्देश्य दे दिया था। पिंकी के साथ मिलकर लावण्या ने तमाम वैसी महिलाओं को इकट्ठा किया जो अकेली और आर्थिक रूप से बेसहारा थीं, लेकिन कुछ करने का जज्बा था उनके अंदर। सबको ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिलवाया और संस्था का नाम रखा उड़ान। फिर उसे लगा कि कभी कोई कठिनाई न हो इन्हें, इसलिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी उन महिलाओं को दिलवा दी। आज उसकी संस्था को सम्मान मिलने वाला है। आईने के सामने खड़ी लावण्या सिर्फ अपना प्रतिबिंब नहीं देख रही है आज, बल्कि निहार रही है अपने जैसी उन महिलाओं के सुखद भविष्य को भी। और बाहर नीले कपड़ों में खड़ी है वो सभी महिलाएं जिन्होंने इस सफर में उसका साथ दिया। मैडम, हम लोग आ गए हैं, चलिए, बाहर से आवाज आती है। पिंकी आज फिर अपने नीले दुपट्टे से सीट साफ कर रही है। लावण्या धीरे से हंसकर बैठ जाती है उसके बगल में और कहती है, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये जारी रहेगा।

तो बहनों ये थी कहानी एक नया सफ़र, आलेख और वाचन राखी शर्मा का। बहनों ये सफ़र अभी सच में ख़त्म नहीं हुआ और इस कहानी में मैंने ये कहना चाहा है कि हर महिला के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो खुद को टूटा हुआ महसूस करती है, लेकिन बहादुरी टूट जाने में नहीं है बल्कि गिरकर फिर से उठ जाने में है, संभलने में है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानेंगी तब तक आपको कोई भी हरा नहीं सकता और जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर एक मजबूत

आपका रास्ता बदल दे। तो आइए अब चलते चलते आपको एक और ऐसा ही गीत सुनवाएं जो आपको हमेशा उत्साहित रखे और आप भी हमारी कहानी की नायिका लावण्या की तरह न सिर्फ अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी जीने की राह दिखाएं और आगे बढ़ते रहें।

0: तो बहनों, ऐसे ही आप भी आसमान की ऊंचाइयां छू लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ये चलते चलते बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी को दीजिए विदा। नमस्कार।
1: गृह लक्ष्मी गृहलक्ष्मी कार्यक्रम।

सुन रहे थे अपनी दोस्त राखी के साथ। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता प्रदूषण के कारण और नियंत्रण। वार्ताकार है नीरज कुमार सिन्हा, प्रस्तुति सहयोग है अवधेश कुमार का और प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की।

0: लीजिए प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। आज आप इसमें सुनेंगे वार्ता प्रदूषण के प्रकार एवं नियंत्रण। वार्ताकार हैं नीरज कुमार सिन्हा।
1: नमस्कार, आप सबको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप सब मेरे सामने हैं और आज का ये कार्यक्रम समर्पित है कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए। आज मैं आप सबसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक चैप्टर नहीं, सिर्फ एक एग्जाम टॉपिक नहीं, बल्कि हमारे जीवन, हमारे भविष्य और हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन छोटी सी शब्द है जिसे हम कहते हैं हिंदी में दूषित होना, और इसको हम कैसे कंट्रोल करें और आगे चल के ये हमारे आने वाले पीढ़ी को बचा सके, इसके लिए हम सबको मिलकर कोई ना कोई कारगर उपाय करना पड़ेगा। मैं आप सबसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। जब आप सुबह में उठते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जरूर आप सांस लेते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या वो हवा शुद्ध है कि नहीं? आपको अच्छी तरह से इसका जवाब मिलेगा। और अगर आप इस वातावरण, इस नेचर, इस धरती माँ की पूजा करते हैं तो आपको खुद से जवाब मिलेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि जो हवा हम आज सांस के तौर पे ले रहे हैं, जो पानी हम आज पी रहे हैं और जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, वो धीरे धीरे दूषित होते जा रहा है। सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो हम वर्ड कहते हैं पोल्यूशन, ये वो चीज है जो हार्मफुल, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और वो हमारे वातावरण को पूरी तरह से असुरक्षित बना चुका है। सरल भाषा में, जब हवा, पानी और जमीन में गंदगी, जहरीली पदार्थ या हार्मफुल एलिमेंट्स, एलिमेंट जैसे आप अभी कह सकते हैं, बहुत कॉमन सा एलिमेंट है, हम लोग कहते हैं वाटर में आयरन बढ़ गया है, कहीं कोई बोलता है वाटर में कैल्शियम बढ़ गया है। पोल्यूशन एक ऐसी बात नहीं है जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, यह एक हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, ये एक आर्थिक प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा हम लोगों को अंदर से कमजोर बना देता है। ये हमारे उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने इस नेचर को किस तरह से बचा सकें। अब सवाल आता है, कितने तरह का पोल्यूशन होता है? तो अगर हम कहते हैं अनगिनत तरह का पोल्यूशन है, बट उसमें चार बहुत मुख्य है। पहला है एयर पोल्यूशन। जो हवा हम सांस लेते हैं वो आज गाड़ियों के स्मोक से भरा पड़ा है, फैक्ट्रियों के चिमनी से जो धुआं निकलता है उससे भरा पड़ा है, कोयला जो जल रहा है उससे भरा पड़ा है, और जो हम पेड़ काट दे रहे हैं, जो पेड़ था कभी किसी जमाने में कि हर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट करता था, और ये सारा चीज एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। हर समय जब भी कोई भी व्हीकल जो धुआं छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो बहुत हार्मफुल गैस है। आपको भी पता है कि आज के डेट में ऐसा नहीं है कि जो सिगरेट पीते हैं उन्हीं को फेफड़े का कैंसर होता है, बल्कि जो उनके आसपास भी रहते हैं उनको भी ज़्यादा फेफड़े का कैंसर होता है, जिसको हम लोग पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यानी हम खुद से तो नहीं पी रहे हैं, बट अगर कोई पी रहा है तो उसको जब हम सूंघते हैं तो हम उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि WHO के अनुसार लाखों लोग हर साल एयर पोल्यूशन के कारण बीमार होते हैं और कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, वो हमारे लंग्स को, हमारे दिमाग को और हमारे कंसंट्रेशन को खत्म कर देता है। बच्चों, अगर हमारी हवा ही शुद्ध नहीं है तो हमारा परफॉर्मेंस तो सच में गिरेगा, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर में बढ़ता है तो वो आपको सोने पे मजबूर करता है। अब आप चाह रहे हैं कि हम पढ़ना तो चाह रहे हैं, बट वो शरीर में ऑलरेडी इतना टॉक्सिक चीज बढ़ा हुआ है कि आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो हम लोगों को रोकना पड़ेगा। अब दूसरा देखते हैं, वाटर पोल्यूशन, जो जल हम पीते हैं वो भी नहीं शुद्ध है। जल ही जीवन है कहलाता है, बट आज नदियां सूख गई हैं क्योंकि फैक्ट्री से जो केमिकल निकल रहा है और जो प्लास्टिक निकल रहा है और जो सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, यानी जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी उसी नदी में जाके गिर रहा है। आप सोचिए, हमारी नदियां इतनी अच्छी थी कि कभी किसी जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है तो बहता नदी का पानी पी लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज वो पानी भी शुद्ध नहीं है जो प्रकृति हमको दिया था। प्रकृति इतने अच्छे तरीके से नदी को बनाया, पहाड़ से गिरकर वो पठार, पठार से मैदान और मैदान से फिर बालू, उसको भी हम लोग तहस नहस कर दिए। क्यों? हम अपने फैक्ट्री के वेस्ट को उसमें फेंक रहे हैं। उस पीने के पानी को जिसको कभी हम स्वच्छ कहते थे, अब वो स्वच्छ रहा ही नहीं। अब वही पानी के अंदर जो एक चीज है जिसे हम मछली कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं और एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, वो भी हमको बहुत हानि कर रहे हैं। मछली जब हम उस पानी का खाएंगे तो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ेगा और हमें क्या होगा, हम जाके फिर भी इच्छा से मछली, जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सोच के कर रहे हैं, बहुत सारे फ्लेश मटेरियल को हम कंज्यूम कर रहे हैं ये सोच करके कि वो प्रोटीन बढ़ाएगा, बट वो प्रोटीन तो बढ़ा ही नहीं रहा। वो प्रोटीन बढ़ाने की जगह हमारे अंदर दूसरा रोग जन्म दे रहा। आप इसको समझिए, ध्यान से समझिए कि ये भी हमारा शुद्ध नहीं है और जिम्मेवार हम ही इंसान हैं। हम ही इंसान जो इस पृथ्वी पर निर्भर थे, आज उससे भी दूर हो गए। अब तीसरा आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है, लैंड पॉल्यूशन, धरती जिस पर हम रह रहे हैं। आप समझिए, हर जगह आप घूमिएगा, प्लास्टिक का बैग और केमिकल्स और प्लास्टिक के बहुत सारे पैकेट आपको दिखेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, जमीन पर देखिएगा, इतनी सारी बोतलें फेंकी हुई हैं, इतने सारे प्लास्टिक का पैकेट्स फेंका हुआ है। चॉकलेट हम खा रहे हैं, चॉकलेट का रैपर भी हम वहाँ फेंक रहे हैं। अपने को तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम गए और इंजॉय किए, पानी मिनरल वाटर हम पी लिए और बोतल वहाँ फेंक के चले आए। हमको बहुत अच्छा लगता है खाने का सामान प्लास्टिक के बैग में लेके गए और फेंक के चले आए। अरे फेंक के चले आए, वो तो डंप यार्ड हो गया। वो जमीन जो कभी शुद्ध था, वो जमीन अब हरियाली खो दिया। वहां कोई उम्मीद ही नहीं है कि अब हरियाली रहेगा, वहां पे खाली दिखता है हरियाली प्लास्टिक के गार्बेज का। और आप सोचिए कि वही जमीन आज से 15, 20, 25, 40 साल पहले कितना हरा भरा होता था। आज लोग जो है शहर से दूर गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको हरियाली चाहिए। गांव में जनसंख्या कम है तो वहां हरियाली बहुत अच्छा है, वहां के लोग अभी भी नेचर लवर हो गए। तो आज हम लोग शहर में शहरीकरण करके हम गांव की तरफ भाग रहे हैं, बट हमें ये नहीं करना है। एक समय यही जो शहर आज था, कभी गांव था, आज कंक्रीट जंगल बन गया और फिर ये हो गया शहर और लोग भाग रहे। यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ जमीन साफ नहीं है। तो आज के डेट में जो कल्चर हो गया कि हम कहीं कहीं फार्म हाउस में जाते हैं, कहीं रहते हैं, अरे क्यों नहीं इसी शहर को फार्म हाउस बनाए। तो बच्चों, इस पर भी गौर करना है कि हमें अपनी धरती को बचाना है। हमें किसी भी तरह से आज से, अभी से सोच लेना, प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी हुई किसी भी प्रकार की वस्तु को हमको यूज नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, जहां हम रह रहे हैं वो शुद्ध नहीं है और हम दूसरे जगह की तलाश में जा रहे हैं। अब दूसरे जगह की तलाश में जाइएगा, वहां भी लोग क्राउड बढ़ेगा, वहां भी इसी तरह से प्लास्टिक फेंका रहेगा। तो जरूरत प्लास्टिक फेंकने की नहीं है, जरूरत मानसिकता बदलने की है। अगर मानसिकता हम बदल लेते हैं तो यही धरती आज हम जहां से भी बोल रहे हैं, आपको फील होगा ये धरती बहुत अच्छा है, तो आज से हम लोग को शपथ लेना है कि कुछ भी हो जाए हम किसी भी तरीके से जो भी हो प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, खुद भी यूज नहीं करेंगे और अपने घर के जितने बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनसे भी विनम्र निवेदन करेंगे कि इस धरती को बचाइए, क्योंकि अगर ये धरती ही नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। और सीधा सा उदाहरण आप देखिएगा, आज के डेट में जो भी लोग गाड़ी में चल रहे हैं उनको यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, चश्मा में भी यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, और स्किन जल रहा है तो यूवी क्रीम लगा रहे, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये भी एक पोल्यूशन हुआ है और सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है, आप प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि इस परीक्षा में आप देख भी रहे हैं, इस परीक्षा में यही सब चीज पर ज्यादातर सवाल आपको पूछा जा रहा है, इसलिए कि अब देश को बचाना है, विश्व को बचाना है तो एक कुटुंब की भावना लेनी है, पूरा विश्व एक है क्योंकि पृथ्वी एक है, इस पृथ्वी पर हमको रहना है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो कोई भी देश हो, सब लोग एक है। ऐसा नहीं है कि हम आज यूज करें तो दूसरे को घाटा होगा, नहीं, ये धरती स्वर्ग है और हमको अपने आप को बता देना कि पूरी धरती हमारी है, इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। अब आखिरी जो एक पॉल्यूशन आता है जिसे हम कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन, पढ़े थे हम लोग फिजिक्स में कि इतने डेसिबल से ऊपर का अगर होता है उसको हम नॉइस कहते हैं, यानी नॉइस और म्यूजिकल साउंड ये दो शब्द है जो बड़ा कंपेरेटिव है। म्यूजिक उसको कहते हैं जो सुनने में अच्छा लगे और नॉइज उसको कहते हैं जो सुनने में अच्छा ना लगे। तो आज के डेट में ये भी बहुत बढ़ गया है, बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया, जगह जगह लाउड स्पीकर हो रहा है, लगा जगह हॉर्न, मतलब गाड़ी में भी हॉर्न जो है, पहले तो हल्का हॉर्न भी काम करता था, आजकल तो एक एक गाड़ी में छः छः दस दस हॉर्न लगा रहे हैं। और उसके बाद भी देखिएगा आजकल कुछ कुछ ऐसी गाड़ियां आ गई हैं कि अगर उसमें नॉइज नहीं है तो उसमें एक नॉइज क्रिएटर लगाया जा रहा है। क्यों भाई? हमारे सुनने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि जब हम ऊंचे ऊंचे आवाज में हमेशा रहेंगे तो होगा क्या कि हमारे कान का जो पर्दा जिसको डायफ्राम कहते हैं वो बहुत पतला झिल्ली से मोटा होते चला जाएगा, और जितना वो मोटा होगा उसको उतना ही ताकत चाहिए क्योंकि उसको हिलाने के लिए। तो जब हम हिला ही नहीं पाएंगे तो लोग कहेंगे भाई साहब आप ऊंचा सुनते। तो बच्चों आपको भी इस पर एक कंट्रोल लेना होगा कि घर में किसी भी तरह का वातावरण हो कोई भी ऊंची आवाज में बात ना करे। ऊंची आवाज में बात नहीं करने का एक बहुत सुगम सा रास्ता है कि हम लोग आपस में मिल बैठ के भाईचारा की तरह रहे। इसको हम लोग को एक जिम्मेवारी के तौर पर लेना पड़ेगा, और आज अगर बदल गए तो विश्वास करिए आने वाला समय तो बदल ही जाएगा, हम लोग उस जमाने में आ जाएंगे जहां शांति सुख और संतुष्टि एक साथ हर घर हर परिवार हर राज्य हर देश हर विदेश में होगा। लोग एक दूसरे के बारे में गौर करेंगे, लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, लोग एक दूसरे को मानेंगे, और इसी के लिए भारत हमेशा आगे रहा है आगे रहेगा। इतना ही मुझे आज कहना था, और इसी को हम समझते हैं, इसी का एक मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कुछ ऐसा करें कि आने वाला पीढ़ी आपको और हमको भी याद करे कि हम लोग कुछ ऐसा किए कि देश सच में आज़ाद हो गया। इन सभी बातों के साथ आप सब हमारे साथ हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत वार्ता। वार्ता का विषय था प्रदूषण के प्रकार एवं नियंत्रण। वार्ताकार थे नीरज कुमार सिन्हा, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का था।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण, प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। सबसे पहले हम सुनते हैं फिल्म रंगोली का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरूआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बंगला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्र पाल, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रमाणिक के नाम शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने विसंगतियों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार को शामिल किया गया है। झारखंड की राजनीति में गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान के बीच विधायक सरयू राय के बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि वे कांग्रेस माइनस सरकार बनाने पर विचार करें। उन्होंने तर्क दिया कि इससे सरकार की कार्यप्रणाली और छवि में सुधार हो सकता है।
1: मैंने उनसे जिक्र किया कि सुना है कि आप भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। उन्होंने इनकार किया और कहा कि मीडिया में कई तरह से बातें आ जाती। फिर मैंने कहा कि एक विकल्प उन्होंने भी सुझाया है, विचार करें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो जैसा स्थिति जैसी है वही बढ़िया से चले, हम सभी की कोशिश है।
0: हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य सरकार में किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में गठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: सलाह मानने वाला व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुफ्त की सलाह ठीक नहीं होती, या सलाह कोई दिया है उसको अभी रिजर्व रखते हुए काम करना है। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं और जिस बात को लेकर सरकार बनी है वो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को केंद्रीय बिंदु में रख के सरकार बनी।
0: कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी दल झामुमो ने स्पष्ट किया है कि हेमंत सरकार अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देती है और कानून अपना काम पूरी सख्ती से कर रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान की सक्रियता पर कहा कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
3: झारखंड में जीरो टॉलरेंस की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, ये बहुत दिन तक ऐसे अपराधी बच नहीं पाएंगे और जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। ये अपराधियों को संरक्षण देना तो ये भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में होगा, ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों में होगा। अब इतना दिन नहीं खराब आ गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया गठबंधन का कि अपराधियों को संरक्षण दे।
0: झारखंड कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को शांत करने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व सांसद धीरज साहू और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कल रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पार्टी के कुछ फैसलों से वे आहत जरूर हैं, लेकिन संगठन के हित में 18 मई तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू के समक्ष विस्तार से रखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार

0: कांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिनों तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय शैक्षणिक समागम में देश के लगभग 200 प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और सैन्य क्षेत्र के डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों को गर्मी के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को न केवल दंडित किया जाएगा बल्कि उनका अनुबंध भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बैठक में जल मीनारों की मरम्मत, होल्डिंग टैक्स वसूली और बस स्टैंडों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने शहरों में कचरा उठाव और साफ सफाई की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए सामुदायिक भवनों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। लौह नगरी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की तीन गाड़ियां बरामद की हैं। एएसपी ऋषभ त्रिवेदी ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह गिरोह सुनसान जगहों पर गाड़ियों के पार्ट्स अलग कर उन्हें बेचने का धंधा करता था।
1: तो मुख्य अभियुक्त चार पकड़े गए, हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। चोरी करके ये लोग गाड़ी का पुर्जा तोड़ते थे कि गाड़ी का वो कभी हैंडल निकालेंगे, कभी पहिया निकालेंगे। यही हम लोगों ने जब उनसे कड़ी पूछताछ की तो यह पता चला कि वो गाड़ी के जो पुर्जे निकालते थे उसको कई सारे पुर्जों में बेचा जाता है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,500 रुपए है जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपए प्रति किलो है। कोडरमा के सतगावा में कल देर रात वज्रपात से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। लोहे की खिड़की के जरिए बिजली के कमरे के अंदर गिर जाने से यह हादसा हुआ। इधर मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग और बोकारो समेत 5 जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम अनुरंजनी का। हमारी आज की कलाकार है श्रीमती सिप्रा बोस। आइए उनसे सबसे पहले सुनते हैं दादरा, और ये कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: भाकपा माओवादी के भाइयों और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
0: और श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्रीमती सिप्रा बोस से दादरा।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकारा हैं श्रीमती स्थिप्रा बोस।

श्रीमती सिप्रा बोस के गाए इस दादरे के साथ ही आज का उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अनुरंजनी अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। आइए इनसे सबसे पहले सुनते हैं ये गजल। इसे गाया है मिताली सिंह ने और लिखा है मलिक कुमनाम ने, धुन बनाई है भूपेंद्र सिंह ने।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: se juega. अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए, पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल

0: में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे फौजी भाइयों को समर्पित हमारा कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: जय भारती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं शलामे इश्क फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

इरशाद कामिल की शब्द रचना, अजीत गांगुली का संगीत, पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाजें, फिल्म का नाम आशिकी 2।

अनजाना अनजाने इस फिल्म का गीत हमने लिया है शेखर विजयानी और कैरालिजा मोंटेरो की आवाज़ में। गीत के वो लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य और अनविता दत्त ने, धुन बनाई है शेखर और विशाल ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म फिर मिलेंगे से। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन ने, गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बंगला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कल रांची के रातू में मत्स्य परियोजना का अवलोकन किया। इस दौरान श्रीमती तिर्की ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इसके लिए जरूरी सिस्टम तैयार करने की योजना बना रही है ताकि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ सके। बिजली और पानी के मुद्दे पर भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज संताल परगना के विभिन्न जिलों में जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। कल भी राज्य के कई हिस्सों में पार्टी ने प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज झारखंड समेत देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। रांची सिविल कोर्ट परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विशेष बेंचों का गठन कर कई मामलों का निष्पादन हुआ है। लोक अदालत के दौरान कई लोगों को न्याय मिला है। इस दौरान लाभार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार और चोरी के उपयोग में काम आने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं।
2: इंटरसेप्ट किया गया, इसमें से 4 अपराध कर्मी जो है भागने का प्रयास किए करके, जिसमें से एक को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उसके पास से हथियार मिला है, गाड़ी में जो है गृह वेतन के काफी सामान मिले हैं और उसकी निशानदेही पे कैश करीब 51,000 बरामद हो चुका है जो घटना में ले जाया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो अभियुक्त है उनकी भी सबकी पहचान हो गई है। पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
0: पलामू में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। चैनपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उधर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर लूटे गए सामान और अन्य चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर आज स्कूलों और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर शांति निकेतन के गौर प्रांगण में 42 गीतों का आयोजन किया गया। उनकी जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरुदेव टैगोर ने असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक थे और विचारक एवं कवि थे। जमशेदपुर में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में शहर के शिक्षाविदों एवं इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य, त्याग और राष्ट्र रक्षा के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 2 दिन बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म मल्हार का एक खूबसूरत सा गीत। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर मुकेश ने।

0: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है, और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया, तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं, उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
2: और आइए सुनते हैं फिल्म आरती का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है रोशन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा प्रसारण पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम रांची मेलोडीज का। रांची मेलोडीज कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: संगठना स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये वक्त होता है जब हम कुछ अच्छे मीठे गाने सुनना चाहते हैं, तो चलिए रांची मेलोडीज में आज आपको बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से गीत सुनने को मिलेंगे। पहला गीत हमने लिया है फिल्म दिल तेरा दीवाना से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

जवां मोहब्बत इस फिल्म का गीत अभी आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म राजकुमार से। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीत के बोल लिखे हंसराज जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है फिल्म किस्मत से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं नूर देवासी ने। धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म मेरे सनम से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही रांची मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा। बिजली और पानी के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज संताल परगना के विभिन्न जिलों में जनसरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड उच्च न्यायालय में आज महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति में दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अब नियुक्ति नहीं दिए जाने से संबंधित एक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि यदि नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थी हैं तो उन्हें नियुक्ति के लिए तुरंत अनुशंसित किया जाना चाहिए। पलामू पुलिस ने अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 3 मई को हुई गोलीबारी में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पिपराटांड थाना में हुई हत्या मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया, जबकि लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी मामले में 1 आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पिछले दिनों करीब 15 लाख रुपए मूल्य के पाइप को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने पाइप चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम कल्याणी का। आज इसमें चर्चा होगी पोषण और स्वास्थ्य। साथ ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे साइबर धोखाधड़ी से बचाओ। भेंटवार्ताकार होंगे श्री भास्वत प्रकाश, उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की और प्रस्तुति स्वर है युवराज का।

0: कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे जिंदगी से, हमारे परिवार से और समाज से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातों की जानकारी और चर्चा आपके साथ करते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे पर आपसे चर्चा करते हैं और विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। मित्रों, पोषण बच्चों को स्वस्थ, खुश, उत्पादक किशोरों और वयस्कों को विकसित होने में सक्षम बनाने का एक आधार है। स्वस्थ आहार सिर्फ जीवित रहने और बढ़ने के बीच की खाई को ही नहीं पाटता, बल्कि इसका प्रभाव बच्चे के जीवन में लंबे समय के लिए पड़ता है। तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, पोषण और स्वास्थ्य। दोस्तों, मानव जीवन का आधार स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य एक आधार है सही पोषण। यदि हमारा आहार संतुलित और पौष्टिक हो तो हम न केवल रोगों से दूर रहते हैं बल्कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आज के आधुनिक जीवन में जहां भाग दौड़, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है, वहीं संतुलित पोषण का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं पोषण क्या है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे शरीर भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करता है। इन तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल शामिल हैं। ये सभी तत्व हमारे शरीर के विकास, ऊर्जा प्रदान करने और रोगों से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, संतुलित आहार का महत्व क्या है? संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो। वह शरीर को ऊर्जा देता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मानसिक विकास में सहायता प्रदान करता है। यदि हम संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो हमारे कुपोषण, मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं पोषक तत्वों की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि चावल, रोटी वगैरह वगैरह। प्रोटीन, प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत में सहायक प्रदान करता है। प्रोटीन में आ जाता है जैसे कि दाल, दूध, अंडा। वसा, वसा ऊर्जा का एक स्रोत है और शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। तो वसा का कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि घी, तेल, चीज आदि। विटामिन और खनिज, विटामिन रोगों से बचाव और शरीर को सही कार्य करने के लिए आवश्यक है, जैसे कि फल, सब्जियां, हरी सब्जियां और रसदार फलें। जल, जल शरीर को हाइड्रेट रखने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों, अच्छा पोषण हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। संतुलित आहार लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम अधिक सक्रिय रहते हैं। बच्चों के लिए पोषण विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि वह उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी उचित पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज भी हमारे देश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। कई बच्चों और महिलाएं उचित भोजन नहीं मिलने के कारण कमजोर और बीमार होते हैं। कुपोषण के कारण शरीर का विकास रुक जाता है और रोग का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जंक फूड और अधिक तेल वाले भोजनों से बचना चाहिए। नियमित समय पर वजन करना चाहिए और जितना अधिक हो सके पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जैसे कि दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी आवश्यक हम लोग को पीना चाहिए। रोजाना व्यायाम और योग करना भी एक अनिवार्य है। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। सही पोषण न केवल हमारे शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। इसलिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, साइबर धोखाधड़ी यानी कि इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली एक आपराधिक गतिविधि है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फंसाकर अपनी निजी जानकारी जैसे कि ओटीपी, पासवर्ड, बैंक विवरण चुराना और आर्थिक लाभ जैसे कि पैसा कमाना है। यह फ्रॉड ईमेल, फर्जी वेबसाइटों या फिर सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है। तो मित्रों, आइए हम विस्तार पूर्वक सुनते हैं जो कि अधिवक्ता है और इस खास विषय पर गहरी जानकारी रखते हैं, और इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल के इस डिजिटल दुनिया में बहुत सारी तरक्की हो रही है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ बहुत सारे घटनाएं भी घटित हो जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, साइबर अपराध की घटनाएं आजकल बहुत बढ़ रही है और इससे सभी लोग अछूते नहीं हैं। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी लोक लुभावन ऑफर के कारण आप साइबर अपराध की घटना के चक्कर में आप आ जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं घटित हो जा रही हैं, यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी साइबर अपराध के मकड़जाल में फंस जा रहे हैं। ये साइबर अपराध की घटनाएं इतनी क्यों हो जा रही है, और जो ये साइबर अपराध को घटने को अंजाम देते हैं वो एक बहुत ही शातिर व्यक्ति होता है और तरह तरह के बातें कर आपको उसमें फंसाने की कोशिश करता है और आपके बैंक से पैसे की निकासी हो जाती है, तब आपको एहसास होता है कि हमारे साथ ठगी की गई है। तो ये साइबर अपराध की घटनाएं इतनी क्यों हो जा रही है, किस तरह से साइबर अपराधी ऐसे घटना को अंजाम देते हैं और इससे संबंधित कौन कौन सी विधिक व्यवस्थाएं हैं और अपना बचाव हम कैसे करें, जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका उपाय है। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं भास्वत प्रकाश। आप एडवोकेट हैं। भास्वत जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार सर।
1: भास्वत जी, ये साइबर अपराध की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये आखिर ये घटनाएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है इसका?
2: नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि एक भारत देश में इतने बड़े परिवार को मैं बता सकूं अपने अनुभव से कि कैसे ये एक उभरती हुए जो हमारे समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एवं समकालीन विषय जो है, भारत में उभरते साइबर अपराध तथा उनसे संबंधित विधि व्यवस्था के ऊपर विचार अपना मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो जैसे सर आपने पूछा कि ये क्राइम क्या है, साइबर अपराध क्या चीज़ होते हैं, तो जैसे आज हम ये डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे सूचना एवं टेक्नोलॉजी का युग है, वर्तमान युग में जहाँ डिजिटल तकनीक हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, शासन, व्यापार, शिक्षा एवं व्यक्तिगत संचार का आधार बन चुकी है, वहीं साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय न होकर एक गंभीर विधिक एवं सामाजिक मुद्दा बन गया है। इसको अगर हम संक्षेप में समझना चाहें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल भुगतान प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमारे जीवन को अत्यंत सरल बनाया तो है, लेकिन वहीं पे उसका एक अत्यंतिक विकास के साथ साथ विनाश का भी रूप ले रहा है। प्रारंभ में साइबर अपराध को उस किसी भी अवैध कृत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जाता है। भारत में डिजिटल क्रांति जैसे डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई प्रणाली के प्रसार के साथ साथ साइबर अपराधों में भी तीव्र वृद्धि हुई है। जैसे यहाँ पे बेसिकली बात अगर हम लोग करें तो जैसे कि कोई भी अपराध होता है वहाँ पे अपराधी आपके समक्ष होते हैं, परंतु यहाँ पे ऐसे क्राइम को, ऐसे अपराध को, गतिविधि को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट और डिजिटल उपकरण ही काफ़ी होती है। यहाँ पे अपराधी भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होते बल्कि आभासीय माध्यम से अपराध करते हैं।
1: तो ये साइबर अपराधी किस प्रकार लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और कैसे उनके पैसे को वो निकाल पाते हैं, क्या क्या लोक लुभावने बातें करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं और किस तरह लोग इनके बातों में आ जाते हैं?
2: जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हम लोग को सबसे पहले ये जानने की ज़रूरी है कि जो ये अपराध होते हैं इसमें अपराधी क्या क्या पैतरा, क्या क्या उपदंड अपनाते हैं ऐसे अंजाम को देने में। तो देखिए सर, पूर्व में, और सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो है साइबर अपराध मुक्त, हैकिंग और अनधिकृत प्रवेश पर सीमित थे, परंतु वर्तमान समय में इसका स्वरूप अधिक जटिल और संगठित हो चुका है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग इसे अंजाम देते हैं। सबसे सामान्य और तेजी से बढ़ने वाले अपराध है फिशिंग एवं सोशल इंजीनियरिंग शामिल है, जिसमें अपराधी स्वयं को बैंक एम्प्लॉय सरकारी संस्था या फिर विश्वसनीय संगठन के रूप में प्रस्तुत कर व्यक्ति को गोपनीय जानकारी जैसे कि OTP बैंक डिटेल्स ऐसे चीजें उनसे मांगते हैं। इसी प्रकार अलग अलग तरीके हथकंडे वो लोग अपनाते हैं जिसमें कि रैमसमवेयर हमले गंभीर खतरे के रूप में उभरे हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के डेटा को लॉक कर दिया जाता है और उसे वापस प्राप्त करने के लिए एक मोटी रकम उनसे पैसे मांगे जाते हैं। आजकल आप ये भी समझ रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, लोग सेक्सटॉर्शन हो रहे हैं, ऐसे चीज़ें आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं,
1: ये डिजिटल होते हैं जी। ये डिजिटल अरेस्ट किस प्रकार लोगों को कर देते हैं और इस पर कैसे लोग फंस जाते हैं?
2: जी सर, तो सर जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होगा, डिजिटल अरेस्ट हो गए, डीप फेक हो गए। तो सर डिजिटल अरेस्ट में वो लोग अपने आप को कंज्यूमर कोर्ट के जजेस बताते हैं, हाई कोर्ट के जजेस बताते हैं, पुलिस के वरीय ऑफिसर बताते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कस्टम ऑफिसर के रूप में अपने आप को बताते हैं और वो लोग आपको एक भय में ले आते हैं कि आपका एक पार्सल पकड़ाया है, आपके ऊपर एक केस हुए हैं जो कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार से सत्य नहीं होते हैं। तो और उस विषय पे वो लोग आपको घंटों नहीं महीनों, ऐसे केसेस आ रहे हैं आज के ज़माने में हमारे से, हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग महीनों महीनों उनको अरेस्ट रखे रह रहे, डिजिटली लॉक हो जा रहे, वो कोई काम नहीं कर पा रहे अपने, और उनसे 10 करोड़ 15 करोड़ इस तरीके के एक बहुत लंबे से पैसे का डिमांड किया जाता है
1: जी। इसी तरह से सेक्स एक्सटॉर्शन भी होता है, आपसे वीडियो कॉल किया जाता है और फिर अश्लील सामग्री आप तक भेजी जाती है और उसमें भी आप फंस जाते हैं, उसके चक्कर में आप आ जाते हैं। भाषा तरह की घटनाएं जब घटित हो जाती हैं, आपको लगता है कि हम साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं और हमने अपने को उसमें फंसा लिया, OTP मांग लिया जाता है और पैसे आपके बैंक से निकल जाते हैं, तब आपको एहसास होता है। इस तरह की घटनाएं आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, सेक्सटॉर्शन हो या और भी तरह की बातें, बैंक के अधिकारी बनकर आपसे बात करते हैं, पुलिस के अधिकारी बनकर बात करते हैं, अन्य तरह से चाहते हैं कि आपसे वो बात करें, जबकि इस तरह की कोई भी सरकारी महकमा आपको फ़ोन नहीं करता है। तो इस तरह की घटनाएं जब घटित हो जाती है तो फिर विक्टिम क्या करें?
2: जी सर तो जैसे कि इसमें पहले जाने से पहले मैं आपको बस एक पीछे लेके जाना चाहूँगा। जैसे आपने सेक्सटॉर्शन के बारे जो बात किया, इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे झारखंड में जामताड़ा जिले की। तो जामताड़ा जिले इस चीज़ में बहुत आगे है और इस वजह से उनका जो डेली इनकम है एक लाखों में इनकम होती है और वो लोग के पास इन सभी चीज़ों का फ़ोन नंबर डिटेल सारा चीज़ रहता है और वो लोग आपके ऊपर एक वॉच स्पाई करते हैं। तो इसके ऊपर तो हम थोड़ा सा बस आपको बताना चाहे ताकि लोगों के माध्यम यहाँ से जा सके। फिर जैसे सर अभी आप बताए अपराध हो जा रहे तो अब इससे कैसे लड़ा जाए, एक विक्टिम जो है वो कैसे अपने आप को बचाए? तो सर सबसे पहली बात है कि इसमें सिर्फ पर्सनल अपना व्यक्तिगत लॉस नहीं होता, इसमें आर्थिक नुकसान होते हैं, प्रतिष्ठान क्षति भी होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भी खतरा होता है और सामाजिक अस्थिरता भी फैलती है। परंतु हमें ये जानना चाहिए कि ऐसे चीज़ों को काउंटर करने के लिए और इन चीज़ों से लड़ने के लिए हमारे सरकार समय समय पे अलग अलग कानून लाते रहते हैं।
1: नहीं तो इसमें क्या करें, जो व्यक्ति विक्टिम हो गया, इसका शिकार हो गया, तो वो किस प्रकार अपना बचाव करें और किस प्रकार संबंधित थाने में संपर्क करें? बहुत सारे इसके लिए टोल फ्री नंबर भी होते हैं, तो कहाँ संपर्क करें और अपना बचाव वो कैसे करें?
2: जी, सबसे पहले आप के साथ ऐसी घटना जब होती है आपको कोई अन्य थाना नहीं जाना है, आपको एक साइबर सेल हर जिले में बना होता है, वहाँ पे आपको जाके अपना रजिस्टर करना पड़ता है कंप्लेन। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप घर बैठे 1930 जो कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उसमें भी आप अपने कंप्लेन अपने परेशानी को रजिस्टर करा सकते हैं।

0: इसके साथ ही साथ एक फॉर्मल कंप्लेन आपका रजिस्टर होगा, उसके बाद वो लोग जिस भी सिस्टम या बैंक से आपका क्राइम हुआ है, सिस्टम से क्राइम हुआ है, उसको वो लोग आपको सीज करेंगे और आगे की कार्रवाई वो लोग अपने प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ अलग कानून है, जैसे कि आईटी एक्ट हम लोग जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि 2000 साल में आई थी, BNS भारतीय न्याय संहिता इसे हम कहते हैं, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2023 में आई थी।
1: कानून किस प्रकार बचाव करती है आपका?
0: कानून आपको एक मौका दिया जाता है कि आप बताइए आपके साथ क्या क्राइम हुआ है, उसके बाद उन चीजों को पहचान किया जाता है कि क्या ये डिजिटल है, क्या आपके कोई जानकार इसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनका कोई किसी तरह का इंटरेस्ट था। वो लोग डेटा को संरक्षण करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं, सारे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं जो भी आप बताना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर डेटा उल्लंघन अगर जो हुआ है उसको दंड, अगर आप कोई पैसे अगर लिया गया है, क्योंकि पैसा भी होता है, प्रॉपर्टी भी होता है, बहुत कुछ इसमें होता है। तो जैसे कि अगर आपके पैसे लिया गया है तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है उस अकाउंट को एट द अर्लीस्ट उसको फ्रीज कर दिया जाता है, आपके अकाउंट को भी फ्रीज किया जाता है, उनके अकाउंट को भी। साथ ही साथ अगर कोई वीडियो जैसे आपका बना के अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, अलग सोशल मीडिया में अगर इसे सर्कुलेट किया जा रहा है तो उसके ऊपर सेंसर कर दिया जाता है, उनको जितने भी नेटवर्क चीज़ें हैं उन चीज़ों से उसे आउट कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है,
1: जी
0: क्योंकि सबसे पहले आपकी छवि को बचाया जाता है
1: जी
0: अगर ऐसे चीज़ों में।
1: भाष्व जी, इस तरह की घटना घटित नहीं हो, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि प्रायः देखा जाता है, समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं और भी जानकारियां मिलती है कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की घटना के शिकार हो जाते हैं, तो जागरूक होने की आवश्यकता है, सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कोई फ़ोन करता है आपको, इस तरह की बातें करता है, तो उसके भ्रमजाल में हमें नहीं आना है। तो किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप कि इस तरह की जो फोन्स कॉल आते हैं उससे आप बचाव करें, किस तरह की जानकारियां शेयर करने की बात की जाती है, OTP मांग किया जाता है, तो इस तरह की बात कोई भी बैंक या कोई भी सरकारी कार्यालय से इस तरह के फोन्स नहीं आते हैं, आपको तुरंत सजग हो जाने की आवश्यकता है।
0: जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा चीज़ बताया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं आज के समय पे, जो साइबर सेल्स में CBI के पास जो इस तरीके केसेस आ रहे साइबर क्राइम से रिलेटेड, उसमें यही देखा जाता है कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पदों में जो बैठे हैं, जैसे कि DIG हो गए साहब, हो गए एक अध्यापक, हो गए कहीं इवन बैंक ऑफिस, तो यहाँ पे जैसे कि है कि आपको आइडेंटिफाई करना, आपको कभी भी किसी से भी अपना OTP शेयर नहीं करना है, SMS कोई आया तो वो नहीं शेयर करना है, किसी तरीके का अनजान लिंक में शेयर नहीं आपको कोई अपना नहीं करना, समय समय पे आपको अपना पासवर्ड जो है चेंज करते रहना है, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे आजकल समाधान हो गए हर चीज़ों में, उसका आपको करते रहना है, इवन आपको अगर सिस्टम है, फ़ोन है, कोई भी चीज़ आपके पास उपकरण जो भी है उसको आपको हर समय सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना है। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्या होता है, और आपको हर समय अपने बैंक में जाके अपने डिटेल्स को अपडेट करना पड़ता है, और यह देखना चाहिए कि क्या उसमें किसी ने धोखाधड़ी से अपना नाम उसमें अंतर्गत न कर दिया हो। इन चीजों के माध्यम से आप ये अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है प्राइवेसी, आप जो भी चीज कर रहे हैं अपने बैंक डिटेल से हो गए या अपने निजी जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, इन चीजों को कभी आप पब्लिक करने से बचे, भले आपका प्राइवेसी सबसे पैरामाउंट माना जाता है, सबसे उच्च माना जाता है, इसी को लेके कुछ जजमेंट्स भी है जहाँ पे प्राइवेसी को देख के।
1: मैं यदि आप जागरूक होते हैं और इस तरह के कोई भी फोन कॉल्स आते हैं, OTP मांगा जाता है, बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना कोई चाहता है, या आपको कोई डराता है, धमकाता है फोन के माध्यम से, तो आप इस चक्कर में नहीं आए, इसके बातों में नहीं आए, और इस तरह की जब घटनाएं घटित हो जाती है तो तुरंत आप नजदीकी थाना में आप संपर्क करें, टोल फ्री नंबर है
0: 1930,
1: टोल फ्री नंबर है 1930, वहां आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा और अवांछित कॉल को हमें अटेंड नहीं करना है।
0: और सबसे बड़ी बात है इसमें एजेंसियों से ज़्यादा आपको अपने आप को खुद बचाना है, क्योंकि एजेंसियों के पास भी कुछ ज्यूरिडिक्शंस होते हैं कि वो लोग हर चीज़ में आपकी सहायता नहीं कर सकते।
1: बड़ी अच्छी आज बातचीत हुई साइबर अपराध पर और उससे कौन कौन सी संबंधित विधिक व्यवस्थाएँ हैं। श्री भास्वत प्रकाश जी आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से।
2: दोस्तों, सही जानकारी और सतर्कता से ही और अपनी सूझबूझ से ही हम साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो इसी विषय पर हम सुन रहे थे श्री प्रकाश जी को और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। दोस्तों, अब समय हो चला है एक प्यारा सा गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी हमने सुना एक प्यारा सा गीत, फिल्म था हम किसी से कम नहीं, और इस गीत को गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार जी ने। तो दोस्तों आइए एक और खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं, विषय है बेटी से बढ़ता घर का मान। दोस्तों पुराने समय में समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा का परिचय दे रही हैं, शिक्षा, खेल, विज्ञान, राजनीति, सेना, चिकित्सा और प्रशासन जैसे।

माता पिता की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है, वृद्धावस्था में भी माता पिता की सेवा और देखभाल में भी पीछे नहीं रहती। समाज के विकास में बेटियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित बेटी दो परिवारों को शिक्षित और संस्कारिक बनाती है। यदि बेटियों को समान अवसर दिया जाए तो वो समाज और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है। आज सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच एक बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, समाज में अभी भी कई स्थानों पर बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह सोच बदलनी चाहिए। बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं है। उन्हें भी शिक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। जब परिवार और समाज बेटियों को सम्मान देंगे तभी देश वास्तविक रूप से प्रगति कर सकेगा। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि बेटी परिवार की सबसे सुंदर धरोहर होती है। बेटी से घर में प्रेम, शांति और खुशियों का वातावरण बना रहता है। वह परिवार को एकजुट रखने वाली शक्ति होती है। इसलिए हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए और उनके सपनों को उड़ान देने में सहयोग करना चाहिए। सचमुच बेटी से ही घर का मन बढ़ता है और जीवन में खुशियों का उजाला फैलता है। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह फिर से इसी समय इसी कार्यक्रम और इसी दिन मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त युवराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे आज के संध्याकालीन प्रसारण की। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5:00 और 5:02 से होगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी प्रस्तुत करेंगे रिया और वैभवी, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर होगा हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी मीनाक्षी शर्मा और पूजा बोस, प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। छह बजकर 2 मिनट से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण। पहले आप सुनेंगे किसान वाणी और 6:32 से हमारी दुनिया, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:11 पर जिले में आज कल। 7:15 पर लोकगीत में आप सुनेंगे हो लोकगीत बुधन सिंह कुंकुल और साथियों से। 7:20 से आरंभ होगा क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारों का प्रसारण। आप क्रमशः नागपुरी, उरांव, मुंडारी, हो और संताली भाषा में समाचार सुनेंगे। सात बजकर 7:45 पर आप सुनेंगे समाचार ध्वनि चित्र और 8:00 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए। 8:30 पर सुनेंगे सुर्खियों में और समाचार संध्या का आज का अंक हम लेकर आएंगे 8:45 पर। रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार, इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। हमारे दिल्ली केंद्र की ही प्रस्तुति होगी 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती।

10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से ही। 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर होंगे समाचार अंग्रेजी में। 11:10 पर मीडियम वेव पर हमारी सभा समाप्त होगी, लेकिन FM पर हमारे प्रसारण को आप कल सुबह 6 बजे तक सुन सकते हैं। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे आज के सांध्यकालीन प्रसारण का।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है। ये खुशनुमा शाम और कुछ प्यारे से गीत दोनों ही मिलकर के आपका आज का दिन बनाने वाले हैं। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम आपको ढेर सारी खुशियां दें, अपने कार्यक्रम के माध्यम से जानकारियां दें। इस वक्त समय है मनोरंजन का, तो करते हैं कुछ मनोरंजन कुछ खूबसूरत फिल्मी गीतों से। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का ये गीत। आर डी बर्मन का है संगीत।

ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। सचमुच आज की शाम काफ़ी खूबसूरत है और ऐसे ही प्यारे गीतों को सुनने के लायक भी है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ का ये गीत कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोलों को सुरों में ढाला है संजीव दर्शन ने।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दोस्तों, इस खूबसूरत फार्म में यदि आपके साथ कोई साथी हो मन पसंद, तो क्या ही कहने, ये सफर जो जिंदगी का है वो और भी खूबसूरत हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ कोई प्यारा साथी हो ही, तो ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में किसी साथी की तलाश में आदमी निकल जाता है एक सुनहरे सफर पर। सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत RD बर्मन का।

0: सीता और गीता के लिए किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम यहीं समाप्त हुआ। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन में आज वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय के समक्ष कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसे अदालत ने लेने से इनकार कर दिया। कमेटी ने सरकार और जेएसएससी को अंतिम मौका देते हुए आगामी 16 मई से पहले मांगे गए दस्तावेज शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया। उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दिलीप कुमार साहू ने बताया कि छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक 4-पहिया वाहन और एक मालवाहक वाहन समेत 3 वाहन जब्त किए गए हैं। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र में आज एक वाहन के पलटने से उस पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों घायलों को भवनाथपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:02 हो चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रही हैं तरनजीत कौर और वैभवी। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम युववाणी में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस प्यारे से मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे और हमारे कार्यक्रम युववाणी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और मैं हूँ आपकी दोस्त रंजीत।
1: और मैं वैभवी।
0: और हम दोनों की ओर से आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, आज हम आपसे साझा करेंगे ढेर सारी जानकारियां और बहुत सारी बातें करेंगे और साथ ही कुछ प्यारे प्यारे गाने भी सुनेंगे, तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा।
1: दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के बारे में, जिसका उद्देश्य है लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
0: बिल्कुल, सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसों का कारण बन सकती है, इसलिए ये सप्ताह हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने की सीख देता है।
1: श्रोताओं, सड़क दुर्घटनाएं आज पूरी दुनिया में एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। हर साल लाखों लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं और करोड़ों लोग घायल होते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह विशेष सप्ताह मनाया जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और इसमें दुनिया भर के देश भाग लेते हैं और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित भी करते हैं।
1: इस सप्ताह का मुख्य संदेश यही होता है कि सड़क पर सुरक्षा केवल वाहन चालक ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, चाहे वह पैदल चलने वाला हो, साइकिल चलाने वाला हो या कोई यात्री हो।
0: बिल्कुल दोस्तों, और अगर हम सड़क दुर्घटना की बात करें तो सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। क्यों वैभवी?
1: बिल्कुल, तेज रफ्तार, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना या फिर नशे की हालत में ड्राइविंग करना, ये सभी हादसों के मुख्य वजह बनते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, और आजकल कई युवा बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते। उन्हें लगता है कि थोड़ी दूर ही तो जाना है, हेलमेट की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, दुर्घटना कभी बताकर नहीं आती है।
1: सही कहा आपने तरनजीत, युवाओं की भूमिका सड़क सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी युवा वर्ग की है और सबसे ज्यादा वाहन भी युवा ही चलाते हैं।
0: बिल्कुल, सड़क सुरक्षा सिर्फ वाहन चालकों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए और सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए।
1: सरकार भी सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, जगह जगह पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, जैसे सड़क संकेतक, स्पीड लिमिट, ट्रैफिक कैमरे और सख्त नियम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन सिर्फ कानून बना देने से तो काम नहीं चलेगा। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, हम खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक सड़क दुर्घटना को पूरी तरह कम किया जा ही नहीं सकता है।
1: श्रोताओं, सड़क पर सावधानी ही सुरक्षा है। कुछ मिनट जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी कभी कभी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए सुरक्षित चलिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित कीजिए।
1: दोस्तों, हम इस विषय पे और भी बातें करेंगे, लेकिन एक खूबसूरत से गीत के बाद।

0: श्रोताओं, सड़क सुरक्षा सिर्फ शहर की सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि हाईवे पर भी उतनी ही जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि हाईवे खाली होता है, इसलिए तेज रफ्तार में वाहन चलाना सुरक्षित है, लेकिन यही सोच कई बड़े हादसों का कारण बनती है।
1: बिल्कुल, हाईवे पर वाहनों की गति अधिक होती है, इसलिए छोटी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना में बदल सकती है। ओवर स्पीडिंग, गलत तरीके से ओवरटेक करना और थकान में ड्राइविंग करना हादसों की बड़ी वजह है।
0: हाईवे पर वाहन चलाते समय हमेशा निर्धारित गति सीमा का पालन करना चाहिए, साथ ही हमेशा सीट बेल्ट लगा कर रखें। दो पहिए वाहन चालक हेलमेट जरूर पहने, ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के सबसे जरूरी साधनों में एक है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हाईवे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में यही दूरी दुर्घटना को टाल सकती है।
0: और एक महत्वपूर्ण बात, लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बीच बीच में आराम जरूर करें। थकान और नींद की वजह से ड्राइविंग करना बेहद खतरनाक हो सकता है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, मोबाइल फोन का भी उपयोग बिल्कुल ना करें। एक पल का ध्यान भटकना भी बड़े हादसों का कारण बन सकता है।
0: साथ ही नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनन अपराध है और इससे जान का भी खतरा बना रहता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इससे दूसरों के जान खतरे में भी आ जाते हैं कई बार तो। और दोस्तों, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन सुरक्षित पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सड़क हो या हाईवे, नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी भी है और समझदारी भी।
0: और याद रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, उनका सम्मान करना सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और अब आगे बढ़ते हुए, हर दिन अपने आप में बेहद खास होता है। अपने साथ कई यादें, कई किस्से, कहानियां समेटे हुए आता है। तो चलिए याद करते हैं कि देश दुनिया में घटी 9 मई की विशेष घटनाओं को।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज का दिन बेहद खास रहा है मुगल साम्राज्य के इतिहास में। आज के ही दिन मुगल बादशाह द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाई गई ताजमहल बनकर तैयार हुआ था।
1: और आज ही के दिन 1502 में दुनिया के खोजकर्ता कहे जाने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया का रास्ता तलाश करने के लिए स्पेन के कादित से अपनी चौथी यात्रा शुरू की थी।
0: 1689 में आज के ही दिन अंग्रेज शासक विलियम तृतीय ने फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा की थी।
1: और दोस्तों, 1874 में आज ही के दिन बंबई यानी अभी की मुंबई में पहली घोड़े से खींचे जाने वाली ट्राम कार की शुरुआत हुई थी।
0: 9 मई 1912 के दिन अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह को वहां समर्थन दिया था।
1: और दोस्तों, आज के दिन 1866 में महान नेता, समाज सुधारक एवं विधायक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। और दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करेंगे, फिलहाल आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। यह दिवस प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है।
1: जी हाँ, हर साल हजारों पक्षी मौसम और भोजन की तलाश में एक देश से दूसरे देश तक लंबी यात्रा करते हैं। वे पक्षी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, लेकिन प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई के कारण इन पक्षियों के जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है।
1: इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और पक्षियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए,
0: क्योंकि उड़ते पंख हमें सिखाते हैं कि प्रकृति से प्रेम करें और उसे सुरक्षित बनाए रखें। और दोस्तों, अब आपकी और हमारी दोनों की जानकारी को बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। पुलित्जर प्राइज 2026 में भारत के पत्रकार आनंद आरके और सुपना शर्मा को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए पुरस्कृत किया गया है।
1: सिनबैक्स 2026 सैन्य अभ्यास इस वर्ष भारत कोलंबिया के बीच आयोजित किया जा रहा है, जो कि 4 मई से 17 मई 2026 तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत आतंकवाद रोधी और जंगल परिवेश में अभ्यास करना है।
0: दोस्तों, भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल वेबसाइट एमआरआई सिस्टम एम्स दिल्ली में लगाया गया है।
1: सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2026-27 से साल 2030-31 तक के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5,659.22 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना और क्वालिटी बेहतर करना, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना है।
0: और दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कड़ापा रसायल सीमा रीजन में स्टार्टअप कड़ापा की शुरुआत की गई है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्टअप इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम डेवलप करना है।
1: दोस्तों, अभी हम और भी बातें करेंगे, लेकिन एक गाने के बाद।
2: ओके, ड्राइवर गाड़ी निकालो।
3: यस मैम।

0: दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर फिलहाल हमारा समय हो चला है समाप्त। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त अरंजीत
1: और वैभवी को इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक।

0: स्वरों की उस अद्भुत दुनिया में हर शाम की तरह हम आज की शाम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये वो माध्यम है जिसने 9 दशकों तक देश की धड़कनों को आवाज दी, आपसे हमारे रिश्ते को गहराया।
0: जी हाँ, ये वो निराला संसार है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य वाक्य के साथ अपनी अलग अलग सभाओं में अलग अलग तरीके से आपसे जुड़ता गया और 90 वर्षों के सफर के हर पड़ाव पर करोड़ों श्रोताओं के स्नेह से सराबोर रहा।
1: जी हाँ श्रमिक साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारे भारतीय प्रसारण सेवा की एक जानदार कड़ी आकाशवाणी की, जो कह सकते हैं आने वाले 8 जून को अपने पूरे यानी 90 ईयर्स पूरे करने जा रहा है, शानदार सफर को पूरा करने जा रहा है, चमकता पड़ाव कह सकते हैं हम इसे। इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी और अब 2026 आ चुका है, तो समझ लीजिए ये अद्भुत सफर कैसा रहा होगा।
0: बिल्कुल, अरे पूजा, आकाशवाणी की बातों में हम इतने भावुक और भाव में बहने लगे कि हम अपने श्रोताओं से नमस्कार भी नहीं किया हमने तो
1: अभी कर देते हैं। नमस्कार श्रमिक साथियों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त पूजा और मेरे साथ है मेरी और आप सबकी दोस्त मीनाक्षी।
0: तो श्रमिक साथियों, हम दोनों ही कहते हैं आपको नमस्कार। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 1936 दिल्ली स्टेशन से प्रारंभ हुआ रेडियो चैनल, जिसे 1956 में आकाशवाणी का नाम मिला, ये है भारत का राष्ट्रीय प्रसारक जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के डिजिटल युग तक देश का सबसे विश्वसनीय प्रसारक चैनल रहा है।
1: बिल्कुल, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो संभावनाएं हमारे आकाशवाणी ने सभी के लिए खोली, यानी 500 से ज्यादा स्टेशन्स बनाए, समाचार, संस्कृति, शिक्षा और संगीत को देश के हर कोने तक पहुंचाया और 90% कह सकते हैं जो क्षेत्र है उसको कवर किया।
0: बिल्कुल, 23 भाषाओं और 146 बोलियों में आकाशवाणी समाचार, जानकारी और संस्कृति को जन जन पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। साथियों, भक्ति रचना से लेकर ज्ञान और विज्ञान तक, देश के हर घटना से लेकर राष्ट्रीय जगत की हर एक बात आप तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, और पता है आप सभी को श्रमिक साथियों, जो हमारा डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं, तो डिजिटल इंडिया में आकाशवाणी भी न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आ चुका है।
0: बिल्कुल, कितनी खुशी की बात है ना जब हम आकाशवाणी की शानदार यात्रा पर बात करते हैं। पूजा, कितना मजा आता है ना
1: किसी भी

0: एंगल से पीछे नहीं,
1: नहीं है, बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल और आगे
1: आगे जा रहे हैं, बिल्कुल समय से, समय के साथ साथ हम आकाशवाणी में बदलाव हुए हैं। श्रमिक साथियों, बातों ही बातों में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अपने 90 वर्षों की यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी @90 भारत की एक नई ट्यून प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। स्वरों का यह कारवां यूं ही चलता रहे, भारत की आत्मा यूं ही गूंजती रहे, तो बने रहिए हमेशा हमारे साथ। और इस समय आइए मिलकर आनंद लेते हैं प्यारे से गीत का।

0: एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में आपको जोड़ते हुए हम नमन कर रहे हैं वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक महाराणा प्रताप को, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और हल्दी घाटी के युद्ध में परम साहस का परिचय दिया।
1: हम नमन कर रहे हैं मातृभूमि के उस वीर की जो गंभीर, कह सकते हैं गंभीर सिचुएशन में भी खुद को ढालना जानते थे,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और वो धरती पुत्र है जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और

0: साहस कभी नहीं खोया।
1: बिल्कुल, पूछो महाराणा प्रताप वो वीर थे, वीर तो थे ही, लेकिन जब जब हम उन्हें याद करते हैं ना, तब तब उनके प्रिय घोड़े चेतक की स्वामी भक्ति भी हमें याद आ जाती है।
0: बिल्कुल, और कहा भी जाता है श्रमिक साथियों कि ये जो वो युद्ध में होते थे तो युद्ध के दौरान बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल जख्मी होने के बावजूद भी वो अपने चेतक में बैठे रहते थे और युद्ध करते रहते थे।
1: बिल्कुल, और चेतक ऐसा वफादार घोड़ा था कि जब वो खुद जख्मी हो गया था पूजा एक बार, हाँ, और उसने सुरक्षित पहले महाराणा प्रताप को पहुंचाया जगह पे और उसके बाद वो गिर गया था।
0: तो ये एक बहुत अच्छा संकेत भी है कि हम जिस तरह से कहते हैं पशुओं को ज्ञान नहीं होता, अगर आप उसे जिस तरह से हम अपने बच्चे को परवरिश देते हैं उस तरह से अगर हम किसी भी पशु को पाल रहे होते हो, समझा रहते हो, तो उसका सबसे
1: उनको वो स्नेह भी चाहिए पशुओं को भी ना। तो महाराणा प्रताप के चेतक को याद करते करते हम एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि आप पशु पक्षियों से भी प्यार कीजिए। तो चलो पूजा, इस पर पशु पक्षियों से प्यार की बात हम और करेंगे आगे, लेकिन इस समय हमारे बीच हमारी एक साथी बैठी हुई हैं अंशु अग्रवाल, जो बता रही हैं कि जितना प्रेम हमें पशुओं से करना चाहिए, जितना प्रेम प्रकृति से करना चाहिए, उतना प्रेम हमें अपनी कला और संस्कृति से।
0: बिल्कुल, और आज हम बहुत सारी चीजें क्यों देख पाते हैं आपने सोचा है, क्योंकि क्योंकि वो कलाकृति में हमें दिखते हैं, मिलते हैं, इसलिए हम समझ सकते कि हमारे जो पूर्वज होंगे वो किस तरह से अपने जीवन जीते थे और किस तरह से वो लोगों से करें। बहुत सारी चीजें हैं पेंटिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से, हर एक चीज में आप
1: आपका जीवन है, देख सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं, जीवन दर्शन देख सकते हैं, आपकी सोच दिखती है।
0: बिन कहे जो सब कह दे उसे कला कहते हैं।
1: तो आइए इसी कला से थोड़ा रूबरू हो लेते हैं अंशु अग्रवाल के साथ।
2: हर वर्ष 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ये दिन कला की सार्वभौमिक शक्ति, सांस्कृतिक विविधता में उसकी भूमिका और कलाकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। ये तारीख विशेष रूप से महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती पर चुनी गई है, जो रचनात्मकता, स्वतंत्रता और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। विश्व कला दिवस की शुरुआत 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट IAA द्वारा मैक्सिको के ग्वादालाहारा में हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कला और कलाकारों के महत्व को रेखांकित करना था। इस दिन को लियोनार्डो दा विंची की जयंती से जोड़ना ये दर्शाता है कि कला किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती, ये सार्वभौमिक है। विश्व कला दिवस 2026 का थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टीवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। इसका अर्थ है कि कला एक बगीचे की तरह है जहां हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकता है। जैसे बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग लोग और उनकी अलग अलग धारणाएं होती हैं। कला इन सभी को जोड़ने का काम करती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन, समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है, कला से विकसित होता सामाजिक बंधन। कला, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में रंग, संगीत, नृत्य, चित्र और भावनाओं की एक दुनिया जीवंत हो उठती है। कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि ये दिलों को जोड़ने वाली एक अदृश्य डोर है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब कला बोलती है, जब भावनाएं बयां नहीं हो पाती तब रंग और सुर उन्हें व्यक्त करते हैं। श्रोताओं, कला का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र की सीमाओं को भी पार कर जाती है। एक मधुर संगीत, एक सुंदर नृत्य या एक प्रभावशाली चित्र, ये सब बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। यही कारण है कि कला समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाती है। प्रिय श्रोताओं, जब हम भारत जैसे विविधता भरे देश की बात करते हैं तो यहाँ की कला और संस्कृति की समृद्धता अपने आप में अद्भुत है। अलग अलग राज्यों के लोकगीत, लोक नृत्य और परंपराएं, ये सभी हमारी पहचान का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की कला को समझता और सराहता है तो उसके मन में उस संस्कृति के प्रति सम्मान और अपनापन विकसित होता है। यही अपनापन सामाजिक बंधन को मजबूत बनाता है।

0: कला न केवल जोड़ती है बल्कि समाज को जागरूक भी बनाती है। इतिहास गवाह है कि कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर किया है, चाहे वो नाटक हो, कविता हो या चित्रकला। इन सभी माध्यमों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कला हमें केवल मनोरंजन ही नहीं देती बल्कि हमें संवेदनशील और जागरूक नागरिक भी बनाती है। आज के समय में जब जीवन की भाग दौड़ और तकनीक ने हमें थोड़ा अकेला बना दिया है, कला एक ऐसा माध्यम बनकर उभरती है जो हमें फिर से जोड़ती है। जब हम किसी गीत को साथ गाते हैं, किसी नृत्य में साथ झूमते हैं या किसी चित्रकला को मिलकर निहारते हैं, तो हमारे बीच की दूरियां अपने आप कम हो जाती है। ये न केवल व्यक्तियों को जोड़ती है बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाती है, सामाजिक मुद्दों को उजागर करती हैं। कई बार एक छोटी सी पेंटिंग, एक गीत या एक नाटक लोगों के दिलों को इस तरह छू जाते हैं कि वो समाज में नई सोच और नई दिशा का कारण बन जाते हैं। यही कला की असली शक्ति है, जोड़ने की, प्रेरित करने की और बदलाव लाने की। प्रिय श्रोताओं, कला हमें सहानुभूति सिखाती है। ऑनलाइन मंचों के माध्यम से भी लोग अपनी कला साझा कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से कुछ अभिव्यक्त करता है और हम उसकी रचना को समझते हैं, तो हम उनके भावों को भी महसूस कर पाते हैं। यही भावना हमें दूसरों के सुख दुख की समझने में मदद करती है, और जब समाज में सहानुभूति बढ़ती है तो वहाँ आपसी संबंध भी सुदृढ़ होते हैं। विश्व कला दिवस का उद्देश्य यही है कि हम कला के महत्व को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और समाज में एकता व भाईचारे को बढ़ावा दें। आज हमें यही संकल्प लेना है कि हम कला का सम्मान करेंगे, कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कला केवल एक शौक या पेशा नहीं बल्कि ये समाज को जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी है। ये हमें एक दूसरे के करीब लाती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। तो आइए हम सभी कला को अपने जीवन में स्थान दें, इसके माध्यम से समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कला केवल एक शौक या पेशा नहीं, ये समाज को जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी है। ये हमें एक दूसरे के करीब लाती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है, क्योंकि कला ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने और दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और लोगों को नई राह की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब एक नाटककार किसी उद्देश्य को लेकर उस विषय पर नाटक को जीवंत कर देता है, तो लोग उसके द्वारा खुद से ही जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और इस तरह समाज में बदलाव आते हैं और समाज एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करता है। तो आइए हम सभी कला को अपने जीवन में स्थान दें और इसके माध्यम से समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाएं। धन्यवाद। जोहार।
1: पूजा अंशु अग्रवाल ने अच्छी जानकारी दी और श्रमिक साथियों, हमें भी अपनी संस्कृति से, जो भी हमारे गीत हैं, नाटक हैं, जो भी कुछ है हमारे पास में, उस कला से जुड़े रहना चाहिए। और सबके अंदर हुनर होता है ना पूजा, और उस हुनर को बचा के रखना चाहिए, उस हुनर को तराशना चाहिए ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे सके। और जब भी देखो पूजा, हम किसी भी कला से जुड़ते हैं, चाहे जैसे तुमने कहा कि पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, गाना हो, बजाना हो, परंपराएं हो, हमारे अंदर एक खुशी आती है ना,
2: एक एनर्जी आती है।
1: तो इसलिए सिर्फ कला दिवस जो हम 15 अप्रैल को मनाते हैं उस दिन ही नहीं, बल्कि ये बातचीत हमने इसलिए सुनाई कि हमेशा हम कला को जिंदा रखें और कला के साथ खुद को जिंदा रखने के, जिंदा दिल के साथ।
2: और गायन भी एक कला है,
1: बिल्कुल,
2: जो हम जब भी बोर होते हैं हर दिन गाना सुनते हैं, है ना, तो ये भी एक कला है।
1: तो बिल्कुल मैं समझ गई तुम्हारा इशारा कि इस कला में हम डूबते हैं। चलो

0: चलो पूजा बहुत ही प्यारा गीत तुमने सुनाया तो थैंक यू। लेकिन ये पूजा एक बात बताओ कि क्या इन दिनों तुम गौरैया देख पाती हो? पक्षियों की चहचहाट तुम्हारे घर आंगन में तुम्हें सुनाई देती है? तोता मैना रंग बिरंगी चिड़िया इनके इंद्रधनुषी संसार का आनंद ये बताओ याद करो तुमने कब लिया होगा?
1: बिल्कुल मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। मेरे जब मैं हमारा वहाँ घर बना तो वहाँ पे क्या था ना पहले बहुत अच्छी इतनी अच्छी सुबह यानी हम सुरों की आवाज से उठते थे चहचहाट सुनते थे। कुछ टाइम बाद जैसे एक डेढ़ साल हुआ हमारा अचानक से कोई भी पक्षी ही दिखते ही नहीं थे। कभी कोई दिख गया तो कबूतर एक दो दिख गया अदरवाइज तो गौरैया तो मुझे दिखते ही नहीं थी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं मुझे खुशी हो रही है बताते हुए भी हमने अपने छत में थोड़े से प्लांट लगाए हैं और हमने छोटे छोटे जगह पे पानी दाना और छोटे छोटे केजेस जैसे चिड़िया के जैसे अंडे देने अभी तक तो एक पक्षी ने दिया है ये बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या हो रहा है मैं देख पा रही हूँ कि गौरैया आ रही है कम है दो चार आ रही है लेकिन बहुत कम है।
0: लेकिन पूजा ये तुम्हारी पहल बहुत अच्छी है और सिर्फ हमारी और तुम्हारी पहल नहीं होनी चाहिए हर किसी की पहल होनी चाहिए कि पक्षियों को बचा कर रखें और इसके लिए जरूरी है पूजा मुझे लगता है कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे बचा कर रखना है पेड़ पौधों को थोड़ा सा बचा कर रखना है पर्यावरण को थोड़ा बचा कर रखना है। और जैसा पूजा ने कहा श्रमिक साथियों कि आप छत पे जब गर्मी आ गई है तो ज़रूर आप पक्षियों के लिए पानी रखिए कुछ दाना आप डाल दीजिए जब आपको सुबह फुर्सत मिले शाम को फुर्सत मिले कभी भी तो इससे क्या होगा कि एक जो स्नेह है आपस का जो प्यार है वो बना रहेगा।
1: हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं जब हमारे घर बिल्कुल छत वाले नहीं होते थे जिसमें शीट लगा होता था कपड़े के जो घर होते रहते थे हमारे घर के अंदर ही गौरैया रहती थी
0: कितना मजा आता
1: था जो जालियां बनी रहती थी हम बच्चों को देख पाते थे उनकी चहचहाट
0: और हम देखते थे हमारे घर अंडा दे रही
1: है मतलब हमने वो सब खो दिया। और आपको एक और मैं बात बताना चाहिए जब हमने अपना घर बनाया तो पहले के टाइम में जो थोड़ा छोटा छोटा सा जो छेद वाला
0: झरोखा जैसा
1: बिल्कुल हमने अपने घर में भी लगाया।
0: अरे वाह क्या बात है। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें हैं ना श्रमिक साथियों वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती थी
1: एक तो वेंटिलेशन का भी काम करता है छोटे छोटे जो पक्षी हैं
0: उनको भी जगह
1: वो वहाँ रह
0: पाते हैं। तो श्रमिक साथियों पक्षी भी हमारे इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: और इसलिए भी घटते जा रहे हैं जिस तरह से हम सभी के हाथ में सेलफोन आ गए हैं तो जगह जगह पे टावर्स आ गए
0: बिल्कुल
1: जो उसके लिए सबसे ज्यादा खतरा है
0: बिल्कुल जो विकिरण होता है
1: उससे वो अपनी दिशा भूल जाती है वो घर नहीं जा पाती बहुत सारे ऐसे जो
0: बिल्कुल
1: मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं जिस चलते आज गौरैयों की संख्या बहुत
0: कम हो गई है। और हम पूजा ये भी अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी तो मुझे दिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है AUCN और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो बताती है कि हजारों पक्षियों की संख्या हर साल घट रही है पृथ्वी से और भारत में कुछ पिछले तकरीबन 30-40 वर्षों में गिद्धों की संख्या लगभग 95% तक घट गई है। तो ये बहुत चिंता की बात है इसलिए श्रमिक
1: 95% मतलब घट जाना
0: अब सिर्फ 5% 100 में 5 पक्षी बचे
1: ही नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी अगर पहले कहते थे कि गिद्ध दिखना यानी वहाँ पे किसी जानवर की लाश होगी
0: उसको डिकम्पोज
1: कर डिकम्पोज अब आप दिखेंगे ही नहीं
0: तो वो सड़ी हुई लाश पूरे वातावरण को प्रदूषित करती रहेगी। इसलिए श्रमिक साथियों थोड़ा संवेदनशील हो जाइए थोड़ा प्यार प्रकृति के प्रति थोड़ा प्यार अपने पशु पक्षियों के प्रति दिखाइए जितना प्यार हम अपने प्रति दिखाते हैं ना
1: क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमसे ही कनेक्टेड और हम उनसे कनेक्टेड है वो खत्म होंगे तो हमारा भी बहुत अस्तित्व खत्म होने के कगार पे आ जाएगा।
0: बिल्कुल पूजा तो देखो जितना जब हम अपने पक्षियों से प्यार की बात करें तो हमें अपने आप से भी तो प्यार होता है ना और इसके लिए जरूरी होता है सड़क पर जब भी हम चले तो सावधानी बरतें
1: यानी जब घर से निकले तो बिल्कुल ये सोच कर निकले कि आप जो यात्रा करेंगे उसमें आप अपना ख्याल रखेंगे
0: बिल्कुल और जिस सुखद यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं उसी खुशी के साथ आप वापस अपने घर भी आएंगे क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।
1: इस पल सी बात हेलमेट लेकर चलना है अगर आप टू व्हीलर पे चलते हैं फोर व्हीलर पे चलते हैं तो आपको अपना सीट बेल्ट लगाना है और अगर आप साइकिल पे भी चलते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल कर ही सकते हैं
0: और बिल्कुल संभल के चलना है
1: और मान लीजिए आप ना ही गाड़ी

0: नई साइकिल नहीं, किसी चीज
1: पैदल चल रहे हैं
0: तब भी आपको दाएं बाएं जरूर देख कर
1: बिल्कुल
0: चलना है।
1: किसी चीज की हड़बड़ी नहीं। हो सकता है हम 5 मिनट देर से पहुंचे,
0: हाँ।
1: है ना, लेकिन देर से देर हो जाए वो ठीक है, लेकिन जिंदगी बच जाए।
0: और जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रहा है, जैसे हमारे यहाँ रेड लाइट येलो लाइट है, उसकी भी थोड़ी समझ रखनी चाहिए,
1: बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। और रफ्तार ऐसा ना हो कि आप हमारी जिंदगी या किसी हमारी वजह से किसी और की जिंदगी ले ले, इसलिए सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कहते हैं, इसलिए जीवन रक्षा का जरूर ध्यान रखें। श्रमिक साथियों, सड़कों पर कोई असावधानी ना बरतें, मौज मस्ती नशा करके गाड़ी चलाना, स्टंट करना, ये भी आजकल देखा जाता है ना।
0: अगर आपके साथ कोई दुर्घटनाग्रस्त दिखता है तो उसकी मदद जरूर करें,
1: जरूर करें, और इसमें सरकार आपके साथ रहेगी। तो श्रमिक साथियों, खुशहाल रहिए, संवेदनशील रहिए, प्यार और स्नेह के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए और हमसे मिलते रहिए।
0: बिल्कुल, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी पूजा और
1: मीनाक्षी को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आप सुन रहे थे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। इस मौके पर कई लोगों को लंबे समय बाद न्याय मिला। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेजों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार से सभी फार्मेसी कॉलेज की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संगठित अपराध पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि आमतौर पर पुलिस अपराधियों का पर्दाफाश करती है, लेकिन राज्य में गैंगस्टर ही पुलिस के कथित काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का मीडिया में वायरल हो रहा एक ताजा वीडियो न केवल पुलिस को चुनौती दे रहा है बल्कि वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल का मूल्यांकन भी कर रहा है। लोहरदगा एसपी कोठी के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। दुर्घटना के कारण कुछ देर तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। बाद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया गया और आवागमन शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आरंभ होता है हमारा ग्रामीण प्रसारण। पहले सुनिए किसान वाणी। आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मनोज कुमार और जुगनी खलखो। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

0: फसल चक्र के अपनाओ और माटी की उर्वरा शक्ति के बनाए रखो।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाइया सो भाई बहन मन के जुगनी बहन का जोहार और मनोज भाई रौर के भी हमर दन से जोहार।
0: रौर मन कर संगे मनोज के जोहार और जुगनी बहन रौर के ढेर बगरा जोहार। का हाल चाल मन है?
1: एकदम नगदे नगद है रौर बट दे किसान हाल समाचार है।
0: मौसम एकदम बढ़िया है, खेत बाड़ी में तो जितना पानी की जरूरत उतना तो भरपूर मिल जाते, तो हरियर मन भी हो जाए है कि नहीं?
1: एकदम देखो कितना सुहाना मौसम भी हो जाए है। गर्मी का दिन है के पहल बेरा में धूप लगेला और उल्टा बेरा होवेला तो बरखा पानी मन होवेला है कि नहीं? एकदम मौसम कितना सुहाना लगेल।
0: सही बात है बहन, देखो बरखा पानी का दिन तो नखे लेकिन एखन बरखा हो से तनी मनी फायदा है तनी मनी नुकसानो है, तो का करो? तो बरखा पानी कर ऐसा हमारे मन थोड़ी रोक सकेला है कि नहीं?
1: ये तो मौसम का है अनुमान है के, और जो मौसम है से के हमरे नहीं रोक सकेला। देखो मौसम जो परिवर्तन भी होत है तो देखो हमरे कर कारण ही होत है। देखो हमरे गछ वृक्ष मन के नहीं कटाव करत ही से कर चलते जो मौसम है बेमौसम हमरे कर ओकर परिणाम हमरे के मिलत है कि नहीं?
0: और देखो भाई खेत बाड़ी कर बात करब तो हमरे मन भी खेत बाड़ी के माटी के खुदे बिगड़ा थी। अब बढ़िया से हमारे मन खेती बाड़ी नहीं करेला, रासायनिक का ढेर ज़्यादा प्रयोग करेला, तो का हुई? माटी तो बिगड़बे करी।
1: एकदम देखो बगरा आमदनी पावे खातिर बगरा रासायनिक खाद कर भी उपयोग करत ही से कर से हमरे कर माटी का जो उर्वरा शक्ति है से तो सिराबे करत है, और संगे संगे हमरे का स्वास्थ्य में जो एकर असर पड़त है सीधा असर पड़त है। हमरे उकर खान पान करत ही जे सेवन करत ही तो हमरे कर उकर असर भी हमरे का स्वास्थ्य में पड़त है। तो हमरे के माटी का भी ध्यान देवे के और अपन स्वास्थ्य का भी ध्यान देवे के है कि
0: नहीं? सही बात है। देखो माटी का ध्यान कर बात कर ली तो जैसे कहले कि फसल चक्र में का होले कि बरंग बरंग कर बेरा बेरा से हमरे में नवा नवा फसल की उत्पादन करते रहेला, इकर से का होले कि माटी के जो उर्वरा शक्ति है बनल रहेला। तो हमरे मन के बदल बदल के खेती बाड़ी करे के चाहिए का?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बदल के खेती करब तो हमरे कर माटी का जो उर्वरा शक्ति है से बनल रही, और देखो देखो माटी में जो पोषक तत्व है से भी बढ़िया रही, और उकर में और कोनो फसल लगा तो हमरे कर फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रह बढ़ी और उकर से हमरे के बगरा उत्पादन मिली है कि नहीं?
0: सही बात है। तो बता दे चाहे कि कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भाई बहन सबसे पहले आइज हमरे मन जानब गर्मी कर मौसम में पशु रोग कर प्रतिरोधक क्षमता कर कैसे हमारे मन के बढ़ाए चाहिए इकर बारे में हमारे के जानकारी देवे डॉक्टर दिनेश कुमार। इकर बाद पंच परगनिया कृषि विकास गीत सुनो सुभाष कोरियर संगी मन गावल गीत। और आज कर एक ठो किसान है जे है संजीव जायसवाल जे कि नर्सरी पर अपन खेत में लगा है और नर्सरी कह के बेचेना है नहीं। और मौसम का हालचाल कर बात करब तो अखन तक तो मौसम हम कला पहुँच जाए नहीं? हाँ तो तनि हाँ मौसम तो बता दो तो तनिक का मौसम है?
1: तो मौसम विज्ञान विभाग बटले मिलल जानकारी कर मुताबिक मौसम में उतार चढ़ाव कर चलते राजधानी रांची कर संगे आसपास कर क्षेत्र में जोर हवा कर संगे आंधी और गरज कर संगे बरखा कर संभावना जताल गलक है। और आज का तापमान इतर आकल गलक है। राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर कर अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री। डाल्टनगंज कर अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री। देवघर कर अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री। ओहेतर गढ़वा कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आकल गेलक रहे। तो ई रहे आज कर मौसम कर खबर।
0: और देखो मौसम का बात करते तो कुछ कुछ जानकारी करे बात भी होक चाहिए। देखो भाई बहन हमरे मन तो खेती बाड़ी करेला लेकिन बढ़िया से जानकारी नहीं रहे से हमरे मन के नुकसान हो जाला और उत्पादन भी बढ़िया नहीं होला। तो भाई देखो बेरा बेरा से बहुत सारा कृषि विज्ञान केंद्र मन में नवा नवा जानकारी में देते रहला, और जेकर मिशन है कि हर माह का पहला तारीख से एक ठो ऐसा प्रशिक्षण मन देवल जाते हैं कि नहीं? और जे है कि 18 साल से 35 साल का जो उम्र का आदमी मन है जे खास करके एसटी वाला है नहीं, तो मन ले वहाँ पर जाए के प्रशिक्षण ले सके ना। बहुत सारा तरह कर वहाँ पर प्रशिक्षण मन भेटे, और संगे संगे देखो रहे कर भी वहाँ पर सुविधा है, खाए कर भी सुविधा है कि नहीं?
1: तो ई प्रशिक्षण दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची में देवाल जाते। तो जे भी भाई बहन मन अगर प्रशिक्षण लेके स्वावलंबी बने चाहे ना आत्मनिर्भर बने चाहे ना तो उमन अब प्रशिक्षण ले सकें ना।
0: और देखो एक में मधुमक्खी पालन हो गल, ओकर बाद फिर ला उत्पादन हो गल, मशरूम हो गल, मैंने बरंग बरंग कर कहो तो फिर पशुपालन हो गल, मुर्गी पोषण, मतलब ढेर तरह का ऐसा जानकारी है से कि हमरे में लेके अपन खेती बाड़ी में और अपन आमदनी के बढ़ा सकल है कि नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो भाई देखो अब बेरा है जानकारी कर, और जानकारी कर बात है तो एखन देखो गर्मी कर मौसम भी चलत है, और गर्मी कर मौसम में मवेशी मन के बहुत सारे बीमारी मन भी हो जाला, और उमन कर देखभाल जरूरी है, क्योंकि गर्मी में कुछ कुछ ऐसा बीमारी है जो कि हमारे मन पकड़ नहीं पा रही तो दिक्कत हो जाला है कि नहीं। और खास बात है कि उमन कर जैसे हमारे मन अपन प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाएला, उसने पशु मन में भी प्रतिरोधक क्षमता हमारे मन के बढ़ाए के जरूरी है। तो इसके बारे में हमारे के जानकारी देते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, इनकर से गोठिया है कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है तपती गर्मी न केवल इंसानों बल्कि हमारे पशुओं के लिए भी बड़ी मुसीबत लेकर आती है। बढ़ता तापमान पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और सबसे महत्वपूर्ण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इम्यूनिटी कमजोर होने से पशु जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो आखिर इस लू और भीषण गर्मी के मौसम में हम अपने पशुओं को अंदर से मजबूत कैसे रखें, उनका खान पान और प्रबंधन कैसा हो, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु पोषण विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर दिनेश जी आपको नमस्कार है।
3: नमस्कार किसान भाइयों जोहार।
2: आप हमारे श्रोताओं हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु में क्या अंतर है।
3: जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि आदमी के केस में भी या पशु के केस में जब तक आप उसके लक्षण के बारे में नहीं आप जानिएगा तब तक आप अंतर नहीं कर सकते हैं कि पशु स्वस्थ है या बीमार है। तो स्वस्थ पशु का मुख्य निशानी है कि उनका आंख जो है चमकता है, उसके बाद जो है समान तौर पर भूख लगती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है, जैसे कि गाय और भैंस के केस में 101 से 102 फ़ारेनहाइट होता है और बकरी और छोटे पशु के केस में 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद उसका जो त्वचा का जो कलर है वो एकदम चमकीला होता है। फिर नियमित रूप से जो है पशु जुगाली करती है और समान श्वास और नाड़ी जो है चलती है। इसके साथ साथ जो है मल और मूत्र जो है समान निकलता है और सक्रिय व्यवहार करते हैं, और दूध का भी जो उत्पादन जो है अच्छा रहता है। यदि दूध का गिरावट जल्दी हो अचानक हो जाए तो इससे पता चलता है कि वो पशु बीमार है। और नाक जो होता है मजल जिसको बोलते हैं काला कलर का, उस पर जो है मॉइस्चर लगा रहता है, फफूंद रहता है। तो इसी लक्षण से आप पता कर सकते हैं कि पशु स्वच्छ है या बीमार है। यदि इसमें नॉर्मल से कुछ हट के होता है तो वो बीमार है।
2: जी, तो गर्मी के मौसम में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है?
3: जैसा कि आप जानते हैं गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जो है वातावरण का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40 से 45 डिग्री हो जाता है, धूप अत्यधिक होती है, लू लग जाती है, पानी की कमी होती है, और पोषण के असंतुलन के कारण पशु जो है जितना खाना चाहिए वो खा नहीं पाती है। तो कम खाने के कारण जो है पसीना भी निकलता है जिसके कारण मिनरल का जो है लॉस हो जाता है, और उसके कारण जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पशु का कम हो जाता है।
2: जी, तो इस मौसम में पशुओं को किस प्रकार का संतुलित आहार देना अच्छा रहेगा?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे फसलों की खेती होती है, हरे चारा जो है प्रमुख रूप से देना चाहिए जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि लूसर्न हो गया, बरसीम हो गया, ज्वार हो गया, नैपियर हो गया। इसके साथ साथ आप मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, विटामिन दे सकते हैं, ताकि बॉडी में पानी की लेवल जो है मात्रा बनी रहे और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस होता है वो भी पूरा होते रहे। तभी जो है पशु का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ता है। और साथ ही साथ सूखा घास या बासी घास जो है नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पशु का हजमा जो है डिस्टर्ब हो सकता है, खराब हो सकता है।
2: जी, तो गर्मी के दिनों में तो पशु हो या मनुष्य हो, पानी की तो जरूरत होती है, तो पशुओं को गर्मी में पानी कितना देना चाहिए?
3: हाँ, पशु को हमेशा गर्मी के मौसम में स्वच्छ जल जो है देना चाहिए हमेशा। और जैसा जानते हैं कि आप दूध में जो है 90-92% पानी होती है, तो पशुओं को जो दुधारू पशु को केवल 1 लीटर दूध बनाने के लिए 400-500 लीटर जो है खून का जो है सर्कुलेशन होता है उसके अडर से। तो स्वच्छ पशु को जो है मिनिमम 50-80 लीटर जो है पानी देना चाहिए गर्मी के मौसम में, और ताकि डिहाइड्रेशन को भी बचा सके और दूध उत्पादन की भी कमी नहीं हो सके।
2: जी, तो गर्मी से बचाव के लिए पशुशाला कैसी होनी चाहिए?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पशुशाला जितना आपका छायादार हो या हवादार हो, तो इससे जो है धूप और लू से जो है बचाव होता है। और धूप और लू से बचाने के कारण आप टाट लगा सकते हैं ऊपर में, या फुसका दे सकते हैं, या फिर उजला पेंट कर सकते हैं, जिससे कि अंदर का तापमान जो है कम हो जाता है। और इसके साथ साथ पशुशाला में ज़्यादा गर्मी हो तो आप पंखे भी लगा सकते हैं, या कूलर लगा सकते हैं, या फोगर लगा सकते हैं। भैंस हो तो उसको जो है नदी में या पोखर में जो छोड़ सकते हैं आप तैरने के लिए। तो इस तरह से जो है उसका हम बॉडी का टेम्परेचर भी कम कर सकते हैं, और पशुशाला जो है साफ सुथरा होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी आपका मक्खी या परजीवी का जो है उत्पादन नहीं हो।
2: जी डॉक्टर साहब, अब बात आती है मिनरल मिक्सचर की। तो मिनरल मिक्सचर और विटामिन जो है गर्मी में क्यों जरूरी है?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनरल और विटामिन की जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है।
2: जी,
3: तो मिनरल्स विटामिन गर्मी में ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि पसीना चलती है उसके कारण मिनरल का लॉस हो जाता है। इसलिए मिनरल देना जरूरी है ताकि जो कमी है उसको पूरा कर सके, और दूध में जो भी कैल्शियम सिक्रेशन होता है उसको भी पूरा कर सके, और आपके बॉडी के सभी कार्य को जो है सुचारू रूप से चला सके। तो इसलिए अत्यधिक आवश्यक है कि आप मिनरल जो है यूज करें गर्मी में, साथ साथ हरा चारा और दाना के साथ में।
2: जी, हम लोग अभी जो रोग की बात कर रहे हैं, तो गर्मी में कौन कौन से रोग अधिक होते हैं पशुओं में?
3: सामान्यतः पशु में गर्मी में गलघोटू बीमारी, उसका लंगड़ा बुखार, थनैला रोग, उसके बाद खुरपका मुंहपका रोग और परजीवी बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और नमी भी मात्रा ज़्यादा रहती है वायुमंडल में, जिसके कारण मक्खी और मच्छरों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके कारण संक्रामक रोग भी जो है साथ साथ बढ़ जाते हैं। इसलिए समय पे जो है पशुशाला को साफ सुथरा रखें और टीकाकरण करवाएं, उससे जो है बचा जा सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सकता है।
2: जी, अभी आपने बात की टीकाकरण की, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण की क्या भूमिका है?
3: हाँ, टीकाकरण की क्या महत्व है इससे कि जैसे आप टीका लगाते हैं, तो टीका लगाने के बाद जो है बॉडी में एंटी बॉडी बनता है, जो हम एंटीजन डालते हैं, उसके कारण जो है धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। और जब स्ट्रेस होता है तो उस समय में लड़ने की जो कैपेसिटी है पशुओं में वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम पशुपालक मित्र जो है लंगड़ा बुखार और गलघोटू, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बारिश से पहले या गर्मी से पहले जरूर लगा लेना चाहिए। फरवरी मार्च हो अप्रैल हो, लगा लेना चाहिए। इसके बाद जो है बरसात के बाद भी जो है इसका टीका लगाना चाहिए, ताकि सालों भर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बनी रहती है।
2: जी, तो अभी आपने टीकाकरण की बात की, तो क्या साफ सफाई का रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी संबंध है?
3: जी हाँ, साफ सफाई आपका पशुशाला जितना अच्छा रहेगा, वहाँ मक्खियाँ या परजीवी का जो है पनपना जो है बहुत कम होता है, बैक्टीरिया वायरस हो गया वो कम पनपता है। यदि आपका पशुशाला साफ नहीं है तो वहाँ पे जो है मौका मिलता है कि मक्खियाँ परजीवी बैक्टीरिया ये सब पनपने का, जिसके कारण आपका जो है संक्रमित बीमारी के जो है चांसेस जो है बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से सफाई होना चाहिए, पशुशाला सूखा रहना चाहिए, बिछावन सब गीला नहीं होना चाहिए, गोबर का उचित जो है प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कि आपका मक्खी और मच्छर का जो है उत्पादन कम हो सके।
2: जी, तो बात बराबर आती है हीट स्ट्रेस की पशुओं में, तो गर्मी में पशुओं में हीट स्ट्रेस के

0: लक्षण क्या है?
1: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अत्यधिक टेम्परेचर होता है वायुमंडल का, तो पशु में तेजी से सांस स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ जो है पशु जो है बार बार पानी पीती है। उसके बाद पशु जो है मुंह खोल करके सांस लेती है, खाना कम खाती है। फिर उसके साथ साथ दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है, जिसको हम हीट स्ट्रोक का लक्षण कहते हैं।
0: जी
1: ऐसे पशुओं में तुरंत जो है पशु को छायादार में बांधे, ठंडा पानी उसको पिलाए, साथ साथ जो है उसको हरा चारा और खाने के लिए दे, सूखा चारा उस समय में कम दिखाने के लिए, क्योंकि हरा चारा में अत्यधिक पानी होता है, और हो सके तो ऊपर से भी पानी का छिड़काव करें ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है घट जाए।
0: जी तो अभी आपने हीट स्ट्रोक के बारे में भी बता दी। अब ये बताएं कि किसान गर्मी में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए कौन-कौन से सरल उपाय अपना सकते हैं?
1: सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका जब संतुलित आहार मिले पशु को, तो वो सब कुछ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बना रहता है। तो पशुओं को हमेशा छायादार में बांधे, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी दे, उसके बाद जो है संतुलित और पौष्टिक आहार दे, साथ साथ मिनरल मिक्सचर और विटामिन का भी खुराक दे, साथ साथ जो है पान और जो है हमेशा 24 आवर जो अवेलेबल होना चाहिए पीने के लिए। फिर टीकाकरण और कृमिनाशक दवा जो है समय पर लगाए, उसके बाद पशुशाला की साफ सफाई होना चाहिए, और तेज धूप में कभी भी बांधना नहीं चाहिए पशु को। और हो सके तो खाने के लिए जो है आप ठंडा के समय में दे, दोपहर के समय में पशु को नहीं दे धूप में।
0: तो किसान साथियों, पशु स्वस्थ रहेंगे तभी किसान समृद्ध होगा। गर्मी के इस मौसम में अपने पशुओं का खास ख्याल रखें, और हमारे जो डॉक्टर साहब अभी बताए इनकी बातों को अमल में लाएं। तो डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, जोहर।
2: तो एखन अपने मन के जानकारी दिले डॉक्टर दिनेश कुमार और इनकर से गोठियाले हमारे कर संगी कृष्ण जी उन पौराणिक बताने की भाई, गर्मी कर मौसम में मवेशी मनकर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे मन के किसान बढ़ाए चाहिए।
3: इकर बारे में बहुत बढ़िया जानकारी भेटाला। तो आगे कार्यक्रम में हमारे पंच परगनिया लोकगीत सुनब और इकरे संगे हमारे रिझरंग भी करब। देखो का खेत में काम धाम करके मन भी थकल रहेला, शरीर भी थकल रहेला, तो हम हमारे मन मन कर थकान के काते दूर करब। तो हमारे पंच परगनिया लोकगीत कर संगे मन कर थकान के चलो दूर करी।

0: साथी मन हमारे मन कर खेती बाड़ी अगर ना खे तो हमारे मन तनी सा ठाव में भी नर्सरी करके अपन आमदनी के बढ़ा सकेला और अपन जीविका कर साधन के अपना सकेला। तो आज हमारे ठीक एक ठो स्नेह नर्सरी उत्पादक किसान भी हैं तो उनकर समय में जानवर भाई रोरे के हमारे जोहार
1: जोहार। हमार नाम संजीव कुमार जायसवाल हके, तो मैं रहक वाला हको बसिया प्रखंड गुमला जिला कर रहे वाला हको।
0: कितना दिन हो गए नर्सरी कर?
1: नर्सरी कर ऐसे 8 साल तो नौकरी कर भेलक और यह क्षेत्र में अपन 2012 से मैं नर्सरी स्थापित कर लूँ।
0: तो रोरे कर नर्सरी में का कामन नर्सरी मन के तैयार करी ला?
1: नर्सरी में हमरे जैसे वन विभाग में जितना पौधा लागे ला वही पौधा कर उत्पादन भी करी ला और बाहर से भी मंगाई के देवी ला, तो एक तरह से ट्रेनिंग होला हमरे कर विभाग में।
0: तो शुरुआत दौर में जैसे नोरे नर्सरी के शुरू कर ली तो कोनो दिक्कत मन हो रही है कि नहीं होला?
1: दिक्कत तो कोई भी काम में शुरुआत करे में दिक्कत तो तनी मनी आवे करेला, लेकिन चूंकि मैं 8 साल नौकरी कर रहा हूँ इस फील्ड में तो से चलते मुके तो ज्यादा तकलीफ कर सामना नहीं करे पड़लक, लेकिन तनी मनी तो जब अपन काम शुरू भेलक तो तकलीफ तो होबे करलक।
0: तो शुरुआती दौर में कितना पूंजी से शुरुआत कर रही?
1: शुरुआती दौर में मैं लगभग 4 से 5 लाख रुपया मुके लाइक रहे शुरुआत करे में।
0: तो भाई अखन तो जैसे नर्सरी करत थी तो नर्सरी में का कामन लगा है, का कामन बेचत है?
1: नर्सरी में जैसे वन विभाग जितना पौधा लगाया ला, जितना फॉरेस्ट्री प्लांट कहकर मतलब है कि जंगल में हमरे मन कर जितना पेड़ पौधा देखे के लिए मिले ला वह पौधा कर उत्पादन हमरे करेल जे की आसानी से वन विभाग भी ले लोग और मनरेगा भी हमारे से किन लेवेला।
0: तो भाई जैसे रोरे नर्सरी कर बात कर लेकर मैं गाछ वृक्ष कर बात कर ले जिसके जंगल क्षेत्र में हो चाहे फलदार वृक्ष हुई मन कर रोरे करेला नर्सरी के है ना, तो अपने से उत्पादन करेला कि कहीं से लाइन के बेचेला?
1: अपन से भी करेला और बाहर से भी, जैसे बृहद मात्रा में जैसे हमारे मन के अगर सप्लाई करे का है तो अपन नर्सरी में संभव नखे कि उतना उत्पादन हमारे कई पावे, लेकिन बाहर से भी आवेला अलग राज्य से भी मंगाए पड़ेला।
0: हाँ। तो भाई देखो रोरे कलम करेला कि कोनो बीज मन से तैयार करे?
1: नहीं, बीज से करेला और ये बीज कर व्यापार भी हम रह कर हके। तो मोर अपन फर्म है ग्रीन वर्ल्ड करके और इकर हमारे ऑफिस है आरा गेट महिलोंग नामकोम में। तो हमारे मन बीज कर सप्लाई भी वन विभाग कर चुके अपन नर्सरी होला, तो जनवरी से लेके मई जून तक हमारे कर बीज कर भी सप्लाई होला वन विभाग के हमारे देवीला। और जब वो बीज से उत्पाद में मान लो कि किसी कारण से नर्सरी फेल हो जाए चाहे नया कोई प्लान आ जाए तो अचानक पौधा कर जरूरत पड़ेला तो पौधा भी हमारे मन सप्लाई करेगा।
0: तो रोरे कितना ठाव में नर्सरी के लगा है?
1: हमर नर्सरी है करीब करीब 3 एकड़ में।
0: 3 एकड़ में?
1: हाँ, और एखन आगे ओके नर्सरी के बढ़ाए कर है करीब करीब 7 एकड़ में हमारे मन के बढ़ाए है, क्योंकि अब झारखंड बिहार दोनों राज्य में हमारे कर सप्लाई कर काम होते तो उसे चलते बड़ा ठाव एखन लेवे के लिए बातचीत चलत है।
0: बहुत सारे ऐसे श्रोता मन है अगर शुरुआत से मन करे चाहते तो का मन के शुरुआत दौर में करे चाहिए नर्सरी कर तैयारी?
1: शुरुआत में करे के लिए पहले तो हर काम के करे के लिए पहले पूंजी कर व्यवस्था करे पड़ेगा, तो कुछ भी पूंजी है 1-2 लाख रुपया भी है तो उके करल जा सके, अपन जगह है तो ठीक है, और नहीं तो कम से कम अपन अगर ठाव है तो अपन ठाव में एग्रीकल्चर विभाग से कृषि विभाग से संपर्क करके, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मनरेगा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है अखन विशेषकर हॉर्टिकल्चर और कृषि विभाग कर ले फंड कर भी व्यवस्था करेला पूंजी कर, और उकर में सब्सिडी है 35 से 40%। जैसे 1 लाख पूंजी अगर ले थी सरकार से तो उकर में 35-40% तो सब्सिडी कर रूप में रोरे के माफ हो जी, और माफ करल के बाद 60% बाँची 65% जे भी बाँची तो वो रोरे के धीरे धीरे करके भरे का है, कमाई के भरे का है।
0: तो भाई देखो सरकार जैसे सुविधा के लिए का करे पड़ेगा हमारे मन को?
1: बस विभाग से संपर्क करे पड़ी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके हुआ कुछ फॉर्म कर है, जमीन कर कागजात है सब जमा करे पड़ी, और उकर बाद हुआ से जिला स्तर पर भी कर है हॉर्टिकल्चर में, जिला स्तर कर जिला पदाधिकारी जी हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर उकर से जाके मिलू, और मिलल कर बाद में हुआ फार्म मिली, फार्म भर के जमीन कर कागज कर साथ हुआ अप्लाई कर दू।
0: तो रोरे जैसे कि गाछ मन का करे का गाछ मन कर नर्सरी करी ले?
1: सागवान है, शीशम है, महोगनी, ओकर साथ में करीब करीब 350 वैरायटी है, लेकिन लगभग 30-40 वैरायटी ऐसा है जे की हमेशा बिकेला जे जनरली हमरे कर घर द्वार में देखे के लिए मिलेला, जंगल में मिलेला, बस वही चीज कर करना है।
0: और फलदार वृक्ष में?
1: फलदार वृक्ष में आम है, लीची है, अमरूद, लेम्बू, ये सब चीज कर सारा चीज कर बहुत सारा वैरायटी है ओके करल जा सके।

0: एक देखा एक दो महीना धूप लागे एक देखा, अगर देहाती क्षेत्र में हमरे में नहीं तो ओकर जे करंज कर फूल है, नीम कर है, पत्तार खर पतवार जितना है वो चीज के जमा करके रखे है, और ओके वही गढ़ा में एक आध महीना धूप लागल बाद वही गढ़ा में तोप के वो और मिट्टी से भर देवे है, और जब बारिश कर पहला पानी आवी तब तक वो खर पतवार जो है वो सड़ जी तो खाद कर रूप ले ली। अब बरसात कर फर्स्ट पानी आवला 15 जून कर बाद ओके रोपे के लिए हमरे मन के तैयार करे है, और तब हमरे मन के रोपनी करे के चाहिए पौधा कर।
1: देखो आजकल तो देखो आदमी मन सब कुछ सालों भर रोपे ना, तो खाली वही सीजन बढ़िया है कि और सीजन भी
0: सबसे
1: बढ़िया है?
0: बढ़िया सीजन जून जुलाई कर मौसम है सबसे बढ़िया।
1: ओकर बाद फिर और कोई दूसरा मौसम
0: हाँ
1: है?
0: ओकर बाद करे तो आदमी सितंबर अक्टूबर तक रोप सकेला, लेकिन जो बेस्ट समय है वो है जून जुलाई।
1: जैसे कि रोरे नर्सरी कर रहे थे, तो नर्सरी में बहुत कर शेड मन के लगा के करे ना, बहुत खुला में करे ना, तो कौन सा बेस्ट होला, बढ़िया होला?
0: नहीं कुछ पौधा ऐसा ना है जैसे धूप तनिक कम चाहिए तो ऊपर ले शेड कर जरूरत पड़ेला, और बाकी बात सब खुला में भी रही तो कोई दिक्कत न है।
1: और जैसे कि रोरे मालिक की नर्सरी कर रहे थे, तो खाद मन तो जरूर देवीला,
0: हाँ खाद
1: तो
0: में,
1: खाद मन का क्या कर देवे से बढ़िया होला?
0: खाद में सबसे बढ़िया खाद तो होला जैसे हमरे जैसे जाना थी अखन तक की DAP यूरिया फॉस्फेट यह सब के जानी ला, लेकिन अखन कर समय में सबसे बढ़िया खाद है जैविक खाद जे गोबर से बनेला जेके केचुआ खाद भी कहल जाला, वो है नीम खली है। हमारे ठीक नीम खली तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले लेकिन कृषि दुकान में नीम खली भी मिल जाई, और ओकर साथ में करंज खली वगैरह जो है, करंज खली तो बहुत आयत में हमार गुमला लोहरदगा रांची सिमडेगा इस सब में बहुत आयत में मिल जाएला, तो करंज खली नीम खली इस सब चीज का प्रयोग कीटनाशक के रूप में हमरे कर सकीला, और साथ में जैविक खाद तो हर घर में आजकल देहात में गोबर है उपलब्ध, तो गोबर से केचुआ खाद बनाए के या सड़ा हुआ पुराना गोबर कर खाद हमारे डाल सकीला।
1: जैसे बहुत सारा नर्सरी में देखिए कि जमीन से ऊपर नर्सरी के लगाए के रखे ना, कोनो इसे मचान टाइप के बनाए के बहुत सारा जमीन में रखे ना, तो कौन सा बढ़िया वाला?
0: नहीं नहीं बढ़िया कर मतलब सब पौधा कर प्रकार अलग है, और सब कर ले जमीन और ऊंचा ऊंचा बेड बनाए के भी रखल जाला, तो सब क्वालिटी के ऊपर है कि कौन कौन पौधा हमारे लगाए जाती। जैसे
2: तो एखन हमरे मन किसान से करल बातचीत के सुनत रही, किसान रहे संजीव जसवाल, जे के नर्सरी कर बहुत ही बढ़िया खेती करे ना, और इनकर से गोठियात रहे हम बेकर संगी मनोज कुमार।
3: तो एक संग आज कर किसानवाणी कर बेरा सिरा थे बता दे चाहे कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

0: सकारात्मक सोचो और जीवन के बदलो।
1: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनवाइया भाई बहन मन के और एकदम जुगनी बहन दन से जोहार, और मनोज भाई और के भी हमर दन से जोहार,
0: और सब सुनवाइए एक धाव फिर से मनोज भाई कर जोहार और जुगनी में रोर कर जोहार। और देखो हमारे दुनिया कार्यक्रम तो रोजे दिन होते रहेला, रोजे दिन देखो तो नवा नवा जानकारी वाले हमारे मन देते रहेला, और हमेशा हमारे मन के पॉजिटिव सोच के चले के चाहिए, सकारात्मक सोच के चले के चाहिए, ताकि जिस सुनवाइए है वो हमारे सोच में तो हाँ चलो बढ़िया बात है, बेस्ट बात है कि
1: नहीं। और देखो सकारात्मक सोच अगर हमारे रखब तो हमारे के आगे बढ़े के लिए मदद मिलेला है कि नहीं। हमारे कोनो विचार करब और सकारात्मक सोच रखब तो हमारे के आगे बढ़े के लिए एकदम रोक नहीं सके ना, आप हमारे मन अच्छा काम कर सकेला। और देखो सकारात्मक सोच के हमारे बनाए के रखब तो हमारे का संगति भी बढ़िया हुई, हमारे कर हर कदम में हमारे आगे अच्छा से बैठ सकेला कदम।
0: और देखो जोन काम नहीं होला क्योंकि हमारे मन के सोच में रखे, फिर से कोशिश कर रखे, फिर कोशिश कर रखे, फिर कोशिश कर रखे, सफलता एक दिन जरूर हमारे मन के भेटे है कि नहीं। अब बहुत क्वेश्चन हो कि सोचे नहीं कि भाई देखो नहीं हम काम कर ली और पूरा हो कि नहीं पारलक, खेती बाड़ी कर ली देखो नहीं वे नहीं करलक तो अगले साल छोड़ देव खेती बाड़ी करे, उसन करे के नखे। और बहुत से सैनिक पढ़ाई लिखे करत हैं।

0: फेल हो गए। तो मन के भी हमारे मन के कहा थे कि ऐसा सोचे के नखे, कोशिश करते रहो, सफलता जरूर जरूर भेटे।
1: तो हमरे के सकारात्मक सोच रखे के और हमरे के आगे बढ़े के है कि नहीं।
0: और कार्यक्रम के आगे बढ़ाए के तो चलो एक ठो बढ़िया से प्यारा से गीत हमारे मन सुनी ला, जानकी देवी और संगी मन के गाओल गीत नागपुरी में।
1: चलो

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: और अब बेरा है जानकारी कर, तो जानकारी में आज कर दिन हमरे मन कर रहे हैं कुरमाली भाषा में, जेकर में के झारखंड कर प्राचीन स्मारक के बारे में हमरे के बताबे नंद किशोर महतो।
3: स्मारक साढ़ा टकर माने याद देवेक वाला यादगार मेमोरियल एमन आरो आरो है। स्मारक कर माने बुझे पारी हो जे महत्वपूर्ण जगह जे संपत्ति कर रूप महान अंकित किंबा उल्लेखित और सुरक्षित आए यादगार बनाए रखे जलाये। वह रचना जे कोनो प्राचीन स्मारक है, कोनो मुलुक कर स्मारक एक ऐसा जिनिस है जे मुलुक कर इतिहास राजनीति किंबा हुआ कर लोक कर कोनो महत्वपूर्ण घटना रहे है, जैसन कोनो लड़ाई किंबा कोनो राज कर स्थापना। ये सब के ख्याल रखे जलाये स्मारक के बनाल जाए आरो ओके स्मारक मानल जाए। ऐसा स्मारक के उद्देश्य कर सब लोग कर नेगाचारी विचारधारा और यादगार रहेला। प्राचीन स्मारक के परिभाषित करे जलाये सरकार बाटेले प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1998 साले एक परिभाषा दिले थी जे प्राचीन स्मारक कर गढ़न रचल किंबा यादगार किंबा कोनो स्तूप चाहे दफनगा चाहे कोनो गुफा सेल रूपकृति उत्कीर्ण लेख जे ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक रुचिकर है जे कम ले कम 100 साल पुराना है। कहल जाए जे बीतल बेरा तो घूरी के नहीं आवे मिंतु किछु धरोहर के देखी भाभी गुनी हमरा के बीतल बेरा कर जानकारी मिले। आज झारखंड एक कई रकम ऐसा धरोहर रूपे आहे जे किला निजे झारखंड के आरो आलो करे, जैसन मंदिर मस्जिद स्मारक जैसन जिनिस हमरा पास आए। ये सब गिला हमरा बेजाय गर्व है जे हमरा इतिहास बेजाय गर्वशाली आए। हमरा झारखंड राज्य महान कई रकम विरासत आयोजन निजेक संपन्नता और गौरव कर बखान करे है और करते आए। जे गिला महान मलुटी मंदिर कर समूह राजमहल महान अकबरी मस्जिद संगी दलान प्लामू किला कुखरागढ़ हजारीबाग तेलचित्र कोडरमा कर सांदगावा कर मंदिर हराडी मंदिर कतरासगढ़ कर किला सुतियाम्बे डम्बारी हिल आरो आरो ढेर सन जगह है। एक और संगे संगे झारखंड संस्कृति और ऐतिहासिक स्थल कर भरमार है। यहाँ धर्म कर प्राचीन अवशेष पवाई यहाँ कर छोटा नागपुर इलाका महान शिवलिंग भरल पड़ल है। ओकर संगे संगे बौद्ध जैन धर्म लग जुड़ल प्राचीन स्थल करो कमी निखे। झारखंड सेल चित्र और गुफा कर बेजाय पुरना अवशेष आहे। यहाँ किछु ऐसन प्राचीन मंदिर आहे जे गिला निजे कहानी खुद बया करे। झारखंड मंदिर कर व्यवस्थित निर्माण कर सिलसिला गुप्त वंश लेख हेल आहे जे जंगल पहाड़े आहत। ये गिला महान बाबा बजनाथ रांची आर सरेकेला कर जगन्नाथ मंदिर गुमला कर टांगीनाथ रांची कर सोलह भोजी माँ दुर्गा देवड़ी मंदिर महामाया चत्रा की माँ भद्रकाली पारसनाथ कर जैन तीर्थ रांची कर पहाड़ी मंदिर रामगढ़ कर राजरप्पा और कैथा दुमका कर बासुकीनाथ और मालोटी आरो मंदिर कर नाम है। मालोटी मंदिर राज कर दुम

0: का जिला महान शिकारी पाड़ा कर पासे एक जगह महान है जे ननकर कर राज काल महान बनल रहे। ये मंदिर महान रामायण और महाभारत आरो हिंदू ग्रंथ कर ढेर कथा महान बखान है। झारखंड और बंगाल कर सीमा महान स्थित मलोटी एक प्राचीन नाम मल्लाहाटी कहल जाए। पुरखा समय महान ई गांव के समुदेश राड़ मल्लभूम कामकोड़ी गोड़ आर वन राज कर मांझे आवेत रहे। कहल जाए मल्लाहाटी नाम टाई मालोटी हेले। मालोटी महान आदिशक्ति माँ मलिच्छा कर मंदिर आहे। कथा आहे जे 15वीं शताब्दी महान ई क्षेत्र टा गौड़ राज कर अधीन रहे। ननकर राज कर संस्थापक बसंत राज कर अधीन रहे। ननकर राज कर संस्थापक बसंत राय के उपहार महान उबेराक बादशाह अलाउद्दीन हुसैन साय दिले रहे। शुरू खने हिया 108 मंदिर रहे मिंतु किछु धसी पड़ी सिराले और वर्तमाने 72 मोटा मोटी बांचला है। पलामो किला, पलामो किला दुईटा दुर्ग है जे वर्तमान समय महान जर्जर है गेला है मिंतु एखनो ई जगह कर शान है और आकर्षण कर केंद्र है के। ई किला के पुरना किला और नवा किला कहल जाए। ई दुर्ग चेरोर राजवंश कर राजा कर देन हेके। ई किला के राजा मदिनी राय बनुआल रहे। प्लामो कर मुख्यालय मेदिनीनगर कर दक्षिण दिशा कर कोयल नदी कर धाइरे बसल ई किला इतिहास कर बछरों कर यादगार के समटल आहे। ई किला कर निर्माण 1766 ले 1770 कर आसे पासे हेल रहे। खुखरागढ़ रांची जिला कर बेड़ो प्रखंड ले 12 किलोमीटर कर दूरे बसल गांव खुखरागढ़ जहां 52 जोड़ा तालाब और 53 बगीचा कर जलाय जानल जाए। खुखरा नागवंशी राजा कर राजधानी रहे। कतरासगढ़, कतरासगढ़ जिला कर बागमारा प्रखंड कर माझे कटनी नदी कर पश्चिम धाइरे कतरासगढ़ आहे। कतरासगढ़ कर किला तो एखनुक बेराय मुसुड़भुर हेला है किन्तु एकर समायक द्वार शानदार विद्यमान आहे। ये किला महान कतरासगढ़ कर पूर्व राजा निवास करित रहे। ये किला कर निर्माण 18वीं शताब्दी महान कतरास कर शासक करल रहत। राजमहल संताल परगना के पहिल जंगल तराई किंबा राजमहल कर नामे जानित रहती। 1992 साले राजमहल के पश्चिम बंगाल कर राजधानी बनाल गेले। पहिल राजमहल के आगमहल कर नामे जानल जायत रहे। मानसिंह एकर नाम बदली राजमहल करला। सम्राट अकबर कर प्रतिनिधि बनी मानसिंह हिया कर किला और महल बनवालक। पिठोरिया, पिठोरिया कर पुरातत्विक और ऐतिहासिक महत्व बेजाई आहे। हिया के राज ले करीब करीब 2000 बछर पहिल 83 ईस्वी महान नागवंशी शासक कर शुरू हेल रहे। एकर आगो हिया मुंडा राजा का राज रहे। मुंडा के बादे नागवंशी राजा कर राज हेले। नागवंशी एके निजे राजधानी बनाला और मोटा मोटी 400 बछर तड़ी छोटा नागपुर कर राजधानी बनल रहे। एकर संगे संगे केंद्र बिंदु बनल रहे। पहली सदी महान मदरा मुंडा प्रधान पढ़ा राजा रहे जकर जो पिठरिया कर पासे सुतियांबे बस्ती रहे। नौरतनगढ़ किला रांची लेक दक्षिण पश्चिम महान 40 मील दूर डोसा नगर एधाव एकटा गांव बनल है। गुमला जिला कर सिसई थाना कर ये गांव कबो नागवंशी कर राजधानी रहे मिंतुक बिना देखरेख आर धुरा एमान पड़ी कहन खंडर है गेला है। नौरतनगढ़ कर किला मोटा मोटी 100 एकड़ महान पसरल आहे। ये किला नागवंशी कर द्वारा मुगल स्थापित कर पहला राजमहल मानल जाए। डम्बारी बुरु खूंटी जिला कर उलिहातू कर पासे डम्बारी बुरु आहे। डम्बारी बुरु भगवान बिरसा मुंडा निजे 12 लोग आर संगे संगे आसे पासे गांव कर लोग संगे मीटिंग करेत रहे। बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन के बचाए जलाए बिगुल फूकेत रहे। वहे बेरा अंग्रेज कर सैनिक हुआ हमला करी डम्बारी पहाड़ के घेरी लेलती। अंग्रेज आर बिरसा बाटे लेक बेजाई लड़ाई हेले आर बिरसा हुआ लेक बाची पड़ाए गेल। हिया सैकड़ों लोग शहीद हेल चिन्ह देखल जाए पारे। ऐसन आरो हिया कतेक रकमेक प्राचीन स्मारक आहे जे गेला एखनो तरी नापाले आहे। आईजो आवश्यकता आहे जे हमरा निजे आजू कर संगे बीतल काल के स्मारक कर ध्यान दिए जैसे अवैया पीढ़ी देखे पारत आर अपन बीतल काल के जाने पार्थु। एक संगे संगे हमरा किछु निजे कर्तव्य है जे इतना झारखंड महान प्राचीन स्मारक हेले प्राचीन दर्शनीय स्थल हेले मंदिर मस्जिद तीर्थ सबके निजे मानी साफ सुथरा रखे चाहिए आर दूर दूर ले देखे आवैया लोग के कोनो रकमे परेशानी ना हो से जला निजे सावधानी रहे चाहिए और उस जगह के साफ सुथरा रखे और सपड़ाए चाहिए। और आशा है आवती बेरा हमरा ऐसने करो और हमरा स्मारक किला विशिष्ट स्मारक रूप महान हमरा देशे खड़ा है।
1: और सही बात है भाई बहन, देखो हमारे कर झारखंड कर राज्य में कहब तो एक से एक ऐसा नया प्राचीन स्मारक मन है जिके हमरे में देख सकीला और देख के हमरे में सीख सकीला। और छो मल्ले तो खैर जानकारी कर बात है ये है कि नहीं?
2: बिल्कुल बिल्कुल। और तो भाई बारे में हमने जानकारी करत रही और बतात रहे नंद किशोर महतो।
1: और देखो संगी साथी मन, अब बेरा भी तनी मनी बाचल है तो काठो गीत से कर के हमारे मन कार्यक्रम के समाप्त करब। तो गीत है
2: रोरे जुगाड़ के रही
1: भाई, देखो बिना जुगाड़ कर किसे आओ तो भाई सुनोया मत, सुनते रहना तो जरूरी है जुगाड़। तो चलो सुनीला हमरे मन कुरमाली में किष्टो महतो और संगी मिलकर गावल गीत।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले, ताकि न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे।
2: इन्वेस्टिगेशन तो बहुत मैटर करता है ना किसी भी क्रिमिनल केस में। इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फिर जो कोर्ट में कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों में डर का माहौल होगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होता, एक्विटल होता है, तो जो सही में जो क्राइम किया उसका तो उत्साह बढ़ेगा, चलो करने से कुछ नहीं होता है, फिर करो, रिपीट करो, तो जो डेटरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का भी इम्पोर्टेंट है।
1: नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
3: बैठक हुई जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन से लेकर परिवहन व्यवस्था से लेकर कार्यकलाप को और बेहतर करने की दिशा में तमाम नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और मुझको लगता है कि इस बैठक का आउटकम गिरिडीह शहर को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
1: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेज को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को सभी फार्मेसी कॉलेजों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अंसारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि सभी तथ्यों की गंभीरता से पड़ताल की जा सके। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान लापरवाही, नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी संगठन में नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के स्तर पर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, उसे वे उजागर करने का काम कर रहे हैं। श्री किशोर ने कहा कि पार्टी को ज्वलंत मुद्दों और चुनावी वायदे को लेकर मुखर होना होगा।
4: नाराजगी का कोई मामला नहीं है, पार्टी के असर पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठी है तो फिर किस बात की पार्टी। जो आपने वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि साथ वादे साथ इरादे, किसी एक पर भी आप मुखर नहीं हो पाए।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल वीडियो को लेकर राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि गैंगवॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और आम लोगों में भय का माहौल है। श्री मरांडी ने कहा कि संवेदनशील जिलों में कथित रूप से करोड़ों रुपए लेकर पोस्टिंग किए जाने की चर्चाएं कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति जारी रही तो राज्य में कानून व्यवस्था और बदतर हो सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ACB ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने 18 जून को मामले की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से इसरी बाजार में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि कल हुई इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग। आदिवासियों की जमीन लूट समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से विभिन्न संस्थाओं में आदिवासी धर्म कॉलम लागू करने की मांग की।
5: आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा? और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है।
1: उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दिलीप कुमार साहू ने बताया कि नगड़ी, रातू और धुरवा थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
6: छापेमारी में 940 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। अभी जाँच किया जा रहा है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, जांच किया जा रहा है, जांच के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
1: जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 19,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।
7: एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जामताड़ा जिला के कर्माटांड थाना क्षेत्र में ग्राम सहजपुर में कुछ साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा इस सूचना पर रेड करने के दौरान घटनास्थल से 3 अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ है 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और लगभग 19,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभियुक्त में।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक। साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर दिए कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप, और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो वासी पिछले कई सालों से बोकारो एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू होने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति तेज है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, गंदी राजनीति करने के बजाय सभी को एक साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है।
2: हम आग्रह करना चाहेंगे फिर उसे साथियों से कि अगर जरा सा भी बोकारो का हितेशी है, हमदर्दी है, तो सरकार में आप हैं, डीसी साहब से बात कीजिए और एक बैठक रख के इसको निराकरण हो, समाधान हो। कौन नहीं चाहता फ्लाइट चले? सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता यहाँ पे, विधायक है, यहाँ दो दो विधायक सत्ता पक्ष के है कि नहीं? हम बीजेपी के सांसद हैं, हमारे बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के यहाँ पूर्व हमारे नेता लोग हैं, सारे लोग बैठ के बात करके निराकरण निकालेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगा के हवाई अड्डा नहीं चल सकता है, जहाज नहीं उड़ सकता है, बैठ के समाधान हो सकता है, बैठ के ही हम लोग इसका निराकरण कर सकते हैं।
1: कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बताया, बोकारो एयरपोर्ट के संचालन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रोड़ा बना हुआ है।
3: कमजोर अगर कोई कड़ी है एयरपोर्ट शुरू ना होने में तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। जनता को गुमराह करना एक बात है, राजनीति करना एक बात है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि पब्लिक को सही पिक्चर दिखाना कि कब तक एयरपोर्ट शुरू हो, हम क्या क्या होमवर्क कर रहे हैं, कब तक शुरू होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये भी उनको बता देना। लेकिन हम एक प्रतिनिधि होने के नाते ये पूरा अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि एयरपोर्ट शुरू होगा। ये हम बहुत, इसके लिए मेरा बहुत विश्वास है कि मुझे जो प्रॉमिस मेरी गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मेरा प्रॉमिसेस है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो मिनिस्ट्री से जो प्रॉमिसेस है वो उनका भी बहुत क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का भी, कि एयरपोर्ट बोकारो में शुरू होगा, बोकारो में ही शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेटअप बना हुआ है।
1: दूसरी तरफ उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू करने से पूर्व आवश्यक आधारभूत संरचना का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है।
4: भारत सरकार की एजेंसी से दोनों बैठ करके आपस में हम एक पेज पर है, बातचीत हो रही है और दोनों का कोऑर्डिनेशन है। कैसे वो आए हुए हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोग आए हुए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों ने टाइम लाइन दिया, बहुत सारे काम है जो वो 15 तारीख तक पूर्ण करेंगे और बहुत सारे काम है जो नक्शे वक्से का छोटा छोटा है वो 30 मई तक पूर्ण कर लेंगे। तो लगभग मई हमारा पूरा उनके आपस में कार्य को पूर्ण कर लेने का होगा। हमको लगता है कि जून में ये इंस्पेक्शन होकर ये रेडी रहेगा।
1: बोकारो में लगभग प्रतिदिन हो रही बेमौसम बरसात से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है तो दूसरी तरफ किसान चिंतित हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। लोकगीत सुनते हैं बुद्धन सिंह कुंकुल और साथियों की आवाज में, ये हो लोकगीत।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:20 हो चुके हैं। सुनिए क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार।
1: ये आकाशवाणी रांची है। ब्रोरे मन राकेश कुमार मिश्रा से नागपुरी में हफ्तावार समाचार सुनो। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का पहला भाजपा मुख्यमंत्री का रूप में बंगला भाषा में शपथ ले रहे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह संगे 20 राज्य कर मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर कर पहल वर्षगांठ में सशस्त्र बल मनकर शौर्य के नमन कर लें। वो आतंकवाद और इकर से बढ़े वाला तंत्र के नष्ट करे कर राष्ट्र कर वचन के दोहरा है। रांची में चलत 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला कर समापन 3 मई के भेलक। ई मेला कर अवसर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कही हैं कि कला कर क्षेत्र में छवा मन के प्रोत्साहित करे कर जरूरत है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघालय 3 मई के रांची में कई एक कार्यक्रम में शामिल भेल है। वो रांची में आयोजित सांसद सांस्कृतिक समारोह और स्वदेशी मेला कर भी अवलोकन कर लें। इकर संगे अधिवक्ता सम्मेलन के भी संबोधित कर लें। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पिछला दिन नई दिल्ली ठिन ESIC से श्रमिक मन ले राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल कर शुभारंभ कर लें। ई पहल से मेडिकल कॉलेज संगे अस्पताल में 40 वर्ष और ऊपर से बगरा उम्र कर श्रमिक स्वास्थ्य जांच कराए सकेना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिट्ठी लिख के जनगणना 2027 में सरना धर्म कोड कर प्रावधान करे जाए कर विनती कर लें। इकर संगे श्री सोरेन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के भी चिट्ठी लिख है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसन भाषा मन के लेके चलत विवाद कर मांझे राज्य सरकार विसंगति मन में विचार करेले वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर कर अध्यक्षता में एगो उच्च स्तरीय समिति कर गठन करे। राज्य सरकार तंबाकू और निकोटिन, मिसाल गुटखा और पान मसाला का निर्माण राखे बेचेक और बाटेक में गोटा तेर रोक लगाए दे है। स्वास्थ्य विभाग कर अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह बटले जारी आदेश अनुसार ई रोक 1 वर्ष तक प्रभावी रही। सर्वोच्च न्यायालय झारखंड कर पारा शिक्षक मन के बड़ राहत दे है। अदालत राज्य सरकार के सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य कर 50% आरक्षित पद मन में खाली पारा शिक्षक मन से आवेदन लेके नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करे कर निर्देश दे है। झारखंड हाईकोर्ट गुमला से 7 वर्ष पहले लापता भेल 6 वर्ष कर बच्ची कर मामला में पुलिस कर काम करे कर तरीका में नाराजगी जता है। अदालत चेतावनी दे है कि 1 हफ्ता में ठोस प्रगति नहीं भेलक तो जांच CBI के सौंपल जाए। बिहार झारखंड कर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव बतालें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयकर विभाग लक्ष्य से बगरा 20,000 करोड़ रुपया का टैक्स जमा करलक। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बिहार झारखंड कर व्यक्तिगत करदाता मन में सबसे बड़ आयकरदाता बन है। झारखंड के बिजली आपूर्ति कर क्षेत्र में बड़ राहत मिल है। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के एगो सर्किट कर चार्जिंग काम बेस तेर पूरा भेल बादे अब JUSNL लगभग 450 मेगावाट तक अधिका बिजली प्राप्त कर सकेला। जैक 6 मई के इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दे है। ये बरिस कला संकाय में 96.14%

0: विज्ञान संकाय में 82.92% और वाणिज्य में 93.37% छात्र पास भी हैं। नक्सली मनकर खिलाफ चलाल जात अभियान में पुलिस लातेहार से उग्रवादी संगठन JJMP कर 2 और खूंटी से PLFI कर 3 सदस्य मन के गिरफ्तार कर है। उनका ठिन से हथियार और कारतूस भी बरामद करल जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सोभे राज्य मन केंद्र शासित प्रदेश मन और कई एजेंसी मन कर मदद से देश भर में अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनात है। इके मनाए के पीछे स्वास्थ्य केंद्र मन में आग कर खतरा के रोके और उकर से बाचे के लेके जागरूकता बढ़ाए है। रांची में चलत तीसर सिको कोई ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड 27 स्वर्ण पदक कर संगे ओवरऑल चैंपियनशिप बन है। बंगाल दूसर और उड़ीसा तीसर ठाव में रहलक। महिला वर्ग में साक्षी ओझा और पुरुष वर्ग में इंडियन आर्मी कर मोहन बढ़िया प्रदर्शन कर खिताब अपन नाव कर लें। हॉकी इंडिया भारतीय अंडर 18 टीम में राइज कर 8 खिलाड़ी मन के चुईन है। महिला टीम में संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, खिल्ली कुमारी, नीलम टोपनो, सुगम सांगा और श्रुति कुमारी संगे है। पुरुष टीम में आशीष सैंडी पूर्ति और जयसन कांडुलाना कर चयन भी है। इकर संगे आकाशवाणी रांची से हफ्तावार समाचार नागपुरी में सिरालक जोहार।
1: ईद आकाशवाणी रांची तले अनिल कुमार कस्ती कुड़ुकनु हफ्ता खबर। इन्ना कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड नो सुबेंद्रु अधिकारी पश्चिम बंगाल गे पहला भाजपा मुख्यमंत्री रूपे नु बंगला भाखंती शपथ हो चस। समारोह नु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह संगेम 20 राज्य का मुख्यमंत्री में सरकार हाजिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूरी पहला वर्ष गढ़ नु शास्त्र बल ही शौर्य समन नंजस आतंकवंद और इदी ही बढ़ावा चीव तंत्र न नष्ट नन्ना राष्ट्र ही प्रतिबद्धन दोहरा चस। रांची नु 3 दिवसीय संसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 3 मई उल्लास समापन मंजा। ई अवसर नु केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ आनियस का कला पहटा नु खद्दरीन प्रोत्साहित न नहीं चाल रही। केंद्रीय कानून अरा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघावल्स 3 मई उल्ला रांची नु आयोजित संसद संस्कृति समारोह अरा स्वदेशी जत्रा अवलोकन नंजस इदी संगे अधिवक्ता सम्मेलन नु संबोधित नंजस। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मौनियस नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ती श्रमिक के राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल ही शुभारंभ नंजस। ई पहल ही अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अरा अस्पताल नु 40 वर्ष और इतुक बग्गे उम्र श्रमिकर स्वास्थ्य जांच नंता ओनर। मुख्यमंत्री शाय हेमंत सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गे चिट्ठी तूड़र जनगणना 2027 नु सरना धर्म कोड प्रावधान चीत आगे आग्रह नंजस। इनम लेखा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवर्स गे हूँ चिट्ठी तूड़ियस। झारखंड शिक्षक पत्रता परीक्षानु भोजपुरी माघी और अंगिका जैसे भाखानु होर जारी विवाद मझी राज्य सरकार विचार विमर्श गे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से अगुवाई नु उनटा उच्च स्तरीय समिति गठन नंजा। सर्वोच्च न्यायालय झारखंड ता पारा टीचर के दौनलख नंजगिरी अदालत राज्य सरकार के सहायक शिक्षक अरा सहायक आचार्य के 50% आरक्षित पद गे सिर्फ पारा टीचर ही आवेदन हो और नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण न गे निर्देश चिचकी रही। राज्य सरकार तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा अरा पान मसाला निर्माण भंडारण बिक्री अरा वितरण नु तत्काल प्रभाव नु पूरा प्रतिबंध लगी रही। स्वास्थ्य विभाग का अपार सचिव अजय कुमार सिंह से तरती जारी आदेश अनुसार प्रतिबंध 1 साल गोटी प्रभावी रहो। झारखंड हाईकोर्ट गुमलंती 6 साल मुंधवारे लापता 6 वर्षीय कुके ही मामला पैत पुलिस ही नलक ती नाराजगी एदा। अदालत चेतावनी चिच्चा कि अगर 1 साल नु ठोस प्रगति मल मनोहोले जांच CBI के सुप्ता रोका लो। बिहार झारखंड का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव सिंह यस का वित्त वर्ष 2025-26 नु आयकर विभाग लक्ष्य ती बगे 20,000 करोड़ ढिबा टैक्स जमा नंज किरे। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से बिहार झारखंड व्यक्तिगत करदाता नु उर्मरती बग्गे आयकर दाता तलदस। झारखंड के बिजली आपूर्ति पहटानों को हां राहत हकर किरी दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन नो उनटा सर्किट चार्जिंग नलक सफलतापूर्वक पूरा मंच का खोखा अकू JUSNL लगभग 450 मेगावाट गोटी

0: ᱟᱨ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱤᱨ ᱠᱤᱰᱟᱢ ᱟᱠᱤᱱ ᱟᱛᱟᱝᱵᱟᱫ ᱚᱸᱰᱚ ᱱᱮᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱛᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱱᱟᱛᱤᱫ ᱤᱛᱤᱝ ᱤᱴᱤᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚᱨᱟ ᱠᱮᱰᱟᱢ
1: भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है।
0: रांची से सेंतन अपे दिलिंग सांसद सांस्कृतिक सा स्वदेशी मेला रे मनुचेत 3 मई रे हुबयन थाइने नेन मेला रे रासिके रे केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ तिकिंग जगारकेडा चिकुलाय को अटाय ड्रेसिटिए को प्रोत्साहन रिया गोरज गया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तिकिंग 3 मई मुसिंग रांची रिया टाइट टाइट कार्यक्रम को रिकिंग तिबा लेन ताइने हिरले मेघलाल तिकिंग जगारकेडा ची हुबलेन नेन सांसद सांस्कृतिक समारोह रे अंडो ओ इना सुल उकिल सम्मेलन रियो किंग जोर जगारकेत ताइने सरम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय तिकिंग सिनोयन उलेंग नामा दिल्ली रे कर्मचारी राज्य बीमा निगम रेन कामिये कुआ लगे राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच रिया पनाई टिकिंग उंकुड़ किडा नेन उंकुड़ लो तेगे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रे बारिशी सिरमे जोंग रेन अंडो एने ते लना रेन सरामिक कुआ स्वास्थ्य जांच होबाना मुणदुन हेमंत सोरेन तिकिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंडो मुल्क द्वन नरेंद्र मोदी के निकुल सकम लो ते जनगणना 2027 रे सरना दराम कोड रिकवरिया गुआरी अपील किंग एम केडा अंडो इनासुल हिरले सोरेन तिकिंग राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कियो चिटी सकम किंग ओलाडी तैने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा रे भोजपुरी मांगी अंडो आंगिका लेखन हयाम कुआ हुबाकन गड़बड़ को रे दुरसुई लगे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर तिकिंग गुसिया रे मियत मारंग कुमुटी गठन होबाकना राज्य सरकार पायते तंबाकू और निकोटीन मेना गुटका अंडो पान मसाला रे बनाई रिके हुंडी आकरिंगे अंडो हटिंग कुरे तत्काल दबोन लगाव जाना स्वास्थ्य विभाग रेन अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह तिकिंग आंदे लिखाते नेन दबोन मिश्र में जोंग प्रभाव तैने सुप्रीम कोर्ट पायते झारखंड रे प्रशिक्षक कुआ राहत एम जना अदालत पायते राज्य सरकार के सहायक शिक्षक अंडो सहायक आचार्य कुआ 50% आरक्षण पद रे सुमंग प्रशिक्षक कुआ नियुक्ति के हुबन दरकराकिंग मेनकेडा झारखंड हाईकोर्ट पायते गुमले ते आई सिरमे ते अडकन तुरु सिरमे रेन होन ना चितान रे पुलिस कुआ होनजी जगर जना अदालत पायते हुलिये लिखाते जुदि नेन होन मी हाट भितरे काको नाम रुए दहिये ये एंदो एन रिया सोमपाव सीबीआई को सोमपावना झारखंड बिहार रेन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव तिकिंग जनगर लिखाते वित्तीय बचोर 2025-26 रे आयकर विभाग पायते लक्षेत्र लाना हिसी 1000 करोड़ टका रिया मुरुई तिबेजना क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी तिकिंग निजी टैक्स लिखाते बिहार झारखंड रे सबिकोय तलाना टैक्स दाता किंग बहिजने झारखंड बिजली आपूर्ति रे मरंग राहत नमजना दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन रे मेड सर्किट चार्जिंग पनाइटी पुरयन लिखाते ना दो JUSNL रे लगभग उपुन 100 बार हिस्सी गेल मेगावाट जोंग रे अतिरिक्त बिजली नमदयुआ झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक पायते 6 मई मुसिंग इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 या रिजल्ट ओंडोंग जाना नैन श्री में आर्ट्स रे 96.14% विज्ञान रे 82.92% ओंडो कॉमर्स रे 93.37% रिजल्ट हुआ कना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पायते सबिन राज केंद्र शासित राइज अंडो एटा एटा एजेंसी को देंगाते दिसुम गोटारे अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनातिंग ओतना निनारिया मोने सिदेंग दो स्वास्थ्य केंद्र कोरे अग्नि कतरा रिया दबोन अंडो अनातोम नातित जागरूकता नितरो रिया बनाई टीतने नियालो ओतेंगे आकाशवाणी रांची तिमी आड्रे कोबर चबायना जोहार
2: नुआ आकाशवाणी रांची के ननीता पे डुमने मई मुर्मू से खोन मिनहाट रिया खबर आंजम पे कोलकाता रिया ब्रिगेड परेड ग्राउंड रहते हैं शुभेंदु अधिकारी दो पश्चिम बंगाल रिन पुइलू सिरो मंत्री लिखाते बांग्ला पर्सी ते की रही हताव केदा हेलमेल रे मरांग मंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और बारगेल पोनोत सिरो मंत्री को ताहे लेना ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱥᱤᱱᱫᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱥᱚᱥᱚᱥᱛᱨᱚ ᱫᱚᱞ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱟᱛᱚᱝᱠᱚᱵᱟᱫ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱩᱥᱠᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱜᱚᱴᱟᱭ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱠᱮᱫᱟ
1: भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है।
2: रांची रे हुयू कानपे महावा संसद सांस्कृतिक महोत्सव स्वदेशी मेला 3 मई हिलो मुचाद एना। ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱨᱟᱠᱪᱟ ᱨᱟᱡᱡᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱮᱴ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱥᱠᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱟᱨ ᱱᱮᱭᱟᱭ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱨᱟᱢ ᱢᱮᱜᱷᱣᱟᱞ ᱫᱚ 3 ᱢᱟᱭ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱ ᱢᱮᱜᱷᱣᱟᱞ ᱫᱚ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱥᱚᱢᱟᱨᱳᱦ ᱟᱨ ᱥᱚᱫᱮᱥᱤ ᱢᱮᱞᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱠᱤᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱮᱱᱟ ᱥᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱢᱚᱱᱥᱩᱠ ᱢᱟᱱᱰᱟᱵᱤᱭᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢᱚᱪᱟᱨᱤ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱵᱤᱢᱟ ᱱᱤᱜᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ 20 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱚ ᱪᱟᱸᱪ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱮᱢᱚᱱᱛ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱚᱞ ᱟᱛᱮ ᱡᱚᱱᱜᱚᱱᱱᱟ 2027 ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱚᱱᱛᱳᱥ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱜᱟᱝᱜᱣᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮ ᱮᱢᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱤᱪᱪᱷᱚᱠ ᱯᱟᱛᱨᱚᱛᱟ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮ ᱵᱷᱳᱡᱽᱯᱩᱨᱤ ᱢᱟᱜᱦᱤ ᱟᱨ ᱚᱝᱜᱤᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱛᱛᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱠᱤᱥᱚᱨᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟᱠᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱠᱳᱴᱤᱱ ᱢᱮᱥᱟ ᱜᱩᱴᱠᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱱ ᱢᱟᱥᱟᱞᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱢᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱚᱡᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱱ ᱟᱸᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ 1 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱷᱟᱢᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱚᱠ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱟᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚᱠ ᱥᱤᱪᱪᱷᱚᱠ ᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚᱠ ᱟᱪᱟᱨᱭᱟ 50% ᱟᱨᱚᱪᱪᱷᱤᱛ ᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱚᱠ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱩᱠᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱫᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱜᱩᱢᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ 7 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱫ ᱟᱠᱟᱱ 6 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱣᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱨᱮ ᱴᱷᱚᱥ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱸᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱤᱵᱤᱟᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱟᱭᱠᱟᱨ ᱟᱭᱩᱠᱛᱚ ᱰᱤ ᱥᱩᱫᱷᱟᱠᱚᱨ ᱨᱟᱣᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ 2025-26 ᱨᱮ ᱟᱭᱠᱟᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱫᱚ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ 20 ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱟᱡᱽᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱨ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱤᱝ ᱫᱷᱳᱱᱤ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱱᱤᱡᱮᱛᱮ ᱠᱷᱟᱡᱽᱱᱟ ᱮᱢ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱡᱽᱱᱟ ᱮᱢᱚᱜᱤᱡ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱮᱢᱚᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚᱦᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱩᱢᱠᱟ ᱜᱳᱵᱤᱱᱫᱯᱩᱨ ᱴᱨᱟᱱᱥᱢᱤᱥᱚᱱ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱨᱠᱤᱴᱟᱜ ᱪᱟᱨᱡᱤᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱤᱛ JUSNL ᱡᱚᱛᱚᱛᱮ 450 ᱢᱮᱜᱟᱣᱟᱴ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱡᱮᱠ ᱫᱚ 6 ᱢᱟᱭ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱤᱱᱴᱟᱨᱢᱤᱰᱤᱭᱮᱴ ᱵᱤᱱᱤᱰ 2026 ᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚᱭ ᱰᱟᱠᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱟᱝᱠᱟᱭ ᱨᱮ 96.14% ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱ 82.62% ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ 63.37% ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱠᱥᱟᱞᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱦᱟᱴ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱫᱚ 2 ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱫᱚ ᱞᱟᱛᱮᱦᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱵᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ JJMP ᱨᱮᱱ 2 ᱟᱨ ᱠᱩᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ PLFI ᱨᱮᱱ 3 ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱤᱨᱟᱹᱯᱛᱟᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱛᱩᱥ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚᱛᱮ ᱥᱟᱥᱚᱱᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱡᱮᱱᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱹᱠᱷᱤᱞ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱚᱜᱱᱤ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱥᱚᱯᱛᱟᱦᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱥᱤᱠᱩᱠᱟᱭ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱳᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱟᱴᱮ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱚᱱᱥᱤᱯ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ 27 ᱥᱚᱱᱟ ᱯᱚᱫᱚᱠ ᱥᱟᱶ ᱳᱵᱷᱟᱨᱚᱞ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱚᱱᱥᱤᱯ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱫᱚ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱤᱱ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱡᱤ ᱳᱡᱷᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨᱢᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱩᱫᱩᱜ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱦᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱟᱯ ᱥᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱮ आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।

0: इस अंक में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, विश्व थैलेसीमिया दिवस, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का समापन और जिले में आयोजित विभिन्न गतिविधियां। देश के कपास क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य कपास की खेती में आने वाली बाधाओं को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करना है।
1: सबसे पहले कपास क्रांति किसानों के लिए जो कॉटन का मिशन है, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना, क्वालिटी भी बढ़ाना और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ाना, आज कैबिनेट ने जो अप्रूव किया वो करीब करीब 32 लाख किसान जो हमारे कपास उगाते हैं देश में, उनके लिए बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम होगा। नाम इसका कपास क्रांति रखा गया है, कपास हिंदी में कॉटन को बोलते हैं। अभी भारत करीब विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, 297 लाख बेल्स प्रोडक्शन, लेकिन जो डिमांड है, क्योंकि भारत में टेक्सटाइल गारमेंट इसकी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, तो जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है 450 लाख बेल्स बाय 2030-31। जो आने वाले समय में डिमांड आने वाली है उसके लिए अभी से तैयारी करना, ये आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमेशा से प्रयास रहता है कि शुरू से ही उसके लिए काम चालू करें। तो इस डिमांड को मीट करने के लिए आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन। बहुत सारी चीजें हैं फोकस में। सबसे पहला इंक्लूसिव ग्रोथ, कौन सी सरकार ने 56 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया, कौन सी सरकार ने 13 करोड़ लोगों को टॉयलेट की फैसिलिटी दी, कौन सी सरकार ने 4 करोड़ घर बनाए और अब 4 करोड़ और बना दिए। सबसे बड़ा फोकस है इंक्लूसिव ग्रोथ का। ये इंक्लूसिव ग्रोथ के कारण ही देश भर में एक सम्मान वाली स्थिति आती है गरीब से गरीब व्यक्ति की।
0: रांची के आर्ट हाउस में विश्व थैलेसीमिया दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके समर्थन को मजबूत करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन शामिल हुए। उन्होंने थैलेसीमिया पीड़ितों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी।
2: सरकार की तरफ से इनको आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ तक मदद हो आउट ऑफ वे जाकर के हम लोग सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल करके इसमें हम लोग मदद करेंगे। इससे बड़ा पुण्य का काम और दूसरा नहीं हो सकता।
0: कार्यक्रम के आयोजक और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश एवं लहू बोलेगा संस्था के संस्थापक नदीम खान ने बताया कि थैलेसीमिया दिवस का उद्देश्य लोगों में रक्तदान को लेकर जागरूकता फैलाना है।
3: थैलेसीमिया डे का थीम जो है वो है अवेयरनेस, जागरूकता लाना। जो पेशेंट थैलेसीमिक और सिकल सेल एनीमिया के हैं उनके सराउंडिंग को भी जागरूक करना कि उसके लिए क्या करना है। तो एक हो गया अवेयरनेस, दूसरा हो गया प्रमोट करना है कि जो ब्लड डोनर हैं ऐसे बच्चों के लिए निश्चित रूप से अपना ब्लड डोनेट करें।
4: रिलेटेड जो थैलेसीमिया पीड़ित है, सिकल सेल है, प्लास्टिक एनीमिया है, इन लोग समाज से अलग ना रहें, उनको खोजना, अनदेखे लोगों को निकालना, उनका साथ देना, रोकथाम जन जागरूकता पैदा करना, करवाना, उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सरकार के सहयोग से हैंडल कराना, उन्हीं उद्देश्य को लेकर के आज का ये था झारखंड थैलेसीमिया और सिकल सेल पीड़ितों की स्थिति।
0: विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में विशेष रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
5: बहुत लोग आकर ब्लड दिए हैं, क्योंकि लोग जानते भी हैं इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसका जो मेन मकसद है करने का, वो सिमडेगा जिला के अंदर में ज्यादा से ज्यादा हम ब्लड डोनेशन जमा करें, ब्लड लोगों से ले, ताकि जरूरतमंदों तक ब्लड पहुंचाया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि ब्लड के कमी होता है, जिसको देखते हुए जीएनआरएफ तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिससे शहरवासी को ब्लड की कमी ना हो। थैलेसीमिया के मरीज को हमेशा ब्लड की जरूरत पड़ता है और हमेशा लोग ब्लड कहाँ से लें, जिसके लिए देखते हुए जीएनआरएफ आगे बढ़ी है और थैलेसीमिया के मरीज की मदद के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाई है।
6: मैं चाहता था कि मैं ब्लड डोनेशन करूं और मुझे अवसर मिला जीएनआरएफ की तरफ से, तो मैं आज यहां पर आ गया और मैंने ब्लड डोनेशन किया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी के जीवन को बचाया जा सकता है।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची के आर्य हाउस में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव स्वदेशी मेले का समापन हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 3 दिवसीय इस महोत्सव की उन्होंने खूब सराहना की।
7: तो आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, जितने भी कलाकार आए हैं, चाहे नृत्य के कलाकार हों, चाहे नाटक के कलाकार हों, सब ने प्रस्तुतियां दी और भाईचारा भी बढ़ा। मैं इस अवसर पर संजय सेठ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भजन की प्रस्तुति से समारोह में उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
8: प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक एक घर बधिक परो, हो प्रभु जी एक घर बधिक परो,

एक के नदी यहाँ। अब देखिए मैना भाई, पूरा सूरदास जी का भजन सुना रही है स्वामी जी को। एक नदी यहाँ एक नार कहावे, मेलो नीर भरो ओ प्रभु जी, मेलो नीर भरो। जब एक माया एक, अब देखिए स्वामी जी को कह रही है, मैं माया हूं मान लिया, आप ब्रह्म हो मान लिया। एक माया एक ब्रह्म का।

अब की बेर मोहे पार उतारो नहीं बन जाति करो प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो ओ प्रभु मेरे अब गुण चित न धरो ओ प्रभु मेरे अब गुण चित क्योंकि समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहो तो पार करो हो प्रभु मेरे अवगुण चितो

0: जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के साझा प्रयास से रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ, जहां विशेषज्ञों द्वारा जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की गई। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया।
1: झारखंड झरनों का प्रदेश है, पेड़ों का प्रदेश है, खनिज का प्रदेश है, सभ्यता का प्रदेश है, संस्कृति का प्रदेश है। मैं निवेदन करता हूं कि खेत का पानी खेत में रहे, मेड़बंदी करें, वाटर सेट छोटे छोटे जो नाले हैं उनको पानी को रोका जाए, वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोकें, खेत का पानी खेत में रहे, घर का पानी घर में रहे, गाँव का पानी तालाब में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे, और जल को धन मानकर रोकें, जल को देवता मानकर रोकें। जल जीवन है, जल है तो कल है, जल जगन्नाथ है, पानी परमेश्वर है।
0: वहीं सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक वीके पांडे ने खदानों में जल संचयन के सफल मॉडलों की जानकारी दी।
2: ये क्या है इसमें कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो ये है कि हर एक गांव में अमृत सरोवर विकसित किए जाए, जो हमारे पहले तालाब पोखर हुआ करते थे, वो तालाब पोखर धीरे धीरे देखिए तो खत्म होते जा रहे हैं, और तालाब पोखर जो है वहाँ के जो पानी का स्रोत था उसको रिचार्ज करने का बहुत बड़ा काम कर दे, क्योंकि तालाब और पोखर कम होते जा रहे हैं इसीलिए पानी का लेवल कम होता जा रहा है, पानी का लेवल रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो उनका जो विजन है कि भाई हर जगह अमृत सरोवर विकसित किए जाए जिससे लोगों को पानी की समस्या न हो। अब जो कोल माइनिंग हो रही है, कोल माइनिंग में क्या है कि बहुत बड़े बड़े तालाब पोखर जो है माइनिंग के चलते डेवलप हो जाते हैं और उसमें काफी कई मिलियन मीटर क्यूब पानी जो है उसमें इकट्ठा रहता है। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि भाई हम जो माइन क्लोजर करते हैं या जो सीएसआर में एक्टिविटी करते हैं तो ये जो पानी इतना इकट्ठा हुआ है इसको ट्रीट करके हम लोगों को पीने के लिए, लोगों को इरिगेशन के लिए, मत्स्य पालन के लिए या वहाँ पे कोई रोजगार के लिए इस तरह से विकसित करें सो दैट कि लोगों को एक तो पानी की समस्या कम हो और दूसरा यह है कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो एक उनके इनकम जनरेशन का जो है एक बहुत बड़ा स्रोत डेवलप हो जाए। तो कोल इंडिया और सारी कोल कंपनीज, इसमें जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने माइन क्लोजर गाइडलाइन जो डेवलप कराया उसमें कहा कि माइन क्लोजर फंड का 25% पैसा जो है वो कम्युनिटी के लिए खर्च किया जाएगा और सारी कोल कंपनीज अब जो है अपना माइन क्लोजर प्लान उस तरह से रिवाइज कर रही है कि वो 25% पैसा जो है वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उसमें आपका वाटर सप्लाई है, उसमें आपका उनके लिए और भी इनकम का जो स्रोत है तो उस पे हम लोग काम।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनिचित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 प्रसारित किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं फिल्म चाहत के इस गाने से, जिसे गाया है कुमार सानू ने, लिखा है निदा फाजली ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नसीब से कमलेश अवस्थी, सुमन कल्याणपुर और अनवर की आवाजों में। शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जॉनी मेरा नाम। आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर को। नगमा निगार है इंदिवर और मौसीकी है कल्याण जी आनंद जी की।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लोफर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: गोपाल दास नीरज के शब्द हैं और उसे संगीत से सजाया है जय किशन ने।
1: हजारों रंग के नजारे बन गए।

0: रांची केंद्र है, सुनिए सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बढ़ता दायरा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर देवाशीष प्रूस्ती, एडिशनल सेक्रेटरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्त मंत्रालय, और मिस सुमित कौर कपूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PFRDA। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: हम शुरू करना चाहेंगे देवाशीष जी आपसे। 11 वर्ष हो रहे हैं तीन योजनाओं को, जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इसे आप कैसे देखते हैं, भारत के सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को ये कैसे मजबूत कर रहा है, और पिछले 11 वर्ष में इसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी?
4: आज 11वां सालगिरह है। दो महत्वपूर्ण जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी तारीख को 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों एक्चुअली एक कम लागत वाला जन सुरक्षा योजना है, जो कि सुरक्षा कवच बनाकर भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत किया है। इन योजनाओं में जो हमारे पात्र ग्राहक, विशेष रूप से जो गरीब और जो दूर दराज क्षेत्र में जो वंचित ग्राहक है, उन सभी को 2 लाख रुपए का ये आवश्यक जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं और उनकी वित्तीय समावेशन को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आम नागरिकों के जीवन में कोई अगर ऐसे अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाता है तो उनको समय पर ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है। इन योजनाओं की एक बड़ी उपलब्धि इनकी सरलता, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कम प्रीमियम और वित्तीय समावेशन पहलों के तहत बैंकों के जो तमाम शाखाएं हैं और पोस्ट ऑफिस के तमाम शाखाएं, ये सभी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और वित्तीय जागरूकता को भी बढ़ाया देता है। और सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक जो वित्तीय प्रणालियां हैं, जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, उनमें नागरिकों के विश्वास को ये मजबूत किया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 27 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं। और इसके अलावा शुरुआत से अब तक PMJJBY के तहत लगभग 1,60,000 लाभार्थियों को 21,200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है। और इसी प्रकार PMSBY में 1,80,000 लाभार्थियों को लगभग 3,600 करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया है। और ये जो क्लेम भुगतान किया गया है, इसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो लगभग 99.5% से ऊपर है। का मतलब है कि अगर 100 दावे कंपनी के पास आते हैं तो उनमें से 99.5 दावों का उन्होंने भुगतान कर दिया है। यही एक विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है।
2: हम इसके पूर्व अगर हम आपके पास आए और बात करें अटल पेंशन योजना की, तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम इसे कह सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिनके पास एक रेगुलर नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है, या जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज वे में वो काम करते हैं। तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक उतना ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, खास करके जब वो 60 की उम्र को पार करते हैं। तो इसके मद्देनजर अटल पेंशन योजना, जहां तक हम समझते हैं, इसने काफी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करने में मदद की है। और आंकड़े बताते हैं कि 9 करोड़ से भी अधिक लोगों ने नामांकन करवाया है इस योजना में। तो आप इस बढ़ती ग्रोइंग पार्टिसिपेशन जो है इस योजना में, इसे कैसे आप देखती हैं, और कैसे इस योजना की जो शुरुआत हुई और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
3: हमारे यहाँ 85% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है। जब उनके पास काम हुआ तो इनकम आ गई, और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है, और वो अपने आज के खर्चे के बारे में सोचते हैं, दूर के बारे में सोच नहीं पाते।
2: जी जी बिल्कुल।
3: तो इस कारण से वो अपने 60 के बाद का तो वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो इस दिशा में जब हमारी परिस्थिति स्थिति ऐसी है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो आज यंग है, आज युवा है, पर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी ये पीढ़ी। और आज जो 10%

0: हमारी जो जनसंख्या है वो सीनियर सिटीजन या कहिए कि 60 से ऊपर है, परंतु 2050 आते आते तक ये 30% हो जाएगी और हम करीब 30 करोड़ लोग ऐसे और जोड़ देंगे जो 60 को पार कर जाएंगे। और अगर इन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या अपने वृद्धावस्था के लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं की तो इनके पास इनकम का या आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या फिर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक हक नहीं है, बल्कि ये सबके लिए होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना का जो है अनाउंसमेंट किया था। और आप देखिए कि इसी में जब पेंशन का कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं मालूम था कि उनके लिए भी रिटायरमेंट इनकम कुछ हो सकती है, ये उनको नहीं मालूम था, परंतु इसी दौरान 9,06,00,000 लोग अब अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। और इसका कारण ये है कि ये बहुत ही सरल योजना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपने अगर सिर्फ 42 रुपए प्रति माह जोड़ दिए 60 साल तक तो आपको 1,000 रुपए इनकम आपको मिलने लगेगी, आपके बाद आपके पति या पत्नी को मिलने लगेगी, और जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है पति पत्नी के गुजर जाने के बाद आपके नामिती को भी मिलने लगेगी। सो ये जो तीन बड़े बड़े उनको जो लाभ मिलते हैं सिर्फ 42 रुपए अगर आप 18 साल के हैं जुटाने पर, तो उनको भी समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक बुढ़ापे का सहारा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल के जमाने में जैसे हम दो बच्चे होते हैं हमारे, तो पेंशन का जो खाता है वो हमारा तीसरा बच्चा है और उसको उतना ही ख्याल रखना है हमें, हमारे को उसको वैसे ही बड़ा करना है क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा बुढ़ापे का। ये दो बच्चे तो रहेंगे आपके साथ पर उनपे निर्भर क्यों होना है, वो आपके आसपास रहेंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर ये तीसरा बच्चा आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, तो इसका आप अभी से इसको बड़ा कीजिए। इसीलिए इस अटल पेंशन योजना जो है काफी लोगों ने अपनाई है और इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंकों में हर शाखा को हम टारगेट देते हैं और वो सरलता से समझाते हैं और लोगों ने इसीलिए अटल पेंशन योजना को अपनाया है।
1: तो मिस कपूर, अगर हम बात करें आयु सीमा की, क्या कोई जैसे 18 वर्ष की बात आपने की कि 18 वर्ष का जब व्यक्ति एक बार हो जाता है तो इस योजना में वो नामांकन अपना करवा सकता है, तो कोई पूरी सीमा भी कोई आयु की है?
0: जी, 18 से 40 वर्ष, क्योंकि 20 साल का समय चाहिए आपको उतनी मात्रा इकट्ठा करने के लिए कि वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सके, तो इसलिए 18 से 40 तक आप इसमें एनरोल करा सकते।
1: जी देवाशीष जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, हम समझना चाहेंगे कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं आपने भी बताया 27 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं और इतना जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इसमें जो भागीदारी हो रही है जनता की, वो स्वाभाविक रूप से ये जताता है, ये हमें बताता है कि किस हिसाब से और किस तरह हमारे जो जनता है वो इस योजना में उन्हें ट्रस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
2: जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसे अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो योजना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये योजना जैसे 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता है, और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है उनको एक सहमति पत्र देना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सरल है, और उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा भी जो है दी गई है। इस योजना के तहत जो जोखिम कवरेज है, जो रिस्क कवरेज है, वो 2,00,000 रुपए तक का है, और जो बीमित व्यक्ति है इंश्योर्ड है उसकी मृत्यु होने पर किसी भी कारण से, कोई ऐसे कंडीशन नहीं है, तो ये मैच्योरिटी सम 2,00,000 रुपया उनको तुरंत दे दिया जाता है उनके परिवार को। इसके लिए जो सालाना प्रीमियम है वो केवल 436 रुपया है जो कि ग्राहक के बैंक या उनकी जो पोस्ट ऑफिस से ऑटो डेबिट किया जाता है कि जो है दावे का भुगतान किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि ग्रामीण जो लाभार्थी है लगभग 17 करोड़ है जो कि बैंक एनरोलमेंट के 73% है, और हमारे महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या लगभग 12,70,00,000 है जो कि कुल बैंक एनरोलमेंट के 54% है। तो ये आंकड़े जो है इस स्कीम की लोकप्रियता और समावेशिता और आने वाले समय में इस पे और मास रूप में जोड़ने के लिए एक स्पष्ट संकेत देती है।
1: हम आपसे समझना चाहेंगे, और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की यहाँ, क्योंकि ये योजना किस तरह से काम करती है और किस तरह से एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क, जो कि आम जनता को फेस करना पड़ता है अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी

0: में 20 रूपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें प्रदान करती है, और आंकड़े बता रहे हैं कि ये लगभग 58 करोड़ से भी अधिक नामांकन अभी तक हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक सा एक स्कीम है, तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, इसे कैसे देखती है और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्या स्थान रखता है हमारे आम जनता के जीवन में?
1: ये योजना एक्चुअली 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए सरकार ने लागू किए हैं जिनका किसी भी बैंक में या डाकघर में अकाउंट से सेविंग बैंक पासबुक है, और इस योजना में भी शामिल होने के लिए उनको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए अपनी सहमति देना होता है। और इस योजना में जो रिस्क कवरेज है कि अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर अगर कोई पूर्ण स्थायी विकलांगता जिसको कहते हैं परमानेंट डिजेबिलिटी की स्थिति में 2 लाख रुपया, और अगर आंशिक डिजेबिलिटी हो जाती है एक एक्सीडेंट में तो उनमें 1 लाख रुपया का जो अश्योर्ड है वो मिलता है, और ये कवरेज केवल साल की 20 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। खातेधारक बैंक या पोस्ट ऑफिस से सीधे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, उनको बार बार बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार की प्रोडक्ट से अब तक 58 करोड़ से अधिक नामांकन होकर 3600 करोड़ रुपए के जो है दावा के भुगतान किया जा चुके हैं। यहाँ तक हमारे ग्रामीण लाभार्थी हैं वो लोग करीब 38 करोड़ इनमें जो है नामांकित हो चुके हैं, और हमारे जो महिला है वो करीब 27 करोड़ इनमें नामांकित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वित्तीय समावेशन का एक स्पष्ट द्योतक है।
0: हम इसका पूरा आपके पास हम आना चाहेंगे, ये 11वां वर्ष है जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई 2015 में। साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवाशीष जी ने भी बताया कि किस तरह से खास करके ग्रामीण इलाकों में जो जनता का समावेशन हुआ है ऐसे स्कीम्स में और किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उन लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में आप किस तरह से देखती हैं इन योजनाओं का विस्तार, और साथ ही साथ कुछ और नई संभावनाएं अगर आपको दिखती हों तो?
2: जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अब तक इसमें 9 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण से हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गिग वर्कर्स हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी जो है वो महिलाओं की है, और 25,000 ट्रांसजेंडर भी जुड़ चुके हैं, और इन्होंने छोटे छोटे सेविंग्स करके अब तक इसमें AUM जो है वो लगभग 51,000 करोड़ से ऊपर है। सो अब जो हमारा जो टारगेट है 2031 तक का वो लगभग 17 करोड़ का है। सो हम इसको डबल के करीब ले जाने का सोच रहे हैं, जो पिछले 9 साल में किया वो अगले हम 5-6 साल में करेंगे। और दूसरा जो AUM है वो भी नेचुरली जो पुराना AUM है उसके ऊपर ग्रोथ होगी, 8.5-9% की ग्रोथ उसपे 9% की हो रही है, और भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, सो AUM भी बढ़ेगा। सो इसका हमारे को डबल लाभ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो माइक्रो लेवल पे है जो नागरिक हैं उनके लिए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक रास्ता खोलते हैं, दूसरा जो ये AUM एकत्रित होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो इस तरह से पेंशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल पेंशन फंड्स का, और इससे हमारी वित्तीय समावेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
0: देवाशीष जी, सुमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचार रखे, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में समाचार सुनेंगे जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार नवान्न में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. Five MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
5: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure. In an important development today, special observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subrat Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the assembly in Kolkata. Kollan Laha reporting from Kolkata.
4: The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking oath as Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form the government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from the Congress, left parties, Vidutalai Chiruthaigal Kachi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing the TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including the Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. Our correspondent has filed this report.
6: TVK leader Joseph Vijay met the governor along with the supporting MLAs of the Congress, the left party CPI and CPM, VCK and the IUML to form the government. 6 days after the results, this is the fourth time that he met the governor on the issue of having a majority. The governor had earlier cancelled the appointment and was to leave for Kerala, but then he invited the TVK leader to once again meet him today. The party has 120 MLAs for support. Apart from the Congress, who broke the alliance with the DMK, rest of the parties have rendered unconditional support. DMK leader and former Chief Minister M.K. Stalin, AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswami extended greetings to the new government.

0: शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। पांच अरकान असम्बली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएंबाजों की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज टू में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज एसआईआर के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड आईएएस अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के आईएएस अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामनिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था, क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदू किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इतिहास से अलीदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असम्बली इंतखाबात में टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह टीवी के पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमू

तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहरीन के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एमआईआरवी सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी 2 रोजा दौरा करेंगे जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले एनडीए सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और सामाजिक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत यह कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेडचुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेडचुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया।
دفاع کے وزیر

स्पीकर संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहरीन और दीगर सिविलियन माहरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि वह मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्े में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है, और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वह कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आबनाए हुरमुज और उसके अतराफ ताजा वाकयात के पस मंजर में ये बयानात सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वें मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सबो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजश्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। IPL में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असम्बली ने भी काबीना वजीरा के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबरा जोसेफ विजय ने कांग्रेस वीसी के IUML और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडो पंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियाँ हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। आवाज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जेनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जेनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो

0: अर्ली सेवेंटीज को सुन करके बना कि अर्ली सेवेंटीज में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने एफएम्स हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
0: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
0: ये दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
0: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
3: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसिल वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है, और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7-8 हजार स्टूडेंट हमेशा हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं. दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स.
4: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे. सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया.
5: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम एक जुगबाया है. 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली. मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला. मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था. मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई. मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ.
6: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है. मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में. हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था. उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था. उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है. भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं. भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे. और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए. और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है. और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी.
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं.
4: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है. चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है.
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं.
4: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं. संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल.
1: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग. एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर. आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी. वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं. सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी. वोकल फॉर लोकल हुनरमंद.
7: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है. एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ. 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ. तो उसी से मेरा आइडिया है. मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया. फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया. फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को. फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना डीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ, बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश होती है।
8: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्यरत कर रही हूँ। जैसे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
9: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
2: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
2: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
10: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रेलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
2: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
4: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
2: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
4: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
11: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
4: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
4: और मैं नेत्रा।
1: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
12: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घर

0: घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजूमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजूमदार। Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: Aapke saath tabla par sangat kar rahe hain Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar apne karyakram ka aarambh raag जन सम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with raag जन सम्मोहिनी, presenting आलाप जोड़ एंड झाला। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू रूपक ताल and Madhya Lay. Drut composition is set to Teen Taal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Raag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आप होगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजूमदार। With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अदलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुई विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका. Swendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shudhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arley.